आदाब समाइन, यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वे 208.8 मीटर यानी 1116 किलो हर्ट्ज के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें DTH आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय आज बुधवार है। शक संवत 1948 के अषद महीने की 17 तारीख मुताबिक 8 जुलाई 2024 ईस्वी। सुबह के 6:34 हुए हैं। आज की नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

نہ چھس بین ہنس کھڑی لول مسر میو چمت.

Yatır azım gasmaz çuyu hoy. Nahavşi parmıyor. Ey çare.

0: समयंतो इस प्रोग्राम सुबह का ही बोझान ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मेरे वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:05 हो रहे हैं। अब संस्कृत खबरों का बुलेटिन
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर

0: भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाईयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी, जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए उनको हम बता दें कि बिल्कुल आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और लाइव शो पयाम सुबह आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी मेजबान सकीना और
1: जहूर अहमद के साथ
0: बुध का दिन। और ये थीम आज हम लेके आते हैं, स्पोर्ट्स की बातें होती हैं और स्पोर्ट्स की बात आज अगर हो तो फीफा वर्ल्ड कप का जिक्र तो डेफिनेटली होगा और फीफा वर्ल्ड कप की बात हो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आज बात ना हो तो बात अधूरी
1: रह जाती है।
0: तो
1: जी सकीना जी, आपने सही फरमाया, फुटबॉल की तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ियों में शुमार होने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप में सफर पुर्तगाल की स्पेन के हाथों 1-0 से शिकस्त के साथ बिलाकर इस सबसे बड़े आजाज के बगैर इख्तिताम पजीर हो गया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और सुनने वालों को ये बता दे कि डलास में खेले गए इस मैच के इख्तिताम पर जब पुर्तगाल को आखिरी 16 मरहले में स्पेन के हाथों 0-1 की शिकस्त का सामना करना पड़ा तो रोनाल्डो की वर्ल्ड कप दास्तान आंसुओं के साथ खत्म हो गई।
1: सही फरमाया आपने। माइकल मेरेनो के आखिरी इंजरी टाइम में किए गए फैसला कुल गोल ने स्पेन को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया, जबकि पुर्तगाल और रोनाल्डो के आलमी कप का ख्वाब भी टूट गया।
0: जी दोस्तों, 41 साल रोनाल्डो ने अपने शानदार करियर में 5 बार बैलून डी, 5 मरतबा चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं और सन 2016 में पुर्तगाल को यूरोपीय चैंपियन बनाने में भी अहम किरदार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अदा कर चुके
1: जी,
0: हैं।
1: जी जी जी जी, क्लब और कौमी टीम की सतह पर वो 976 गोल करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, जबकि 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में गोल करने वाले वाहिद फुटबॉलर भी है।
0: और ये बात भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि इसके बावजूद वर्ल्ड कप ट्रॉफी इनके हाथ ना आ सकी, वो इस एजाज के सबसे करीब 2006 के वर्ल्ड कप में पहुंचे थे जब पुर्तगाल सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुआ था।
1: ये तो सही बात है, रोनाल्डो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। ताहम जब मैच के बाद इनसे कौमी टीम के मुस्तकबिल के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने खानदान से मिलूंगा और फिर सुकून से बैठकर मुस्तकबिल के बारे में फैसला करूंगा।
0: देखिए, ये सवाल बहस का मौजू बना रहेगा कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हर मैच में लाजमी खिलाने का दबाव ना होता तो क्या पुर्तगाल इस वर्ल्ड कप में ज्यादा बेहतर कारकर्दगी जो परफॉर्मेंस थी वो दिखा सकता था या नहीं?
1: ये सवाल है।
0: तो अब जो बाकी खबरें हैं, चाहे वो कश्मीर की हो या अराउंड द वर्ल्ड, तो ये कहना चाहेंगे कि श्रीनगर में कश्मीर चैंपियंस फुटबॉल लीग के सनसनीखेज मुकाबले मुनक्कद हो रहे हैं जिसमें मकामी डिस्ट्रिक्ट टीमें हिस्सा ले रही हैं।
1: जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी

0: इंडिया श्रीनगर की मेजबानी में इंटर एनआईटी फैकल्टी और स्टाफ क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले भी जारी हैं। मुल्क भर के 24 तालीमी इदारों की टीमें 8 मुख्तलिफ ग्राउंड्स में हिस्सा ले रही हैं
1: जी इस टूर्नामेंट में। और ये भी सुनने वालों को बता दें कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से नशा मुक्त मुहिम के तहत मुख्तलिफ अजला में वॉलीबॉल के खसूसी इवेंट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं।
0: जी दोस्तों, आपके साथ एक और बात भी शेयर कर रहे हैं कि इंग्लैंड और भारत के दरमियान T20 सीरीज के मैचेस जारी हैं, जिसमें T20 मुकाबला खेला जा रहा है। आज ब्रिस्टल में चौथा मेजर लीग रहा है। इसके अलावा न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के दरमियान मैच शेड्यूल है।
1: और दोस्तों, ये भी आपको बता दें कि कनाडा और मेक्सिको में जारी इस टूर्नामेंट के नॉकआउट और राउंड ऑफ 16 के मुकाबले जारी हैं। ये फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं।
0: जी
1: तो विंबलडन टेनिस का भी थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करेंगे। लंदन में साल का ये जो तीसरा ग्रैंड स्लैम जारी है, जिसमें चैंपियनशिप या ये कह सकते हैं कि आलमी शोहरत रखता खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंचने के लिए एक्शन में है।
0: जी
1: सो बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन फिलहाल एक कश्मीर गीत आपके लिए। ये तो हो गई हमारी स्पोर्ट्स की जो खबरें थी वो दोस्तों तक पहुंच गई।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
2: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
1: अच्छा, तो पैकेट दिखा। ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
2: क्या
3: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-11-2100 पर।
4: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेएनके।
6: बदलो बदलो आदत बदलो।
7: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
6: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गूंजता बम बम भोले का जयकारा हर भक्त के लिए एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल से स्वागत करता है।
9: इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी निर्देशों का पालन अवश्य करें। यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यात्रा रूट में प्रवेश करने के लिए वैलिड RFID कार्ड अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड किसी भी यात्री को यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसीलिए इसे हर समय अपने पास रखें। सफर हमेशा ग्रुप में शुरू करें और पहाड़ी रास्तों को ध्यान में रखते हुए ट्रैकिंग शूज और आरामदायक कपड़ों का इस्तेमाल करें।
8: यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। रास्ते में कचरा ना फेंकें और निर्धारित डस्टबिन का उपयोग करें। चढ़ाई करते समय अपनी रफ्तार संतुलित रखें, जल्दबाजी से बचें और बीच बीच में छोटे विश्राम जरूर लें। खाली पेट यात्रा शुरू ना करें। पानी और हल्का भोजन साथ रखें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में तकलीफ या तबीयत खराब महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप में संपर्क करें।
9: सभी निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट of Jammu and Kashmir.
0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
10: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
11: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
12: सब्र रूषित सुलुम।
11: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
13: जी दोस्तों, गर्मी का मौसम, यही कह सकते हैं कि बैठने में दिक्कत, काम करने में दिक्कत, ऑफिस जाने में दिक्कत, यही कह सकते हैं कि ये गर्मी का मौसम ऐसा होता है कि पसीना पसीना इंसान हो जाता है।
14: जी सकीना जी, शदीद गर्मी और पसीना ज्यादा आने की वजह से जिल्द को मुहा से खराश, खुश्की, खुजली जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है।
13: बिल्कुल सही कहा आपने।
14: रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि सेहतमंद जिल्द के लिए मुतवाजिन गजा खाना और मुनासिब मिकदार में पानी पीना अहम है।
13: बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि खुद को हाइड्रेट रखना है। पानी जिस्म के दर्जे हरारत को मुनज्जम करने में मदद करता है और जिल्द की हिफाजत करता है। डिहाइड्रेशन के सबब जिल्द खुश्क हो सकती है और सूजिस का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपने कहा कि खुजली। लिहाजा मुनासिब मिकदार में आप दोस्तों पानी पिया करें। इसके अलावा जिस्म में पानी की कमी पूरी करने के लिए नारियल पानी या नींबू पानी का इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा करना है।
14: और फल और सब्जियां भी जिस्म में पानी की जरूरत को पूरी करते हैं। ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, संतर, टमाटर और बाकी जो सब्जियां हैं, इनका खुराक जो है, इसे खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए।
13: जी, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए, अपनी जरूरत के हिसाब से जो आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि जोहर ने बताया ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, संतरे, टमाटर, स्ट्रॉबेरीज भी इसमें आती हैं, लेकिन अपने मकदूर के मुताबिक जो चीज आप ला सकते हैं या खा सकते हैं तो उनका

0: जी दोस्तों, लाइव प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं, पैम सुबह में आप सुन रहे हैं ये गीत, और हम आपके साथ हैं। मैं हूं जोहर अहमद और मेरे साथ हैं
1: जी दोस्तों सकीना।
0: जी सकीना जी, हमने सब बातें की हैं, स्पोर्ट्स की भी बात की है, सब चीजें यहां पे सब चीजों का जिक्र हो गया, लेकिन एक जो बड़ी बात है, आज गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो घर में बच्चे हैं
1: जी।
0: बच्चे घर में जो है शरारतें कर रहे हैं, बाकी चीजें तो इनकी जो मैनेजमेंट है नहीं हो पा रही
1: है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि छुट्टियां वापस नहीं आ रही,
0: ऐसी चीजें जो हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बात करें कि जो बच्चे हैं उनको जो है उनकी मैनेजमेंट कैसे करें,
1: टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कैसे आगे बढ़ें,
0: क्योंकि ज्यादा वो अभी जो है मुझे लगता है ज्यादा बच्चे जो टाइम देते हैं वो स्क्रीन में जाते हैं, मोबाइल फोन में जागते रहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज
1: नहीं
0: है, बुरी चीज है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बच्चे को ज्यादा देना उसमें से जो है उससे बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं फिर, क्योंकि इसमें जो है फिजिकल वीकनेस हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, आंखों का तो पता ही है,
1: हेल्दी माइंड नहीं रह सकता,
0: हेल्दी माइंड तो रहता ही नहीं है। अच्छा, बॉडी हेल्दी नहीं रह सकती, गैस्ट्रिक इम्बैलेंसेस होते हैं बच्चों
1: बिल्कुल
0: में।
1: सही, बिल्कुल।
0: अच्छा, पोस्चर प्रॉब्लम जो बहुत
1: वो मेन इशू है, पोस्चर प्रॉब्लम बड़ों में भी होता है।
0: अब बच्चे जो है
1: वो भी
0: झुके रहते हैं, अब दिखाई दे रहा ऐसा लगता है कि बच्चे झुके रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, चलते भी वैसे ही।
1: तो यहाँ पे है कि कुछ बाउंड्रीज हमें सेट करनी है।
0: जी जी जी।
1: बच्चों को टाइम देना है, अपने साथ बिठाना है। बच्चा तभी सेलफोन लेगा जब आप उसको टाइम नहीं देंगे।
0: जी।
1: और सबसे बड़ी बात, सेलफोन आपके हाथ में है तो आप बच्चे को कैसे रोक सकते हैं कि से मराठी सेलफोन।
0: जी जी जी।
1: पहले खुद अपना ये सेलफोन किसी दूसरी जगह पर रखे, ताक्षस पर थे या कुंजाए थे पद भी तब बच्चे
0: माँ बाप ज्यादा फोन इस्तेमाल खुद ना करें,
1: खुद ना करें। बेश अक्सर जहूर ये वुशनामुत माज आसान क्या कर या कुन आसान ग रट सेलफोन तो बकर मतलब वीकनेस बच्चा देखता है कि ये कितनी दी में ये सेलफोन।
0: जी जी।
1: पहले आप ये सेट करें कि आपको नहीं देना है, ये इसलिए नहीं देना है कि देखिए बच्चा एक आधे घंटे रो सकता है, एक दिन रो सकता है, दूसरे दिन रो सकता है, तीसरे दिन को खुद भूल जाएगा कि इल्ली न्यूली इदी निकली, लेकिन हमारी अपनी कुछ वीकनेस
0: है, एडिक्शन
1: आका
0: एडिक्शन आसान कंटिन्यू यू छाड़ान मिस माइंड छाड़ान मतलब कुछ सा चीज में यूज़ में अतस में
1: शी, क्योंकि वो देखता है ना कि आपके कमर में पांच इंसान है, पांचों के पास सेलफोन है, तो ये कहता है कि मेरे साथ कौन खेलेगा, कि इमोशनल पन एक्टिविटी खतर कहे ना, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हम में कुछ खामियां हैं, हमारे में कुछ वीकनेसेस है कि अच्छा सा क्या कौन रो रात से तो सुबह फोन तो बेमा ये
0: कम कुछ बेहतर कि इस करो सुत इन वालो आत्मज की इस क्या काम करा सुत अन होत काम।
1: हां, बहुत अच्छी बात की तरफ आपने अटेंशन मबजूल की। देखिए बच्चे के एज के हिसाब से, माइंड के हिसाब से बच्चे को किचन में आप ले जाइए, लकुट बच्चू उसको सिखाइए ऑमलेट कैसे किया जाता है या कोई चीज कैसे बनाते हैं, उसको अपनी एक्टिविटी में शामिल कीजिए।
0: हाँ।
1: ये लिए मिस्टेक गच्छे ये आपके पीछे पीछे आएगा। हाँ। बाकी दिनों लेकिन जब ये नहीं होता है तो ये आपसे सेलफोन मांगता
0: रहेगा।
1: तो बेची ये कहते कि बच्चा घर में, हमने पहले ही कहा कि कुछ लोग कहते हैं रील्स बनाते ये मतलब एक सो अलग सो शोशा फैलाते छुट्टियां वापस ले, लेकिन बच्चों के साथ टाइम बिताना पहले भी हुआ करता था, अब भी होना चाहिए। अब चूंकि ज्वाइंट फैमिली नहीं है लेकिन अब

भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और

0: हुर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और अक्सर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की

0: प्रोजेक्ट स्टेरिस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया

0: क्योंकि हॉर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार्य थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: के प्रोग्रामों में खातिरख्वाह तौसी भी की है, जिससे 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं।
1: बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने आरंभ करते।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर मेलबर्न पहुंचने वाले हैं। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहाँ वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बाहमी बातचीत से कई अहम शोबों में इश्तराक को फरोग हासिल होगा। दोनों के ताल्लुकात में इक्तिसादी सरगर्मियां तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। अशिया और खिदमात के शोबे में दोतरफा तिजारत 2025 में पहले ही $33 अरब से तजावुज कर गई है और अब 2030 तक इसे $1 खरब तक पहुंचाने का निशाना रखा गया है। दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक तेजी के साथ साझेदारी के एक अहम सुतून के तौर पर उभरा है। गुज़श्ता महीने नई दिल्ली में वज़राए दिफा के दूसरे मुज़ाकरात के तनाजुर में दोनों मुल्क सनअती इश्तराक और बहरी सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बना रहे हैं। मेलबर्न से सुभाष राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर PMO ने मुख्तलिफ शोबों पर एलनिनो के मुमकिना असरात और तैयारी से मुतालिक इकदामात का जायजा लेने के लिए आला सतह की जायजा मीटिंग मुनाकिद की। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा की सदारत में ये मीटिंग सेवा तीर्थ में हुई। इस मीटिंग में 15 से ज़्यादा वजारतों के सेक्रेटरीज और आला अहदेदार मौजूद थे। तफसील हमारे नामा नगार से।
3: इस मीटिंग में डॉक्टर मिश्रा ने यह हिदायत दी कि मजमू सूरतहाल पर लगातार नज़र रखी जाए और रियासतों के साथ तालमेल कायम करके जल्द मुतासर होने वाले ज़िलों पर मानसून या ताखिर से पहुँचने वाले मानसून के असरात का जायज़ा लिया जाए ताकि ज़रूरत पेश आने पर ज़रूरी इकदामात किए जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन ज़िलों में पीने के पानी की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दस्तियाब पानी का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से किए जाने की ज़रूरत उजागर की। इधर भारतीय मौसमियात महकमे के अफसरों ने जून और जुलाई में बारिश की मजमू सूरत हाल का खाका पेश किया। पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे ने बताया कि वो लगातार नजर रखे हुए हैं और फिलहाल सूरत हाल मुस्तहकम है। दिल्ली से प्रिया मंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोलकाता और उसके अतराफ 5 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बाज बैंक खातों के जरिए मुश्तबा रकूम की मुंतकली गैर कानूनी तरीके से रकम इकट्ठा करने और मुबैना गैर कानूनी माली लेन देन के सिलसिले में की गई है। तलाशी की ये कार्रवाई एविएशन के शोबे में काम करने वाली प्राइवेट फर्म केयरवेल ग्रुप और उसके डायरेक्टर्स और एक मुबैना इलेक्टोरल ट्रस्ट से वाबस्ता ठिकानों पर की गई। ईडी की इब्तदाई छानबीन के मुताबिक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मशकूक मकासद के लिए एविएशन और ट्रैवल कंपनियों के तवसुस से मुंतकिल की गई। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि अप्रैल 2023 और इस साल जून के दरमियान तृणमूल कांग्रेस के खातों से तकरीबन 160 करोड़ रुपए प्राइवेट एविएशन फर्म और उससे वाबस्ता इदारे को मुंतकिल किए गए। अमरीकी फौज ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले आबनाए हुरमुज में 3 तजारती जहाजों पर हमले के कुछ ही घंटे बाद किए गए हैं। अमेरिका की मरकजी कमान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि अमेरिकी फौजों ने यह हमले एक बैन अलावामी गुजरगाह में कमर्शियल जहाजों पर हमले करने के का सख्त बदला लेने के लिए किए हैं, जिनमें बेकसूर शहरी सवार थे। इधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी किशम और बंदरगाह और बंदर अब्बास में इन धमाकों की इत्तला दी है। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका की तरफ से ये ताज़ा हमले माहदे की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने एक लाइसेंस को भी मंसूख कर दिया है जिसके तहत अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई को खत्म करने से मुतालिक एक अबूरी समझौते के हिस्से के तौर पर

0: है कि चिनाब वैली में 48 घंटों के दौरान 3 सैलाबी रैली, ठाठरी, डोडा और किश्तवाड़ में तबाही। कुवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जेर आब, मुतअद्दिद मकानात और गाड़ियां नुकसान की जद में। महकमे मौसमियात ने मजीद शदीद बारिश, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी कर दिया।
1: डीजीपी नमन प्रभात का जम्मू में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। अमरनाथ यात्रा के दौरान फूल प्रूफ हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत।
0: उर्दू रोजनामे की शसुर्खी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ठाठरी डोडा की तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल का लिया जायजा। मुतासरीन की इमदाद में तेजी लाने के अहकाम कर दिए जारी। हुकाम को बहाली काम बशमूल डोडा, किश्तवाड़, कौमी शहरा की क्लियरेंस को तेज करने की हिदायत दी।
1: सांबा में अदालत के अहाते में सनसनीखेज मनाजिर। नौजवान लड़की का अगवा, हमलावरों का की कार पार्किंग में फायरिंग, मुजरिमीन की शिनाख्त के लिए पुलिस के छापे।
0: वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की बहाली की रोडमैप का लिया जायजा। आलमी सतह की हुनरमंदी अफरादी कुवत की जरूरियात पर दिया जोर। महकमा रोजगार को जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बैरून मुल्क के मौके फराहम करने की हिदायत दे।
1: एक उर्दू अखबार की सुर्खी है, हिंदुस्तान और इंडोनेशिया की शराकत दारी का एक सुनहरा बाब शुरू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, दोनों ममालिक का दिफाई तबादलों, आफात के बंदोबस्त और सनती तावन को बढ़ाने पर इतफाक।
0: एक उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत मुजवजा तरक्याती मनसूबों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1,990 करोड़ रुपए के 4 बड़े शहरी तरक्याती मनसूबे शॉर्टलिस्ट। निगीन झील, तवी, लिदर और कटरा की तरक्की के लिए अर्बन चैलेंज फंड से बड़े मनसूबों की तैयारी तेज।
1: मनुष्यात के खिलाफ मुहिम के तहत सरकार की तरफ से कार्रवाई, जम्मू डिवीजन में 962 मुकदमात, 1140 मुलजिमान गिरफ्तार।
0: केरन सेक्टर में फौज की बड़ी कार्रवाई, कमीन गाह तबाह। 5 AK राइफलें, ग्रेनेड और भारी मकदार में असला और गोला बारूद बरामद। खुफिया इतला पर सर्च ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी।
1: लातादाद मछलियों की हलाकत के बाद मुतासरा चश्मा से गंदगी निकालने की मुहिम शुरू। अनंतनाग की तारीखी 65 चश्मे को पाक और साफ रखने के लिए हुकाम और अवाम मसरूफ।
0: कैंसर समेत जानलेवा अमराज में मुब्तिला गरीब मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद। मेंबरान असेंबली को मरीजों पर 20 लाख रुपए तक खर्च करने की इजाजत। रकम मरीज या उसके अहले खाना नहीं बल्कि बरहाए रास्त मुतलिका अस्पतालों को फराहम की जाएगी।
1: पुलवामा में पानी की किल्लत से मुतासरा लोगों का सड़कों पर मुजाहरा। 2 हफ्तों के दौरान दूसरी बार मुतलिका हुकाम की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश।
0: उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि शुपया में 2 दहशतगर्दों की तलाश चौथे रोज भी जारी। फौज, पुलिस और CRPF का मुश्तरक तलाशी ऑपरेशन तेज।
1: रीज के हमले में खातून जख्मी, 2 दिनों में पुंछ में दूसरा वाकया।
0: पीने के पानी की अदम दस्तियाबी शहर में हाहाकार। वादी के मुतअद्दिद इलाकों में लोगों का एहतजाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर से फौरी मुदाखलत की अपील।
1: रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर, 11 जुलाई को खुसूसी मुहिम का आगाज।
0: सुर्खियां अभी और भी है,
1: हमारे साथ बने रहिए।
2: हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे, अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: जय बाबा बसवानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
4: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
3: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के

0: एक कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर न फेंकें। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
1: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: एक सुर्खी खेल खबरों से, अफगानिस्तान के साबिक तेज गेंदबाज शापूर जादरान का तवील अलालत के बाद इंतकाल।
3: जी, खेल सफे से यह खबर की फीफा वर्ल्ड कप, रोनाल्डो का जादू न चल सका। स्पेन ने पुर्तगाल को बाहर कर दिया। बेल्जियम ने अमेरिका को इवेंट से किकआउट कर दिया।
2: इधर वादी से एक खबर, जम्मू कश्मीर में आलमी यौम वालीबाल जोश खरों से मनाया गया। पीर के रोज पूरे जम्मू कश्मीर में आलमी यौम वालीबाल भरपूर जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया।
3: एक खबर है कि हार के बावजूद जीत जैसा जश्न, वतन वापसी पर केप वर्दे की टीम का शानदार इस्तकबाल।
2: एशियाई चैंपियनशिप के इनकाद का ऐलान।
3: ब्राजील की मुल्की मीडिया ने वर्ल्ड कप से बाहर होने पर टीम को सख्त तनकीद का निशाना बना डाला।
2: बैनुल अक्वामी सफे में ट्रंप तुर्किया को F-35 प्रोग्राम में दोबारा शामिल करने के का तोहफा दे सकते हैं। और अमरीकी दबाव के बाईस क्यूबा को बिजली की बंदिश का सामना, मुल्क तारीखी में डूब गया।
3: अब ये एक जरूरी कह सकते हैं शह सुर्खी है, ये अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहेंगे। तिब के शोबे की जब बात आती है या वैकेंसीज की जब बात आती है तो ये खबर शेयर करना जरूरी बनता है। वो ये कि सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में अमले की शदीद किल्लत, सैकड़ों असामियां खाली। डॉक्टरों, पैरामेडिकल और तकनीकी अमले की 400 से जायद असामियों की बहाली, मालियाती मंजूरी की मंतजर।
2: एक और सुर्खी है, रूस ने कैप पर 23 बैलिस्टिक मिसाइल धागे, हमले रोकने में यूक्रेन नाकाम, 28 अफराद की मौत।
3: अब ये खबर कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्रेवल टूरिज्म और बिजनेस स्टॉक होल्डर से मुलाकात की। सियाहत को मईशियत का अहम सुतून करार दिया, मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी कराई।
2: एक और खबर है, चीन में $325 मिलियन रिश्वत लेने पर साबिक सरकारी अहदेदार को सजाई मौत सुना दी गई।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग दे जिमा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशित सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी के जरिए।
4: जहां

0: जी, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। गुलाम अली की आवाज में आपने कैसरुल जाफरी की लिखी गजल सुनी।
1: जी सकीरा जी, इनके गजलों और नज्मों के कई मजमू शाये हुए हैं जो उर्दू अदब में खास अहमियत के हामिल हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उन चंद किताबों के नाम हम यहाँ पे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये कि कैसरुल जाफरी की शायरी में गहरा दुख, तन्हाई और नॉस्टैल्जिया यानी कि यादें माजी नुमाया होता
1: जी,
0: है।
1: जी, जी।
0: अब आपने कहा कि बेहतरीन किताबें इन्होंने लिखी हैं, उनमें गजलों की अगर बात करें, रंगे हिना, संगे आशना,
1: दश्ते बेतमन्ना, चरागे हरम और अगर दरिया मिला तो।
0: बिल्कुल, तो कुछ अशार इनकी जुबान जद आम है, जो लिटरेचर से वाबस्ता लोग हैं, शायरी पसंद करते हैं, उनको जरूर ये अशार याद होंगे।
1: तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे।
0: बिल्कुल, और वो ये एक शेर ये है जोहर की, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी तन्हा रो लें अक्सर ऐसा लगता है।
1: जी जी जी।
0: तो
1: एक दर्द सा दिखता है,
0: दर्द में मैंने पहले कहा है कि इनकी शायरी में एक नॉस्टैल्जिया है, गहरा दुख है, तन्हाई है। तो उम्मीद करते हैं कि इस गजल से हमारे सुनने वाले महसूस हो गए होंगे।
1: अब खबरें नष्ट होगी, पहले कश्मीरी और उसके फौरन बाद उर्दू में। खबरों से पहले एक वक्फा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर

एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। तलीमी निज़ाम के तहफ़ के लिए इंतजाम के अज़म का अदा करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तलीमी इदारों को इल्म कौम की तामीर और आइनी अकदार का मरकज़ बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि काबिल एतराज़ लिटरेचर के जरिए तुलबा को गुमराह करने या इंतहा पसंदी की तरफ रागिब करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आलम अब्दुल्ला के साथ अलग अलग मुलाकातें की। लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हुई मुलाकात में फौजी अमूर, इलाकाई सलामती और अवामी फलाह व बहबूद के मुख्तलिफ मौजूदात पर तबादले ख्याल किया गया। बाद अजां फौज के सरबराह ने वजीर आलम अब्दुल्ला से भी उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और खित्ते की सलामती सूरत हाल पर बातचीत की। उनके हमरा चिनार कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह और दीगर सीनियर फौजी अफसरान भी थे। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि हुकूमत आवामी अहमियत के हामिल मनसूबों की बरवक्त तकमील, बेहतर शहरी सहूलियात की फरहमी और लोगों के मियार हयात में तब्दीली लाने की वादाबंद है। वो कल राजौरी में नौशेरा के PWD डाक बंगला में 2,49,00,000 रुपये की लागत से तामीर किए गए कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तिताह करने के मौके पर एक इज्तिमा से खताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जदीद सहूलियत इलाके के इंतजामी ढांचे को मजबूत बनाएगी। इससे कबल नायब वज़ीर आला ने नौशेरा हल्के में सड़कों, पुलों और दीगर बुनियादी ढांचों के मनसूबों पर जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। दीही तरक्की महकमे के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने महकमे के अफसरों की एक मीटिंग तलब करके इस सेक्टर में मरकजी फ्लैगशिप स्कीमों की अमलावरी और महकमे की मजमुई कारगुजारी का जायजा लिया। सेक्रेटरी मौसूब ने स्कीमों की अमलावरी के लिए दस्तियाब रुकूमात का मुनसिफाना इस्तेमाल करने और मुस्तहकीन तक फलाही स्कीमों के फवायद पहुंचाने की हिदायत दी। पासपोर्ट खिदमात की फराहमी के लिए बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की जानिब से 11 जुलाई शनिचरवार को एक खसूसी मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के तहत 11 जुलाई को पासपोर्ट सेवा केंद्र श्रीनगर, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र अनंतनाग और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट के सेवा केंद्र बारामूला में ये खिदमात इस मुहिम के तहत जारी रहेंगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर BS रावत ने कहा कि ख्वाहिशमंद अफराद महकमे की वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.6 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: सूफी सदा ये प्रोग्राम चु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तम नश सब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: داش غم آز ونہن کر گزران
1: داش غم آز ونہن کر گزران
0: داش غم آز ونہن

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सविंग तुएसु प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रे दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे ताम नश्र सब्दान।

0: रग्बी गेम इख्तियार की, जैसे आइस टॉक और बास्केटबॉल। तो बताइए पहले लिसनर्स को, ये जो रग्बी गेम है, आम जो लेडी घर में हैं जिनको पता नहीं रग्बी क्या है, कैसे डिफाइन करोगी उनके लिए कि रग्बी क्या है?
1: बेसिकली रग्बी गेम जो है, इसमें हमारे दो सेट्स आते हैं, एक 15s का सेट आता है और एक 7s का सेट आता है। 7s में हम 7 प्लेयर्स होते हैं ऑन ग्राउंड
0: जी,
1: और बाकी 5 सबस्टिट्यूट रहते हैं, तो 12 के प्लेयर्स बनते हैं
0: जी।
1: और 15s में हम 15 ऑन ग्राउंड होते हैं, बट कश्मीर में यहाँ 7s ही खेला जाता है इंडिया में यूजुअली। तो इसमें हमारा क्या है कि हमारा जो गेम है इसमें हमें टैकलिंग वगैरह होती है, हमारे पास बॉल होती है, रन करनी होती है बॉल को लेके, हमेशा हमारी जो बॉल है वो फॉरवर्ड नहीं जाती है, वो बैकवर्ड चली जाती है, जो कि जिंदगी का एक ये भी हमें सिखाती है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो पीछे वाली चीज़ों को याद रख के ही आपको आगे बढ़ना है। रग्बी गेम हमें सिखाती है कि यू हैव टू टेक योर, जो भी आपका पास्ट है, यू हैव टू टेक इट विद योर सेल्फ एंड लर्न टू हाउ टू गो फॉरवर्ड। तो ऐसी गेम है हमारी रग्बी, विच इज़ वेरी पैशनेट, वेरी अगर हम बोलेंगे एंथुजियास्टिक है हमारी रग्बी की गेम
0: जी। महविश, आपसे बात हम जारी रखेंगे, बहुत सारी बातें करनी है, शुरुआत हम करेंगे, ये म्यूजिकल जर्नी है आपकी भी, कुछ चॉइस हो कि वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस ब्यूटीफुल ट्रैक से।

0: जी, जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए उनको हम बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर। लाइव शो पयाम सुबह जारी है, आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ लाइव शो में इस वक्त मेहमान है स्टूडियो में, मेरे साथ हैं महविश रशीद वानी, रग्बी प्लेयर हैं, कई बार कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है। अब मैंने पहले ही कहा कि पहले ये आइस स्टॉक खेलती थी, बास्केटबॉल खेला, तो महविश अपने सुनने वालों को ये बताइए कि आपने ये टर्न क्यों रग्बी की तरफ लिया, क्या वजह रही?
1: रग्बी की तरफ मैंने इसलिए टर्न लिया था बिकॉज इन 2016 मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, सो आई वाज इन ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा में थी, सो माय साइकियाट्रिस्ट सजेस्टेड मी टू गो इन दिस गेम।
0: जी,
1: तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो रग्बी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है।
0: जी।
1: अगर मैं लाइफ की ही बात करूं, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि रग्बी हमें सिखाती है टू कैरी ऑन दैट बैगेज बट टू लुक फॉरवर्ड, आई स्टिल हैव दैट ट्रॉमा इन मी बट आई स्टिल नो दैट आई हैव टू गो फॉरवर्ड, दिस इज व्हाट रग्बी हेल्प्स मी टू गो फॉर। तो अगर हम बात करेंगे तो अभी के अगर हम यूथ की बात करेंगे, एवरीबॉडी इज डीलिंग विद डिप्रेशन, ड्रग्स,
0: सबकी अपनी अपनी कहानी है,
1: अपनी अपनी कहानी, अपने अपने दुख है। But for me, I want youth to go in, not just in sports, har kisi kuch, kisi artist cheez mein chale jao,
0: activity mein jana chahiye, apne aap ko busy rakhna,
1: yes, just to get yourself busy, and because isse aapko kya milega, you will avoid your jo bhi aapka harmful substances aap le rahe ho abhi bacche, unse aap dur rahenge, plus aapka jo bhi trauma hai ya ye hai wo chala jayega, kyunki agar main apni baat karungi, whenever I went to this rugby ka ground jo hamara polo view mein hai, mere ko duniya ki sari cheeze bhul jati hai, koi din मेरे घर पे क्या चल रहा है, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं याद रहता है। दिस इज हाउ कनेक्टेड आई एम विद रग्बी।
0: आपने कहा कि बहन की डेथ हुई,
1: yes.
0: बहन की एज क्या थी जब उनकी डेथ हुई?
1: शी वाज 23 इयर्स ओल्ड, इट हैपेंड इन 21st ऑफ जुलाई आफ्टर द डेथ ऑफ बुरहान वानी, जब वो ट्रॉमा चल रहा था।
0: अच्छा, फिर किस ईयर में आपने ये ज्वाइन किया?
1: I joined in 2018. दो साल मैं ट्रामा में रही थी, दो साल नहीं हुआ ठीक। Then there's a doctor Maqbool who suggested me to go for the rugby because
0: बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपने एक पॉजिटिव टर्न लिया अपनी जिंदगी के लिए। तो देखिए, बहुत सारे आपने बच्चों की बात की, सबकी अपनी अपनी कहानी है, कोई किसी वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से परेशान है, लेकिन कुछ हमारे बच्चे हैं जो जान बूझ के कुछ तो नशे की तरफ जाते हैं या किसी और बुरी लत की तरफ जाते हैं, तो वाकई में जो उनके लिए मैसेज है कि आपने एक पॉजिटिव वे अपनाया अपना जो ट्रॉमा आपका था उसको दूर करने के लिए। अब आपने कश्मीर को कई बार रिप्रेजेंट किया रग्बी में, उस बारे में अपने दोस्तों को बताइए।
1: जी, तो स्टार्टिंग में 2018 में ही मेरी नेशनल की सिलेक्शन हो गई थी।
0: जी।
1: तो वहां से अभी तक मैंने लगभग 8-9 बार रिप्रेजेंट किया है जेके को ऑन द स्टेट लेवल, प्लस यहाँ के जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स है, इंडिया रग्बी जो है वो यहाँ आए हैं, तो उनके साथ भी मैंने खेला है, आई ऑल्सो हैव गोल्ड मेडल इन दैट थिंग। तो अभी अगर मैं देखूंगी, इट्स अ फेज जहाँ पे आप सीखते हो जिंदगी में कि आगे कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, बिकॉज आई वॉज जस्ट अ किड, आई डोंट नो एनीथिंग, नाउ आई नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, इट गिव्स द एक्सप्लोरेशन। अभी के बच्चे अगर नशे में है, मेरे हिसाब से उनको वो एक्सप्लोरेशन मिला नहीं है।
0: सही।
1: एक साथ जब वो बाहर निकल के आते हैं, दे थिंक कि इतनी ही
0: दुनिया इतनी ही महदूद है,
1: इतनी ही है, इतना ही है, बस ये है तो हम इससे कूल बन जाएंगे। जेंजी इज यूजुअली हम अभी बोल रहे हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज अभी उनको नहीं लगेगा बट आगे उनकी जिंदगी में बहुत इफेक्ट करने वाला है।
0: जी जी, मेडल्स की

0: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर लाइव शो पयाम सुबह जारी है। आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ स्टूडियो में है महविश रशीद वानी रग्बी प्लेयर, और इनसे हमने कई बातें की, कई बातें वापस और करने वाले हैं। लेकिन ये कहना चाहेंगे कि मुझे इस वक्त बहुत खुशी, ये पर्सनल बात मैं शेयर करना चाहूँगी, वो इस वजह से कि कश्मीर की जो भी बेटी आगे बढ़ती है तो हमारा काम होता है पीठ थपथपाना। क्योंकि यूजुअली जब हम लड़कों की बात करते हैं और वो भी स्पोर्ट्स में, तो समझा जाता है कि हाँ लड़के तो आगे जाते हैं, लेकिन अब माशाल्लाह पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव है लड़कियों के लिए, वो चाहते हैं कि बच्चियां भी आगे जाए स्पोर्ट्स में। अब जैसे कि महविश रशीद वानी है यहाँ पे, जाहिर सी बात है इनका भी पेरेंट्स का सपोर्ट होगा इस गेम के तय, पढ़ाई के तय। तो महविश, आपसे मैं पहले ये जानना चाहूंगी, हम तो बात करेंगे गेम के हवाले से, आपको क्या लगता है कितनी जरूरी है पढ़ाई किसी भी गेम को या किसी भी काम को आगे ले जाने के लिए?
1: पढ़ाई हर एक फेज में जरूरी है, नॉट जस्ट इन गेम और या काम
0: जी।
1: एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एजुकेशन आप कुछ नहीं हो, आपको कुछ नहीं आएगा आगे। अगर हम बात करेंगे मेरी एजुकेशन की, सो मेरा 12th क्लियर हो गया है कोठीबाग से, और मेरा ग्रेजुएशन में 9.5 GPA रहा है, एंड नाउ करंटली आई एम डूइंग मास्टर्स इन साइकोलॉजी। मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है मास्टर्स साइकोलॉजी में, प्लस मैंने अभी फॉर्म भी भरा है MBA के लिए।
0: अरे क्या बात है। देखिए, ये बात पूछने का मकसद यही था कि जो माइक्रोफोन की उस पार

0: मेरे कई यंगस्टर्स, कई बच्चे सुन रहे हैं, कहीं किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, इस तरफ जाएंगे उस तरफ जाएंगे, कामयाबी तक पहुंचने के लिए पढ़ाई पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। तो मेडल्स की हमने बात की थी गाने के उस पार, तो बताइए गोल्ड मेडल कहाँ कहाँ से लिया और कहाँ से शुरुआत हुई थी गोल्ड मेडल्स की?
1: मेरी सबसे पहली शुरुआत रही गोल्ड मेडल्स की खेलो इंडिया में, जो सबसे पहला खेलो इंडिया हो गया, वहाँ से मेरी शुरुआत रही। तो वहाँ पे हमारा ब्रोंज आया था, देन हमारी नेक्स्ट मेरा जो मेडल आया था वो गोवा से आया था, गोवा का हमारा टूर्नामेंट था वहाँ पे आया था, चंडीगढ़ से हमारा मेडल आया है। तो अभी हमारा, अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में हमेशा ही गोल्ड मेडल ही लिया है, आई हैव नेवर गॉट द सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स। तो अगर मैं कुल मिला के बात करूं, नियरली आई हैव 22 गोल्ड मेडल्स इन रग्बी।
0: यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों की खुशियों में पहले शरीक होते हैं और सबसे ज्यादा खुश होते हैं बच्चों की खुशी पे होते हैं। आप चूंकि बच्ची हैं, आप लड़की हैं आप, तो उनकी खुशी का जरा मंजर बताइए जब आपने पहला गोल्ड मेडल लाया तो मम्मा का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप ऑफ द माइक मुझे कह रही थी कि मम्मा का काफी सपोर्ट है आपकी इस गेम में जाने के लिए।
1: जो ही मेरा पहला गोल्ड मेडल आया था जो कि खेलो इंडिया का रहा था, तो मेरे बाप ने आई थिंक आधे घंटे वो देख रहे थे कि शी गॉट द मेडल, शी गॉट द मेडल, माय मदर वाज लुकिंग, ये भारी है, अच्छा है, I got those emotions,
0: वजन कर रही,
1: ये भारी है, ये अच्छा है, ये लाया है। हर एक रिश्तेदार को बोल दिया गया कि इसने मेडल लाया है, यहाँ पे गई है, टीवी खोलो इंटरव्यूज दे रही है,
0: अच्छा
1: वो कर रही है, ये कर रही है। सो उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है। अगर हम ओवरऑल सोसाइटी की बात करें जनरल में, लड़कियों को बहुत पहले 2018 में नहीं देते थे उतना खेलना, बिकॉज अगर इफ आई टॉक अबाउट माई रिलेटिव, दे वर ऑल्सो लाइक हाथ पैर टूट जाएगा रग्बी में, फिर क्या?
0: अक्सर लड़कियों को सुनना पड़ता है,
1: रग्बी इज अ गेम जहाँ पे आपको मार पीट ही पड़ती है, बिकॉज इट इज अ टैकलिंग गेम,
0: धक्का-मुक्की होती है।
1: तो हर एक का यही कहना था ज्यादातर कि हाथ पैर टूट जाएगा फिर क्या करेगी, वो हो जाएगा तो फिर क्या करेगी, अब ये बड़ी हो गई है अब खेलने की क्या जरूरत है। मत मेरे जो पेरेंट्स थे, माय फादर एंड माय मदर, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी इन दिस गेम, इवन माय सिबलिंग्स, माय फ्रेंड्स, एवरीबॉडी सपोर्टेड, इवन द कोच, देयर इज द इरफान अजीज बोटा, ही इज वेरी सपोर्टिव
0: जी,
1: ही इज लाइक अ फादर टू मी। मतलब उतना सपोर्ट मुझे नहीं लगता,
0: एनकरेज करना बहुत बड़ी बात है कि आगे बढ़े।
1: क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था विद द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी आई थॉट कि आई शुड क्विट,
0: देखिये महविश, आपने इस प्रेशर की बात की जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, ये सोसाइटी का प्रेशर कई लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ये कोई काम नहीं करने देता कि हो क्या वाइनी, ये क्या वाइनी। देखिए सबसे बड़ी बात है जो मेंटल प्रेशर होता है, जज करना होता है। यहाँ पे जो रवायती कशर पटवाने देते थे, रवायती कार्च बिकॉज ऑफ दिस, वो इस वजह से रुक रहे हैं, कहा कर काम है ये करे वे नहीं है काम, क्राल कार सुत बांधी, कांदर कार सुत करता वन बांधी, तेले काम पाए कि ब्रोंथ कित पर पाए। अब माशाल्लाह लड़कियां आगे बढ़ रही है, स्पोर्ट्स में बुरी बात नहीं है, और सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स का सपोर्ट जब आपको मिलता है ना, आप डिग्निफाइड वे में बाहर जाते हैं, वो बहुत मायने रखता है पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ। तो उस बारे में आपकी मदर के बारे में मैं बात करना चाहूंगी डिटेल में, लेकिन पहले एक और गीत अपने सुनने वालों के लिए, क्योंकि माँ की बात इसलिए करूंगी, आपने एक ट्रेजेडी की बात की, माँ ने आपको एनकरेज किया गेम की तरफ जाने के लिए, तो उसको किसने एनकरेज किया या उसको उस ट्रॉमा से निकालने के लिए आप लोगों ने क्या किया, वो जरा मैं आपसे जानना चाहूंगी।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रूशित सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जहां जाएगा हमें पाएगा।
5: जी जहां जाइएगा हमें पाइएगा, क्योंकि फैसिलिटी दस्तियाब है। आप मोबाइल ऐप पे भी सुन सकते हैं। अब सेलफोन सबके हाथ में होता है, तो लाइव शो पयाम सुबह आप कहीं भी सुन सकते हैं, घर में बैठ के, गाड़ी में, चलते फिरते खेत खलियानों में। तो सभी को पता है कि ये लाइव शो पयाम सुबह है और मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट

0: बैठे हैं रग्बी प्लेयर, मैं विश्व रशीद वानी। हम बात कर रहे थे मेंटल ट्रॉमा की, जिसकी वजह से महविश ने ये रग्बी गेम अपनाया डॉक्टर की सजेशन से, लेकिन माँ ने इस तरफ इनको उत्साहित किया कि आप इस गेम की तरफ जाओ। अब जो मेंटल ट्रॉमा था, आपकी बहन थी जो चली गई, लेकिन माँ की बेटी थी। यहाँ पे ये खेल तक ही मैं महदूद नहीं रखना चाहती, क्योंकि माइक्रोफोन के उस पार ऐसी कई माएँ होंगी जिन्होंने कुछ ना कुछ खोया है। तो मुझे बताइए कि आपने ये गेम अपनाया
1: जी,
0: माँ ने क्या अपनाया अपना गम सबसाइड करने के लिए?
1: माँ ने सबसे पहले जितना एनकरेज हमें किया है, हम सब बच्चों को किया है, मुझे नहीं लगता है कि मैंने उतनी स्ट्रांग मदर कहीं देखी है
0: जी।
1: अगर उनका गम ऐसा है जो हम बयां भी नहीं कर सकते,
0: बिल्कुल सही जी, जी।
1: अगर मेरी बहन खोई है तो उन्होंने एक बच्चा खोया है,
0: बिल्कुल।
1: तो अगर मैं माँ की बात करूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे, बट कहीं ना कहीं उनके दिल में वो अभी भी है, वैसा ही जख्म है,
0: माँ का कलेजा।
1: हाँ, तो उनका कहना है कि किचन गार्डनिंग मुझे बहुत सुकून दे देता
0: है। अरे क्या बात है, बिल्कुल वो करती है किचन,
1: वो किचन गार्डनिंग करती है। तो उनका कहना है कि अगर मैं बैठी रहूंगी तो मुझे 10 ख्याल जहन में आ जाते हैं कि वैसे हो गया था, ऐसे हो गया था। किचन गार्डनिंग से उनका जहन बहुत बिजी रहता है
0: जी।
1: तो उसकी वजह से उनका एक हिसाब से खुद को बिजी रखने का तरीका वही है। अगर अब हम वैसे करेंगे बात इनक्रेजमेंट की, मेरी मदर ने मुझे बहुत इनक्रेज किया है, नॉट जस्ट मी, मेरे भाई को, मेरी बहन को, बट सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मुझे ही किया है, क्योंकि आई वॉज द चाइल्ड जिसको सबसे ज़्यादा ट्रामा हो गया था।
0: अच्छा,
1: बिकॉज जिस बहन की हमारी डेथ हो गई थी, आई हैव नेवर टेकन ट्यूशन फ्रॉम एनी अदर पर्सन, शी यूज टू ट्यूट अर्मी।
0: अच्छा,
1: हर बार
0: पढ़ाया
1: है।
0: देखिए, ये माँ की बात इसलिए यहाँ पे मुनासिब मैंने समझा कि करूँ। ट्रॉमा में कई ख्वातीन हैं,
1: बिल्कुल,
0: कई लड़कियां हैं, एक राह मिलती है कि आपकी माँ ने क्या किया, दूसरी माँ भी वही राह कोशिश करके वो गम गलत करने के लिए वो राह दूर कर सकती है। अब आपकी स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, गोल्ड मेडल्स आपने जीते, किन किन स्टेट्स का आपने दौरा किया रग्बी के सिलसिले में? जब हम रग्बी गेम की बात करते हैं, कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में खेला?
1: सबसे पहली बात करेंगे तो पहले हम चंडीगढ़ गए थे, तो पहला मेरा चंडीगढ़ में रहा है, उसके बाद भुवनेश्वर में रहा है जो कि ओडिशा में आता है, देन उसके बाद महाराष्ट्र हम गए हैं। फिर हमारा रेगुलर ऐसे ही रहता है, इन्हीं स्टेट्स में कंटिन्यू रहता है, हमारा गोवा में रहा है, हमारा बिहार में रहा है, हमारा MP में रहा है, तो अभी एक और नेशनल आने वाला है जिसकी तैयारियाँ चल रही है, और उसी तैयारियों में अगर देखा जाएंगे तो वहीं पे हमारी इंडियन सिलेक्शन भी हो जाती है। तो अभी फिलहाल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट नेशनल कि वो कहाँ पे हो जाएगा।
0: उसके लिए आप सिलेक्टेड हैं?
1: हाँ, फॉर द नेशनल आई एम सिलेक्टेड बिकॉज आई हैव बीन द कैप्टन ऑफ JNK रग्बी टीम फॉर 8 years।
0: हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कई लड़कियों का जिक्र किया जो कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं और रग्बी खेलती हैं, जैसे सालिया यूसुफ, साजिदा यूसुफ, दो बहनें हैं, राफिया रिशिया, अजहर फातिमा। आपको लगता है कि ये जो दो चार लड़कियों का मैंने जिक्र किया, आप तो माशाल्लाह स्टूडियो में तशरीफ रखी हुई है, एनकरेज हो रहा है आप लड़कियों की तरह, बाकी लड़कियां आ रही हैं इस गेम की तरह?
1: बिल्कुल, क्योंकि जब हम गए थे तो हम कुल मिला के 5-6 लड़कियां थी जब हम गए थे। अब अगर हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे पास अंडर 14 की टीम निकलती है लड़कियों की, अंडर 18 की टीम निकलती है लड़कियों की, सीनियर्स की टीम निकलती है लड़कियों की, अभी बहुत सारी लड़कियां हैं। बोला अगर हम फार फ्लंग एरियाज की बात करेंगे, जैसे हमारा बांडीपुर आता है, कुपवारा आता है, वहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि लड़कियाँ खेलेंगी, वहाँ से अब लड़कियाँ आती है, पुलवामा से लड़कियाँ आती है, शोपियाँ से लड़कियाँ आती है, तो लड़कियों ने देखा कि नहीं, हम भी कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने लड़कियों में बहुत कैपेबिलिटी रखी है एज कम्पेयर टू मैन, तो वो कैपेबिलिटी अब यूज कर रही है लड़कियाँ हर एक
0: फील्ड में,
1: चाहे वो स्टडीज हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो, तो लड़कियां अभी बहुत आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल,
0: देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आपकी भी कई जरूरियात होंगी इस गेम में, रग्बी गेम में, तो जब आपने स्टार्ट किया था अब तक क्या देखती हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर
1: जब में? हमने स्टार्ट किया था जो पोलो ग्राउंड में हमारा ग्राउंड था, दैट वाज नॉट आवर्स, तो हम किसी भी ग्राउंड में जाके खेलते थे। इवन हमने सड़क पे खेला है क्योंकि ग्राउंड अवेलेबिलिटी
0: नहीं थी।
1: अभी की बात अगर हम करें, हमारे पास एक प्रॉपर टर्फ है जो कि एशिया का सबसे बड़ा रग्बी का ग्राउंड है पोलो ग्राउंड में, तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो

0: बहुत चेंज आ चुकी है फ्रॉम 2018 टू 2026। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, टैकल पैड्स होते हैं, हमारी बॉल्स होती है, हमारे कोन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अब इजीली प्रोवाइड होती हैं।
1: कुछ कहना चाहेंगी जो आपको लगता है कि कमी बेशी है, ऐसा होना चाहिए उस स्टेट में, ऐसा है या मुल्की या इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा है?
0: एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, हमारे कश्मीर में उतने टूर्नामेंट्स नहीं होते, जबकि हमारे पास सबसे बड़ा ग्राउंड है एशिया का। मैं वही बोलना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे वैसे टूर्नामेंट्स होने लगेंगे तो एक तो बच्चे भी देखने को आते हैं, ऑटोमेटिकली उनका जहन वहीं से जाता है, तो ड्रग्स भी ऑटोमेटिकली छूट ही जाता है।
1: और ये अच्छी बात की तरफ

0: अदर स्टेट्स हमारे कश्मीर में उतने टूर्नामेंट्स नहीं होते, जबकि हमारे पास सबसे बड़ा ग्राउंड है एशिया का। मैं वही बोलना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे वैसे टूर्नामेंट्स होने लगेंगे
1: जी
0: तो एक तो बच्चे भी देखने को आते हैं, ऑटोमेटिकली उनका जहन वहीं से जाता है, तो
1: जी
0: ड्रग्स भी ऑटोमेटिकली छूट ही जाते
1: और
0: हैं।
1: ये अच्छी बात की तरफ आपने महविश अटेंशन मबजूल करवाई कि उतने टूर्नामेंट्स रग्बी के नहीं होते हैं। देखिए यूजुअली जब हम यहाँ किसी भी मुल्क की बात करते हैं, किसी भी स्टेट की बात करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की नहीं, देखिए वहां तो रग्बी खेला जाता है। यहाँ पे हम यूजुअली देखते हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इन गेम्स को भी प्रमोट करना चाहिए जिससे बच्चा उत्साहित हो और इन गेम्स की तरफ भी आए।
0: बिल्कुल, अगर अगर आप ऐसे लेमन लैंग्वेज में देखेंगे, पेरेंट्स को पता है क्रिकेट है, फुटबॉल है,
1: फुटबॉल है,
0: हॉकी का भी अब खत्म ही हो गया है कि हॉकी भी है,
1: सही,
0: अदरवाइज हॉकी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, टाइकोंडो है आपका, टाइकोंडो आता है आपका, पेंचक स्लैट आता है, ऐसी सारी गेम्स है। एक हिसाब से डिफेंसिव रहता है एक बच्चा। अगर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग, मेरे को किसी चीज से अब डर नहीं लगता है कि स्पोर्ट्स ने मुझे उतना बोल्ड बनाया।
1: बोल्ड बनाया,
0: बिल्कुल।
1: देखिए आपने कहा कि यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल है, जैसे हम सब्जेक्ट्स में मेडिकल और डॉक्टर और ये इंजीनियर बताते हैं, इस में भी वही हो गया है पेरेंट्स का कि बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाए, क्रिकेट में जाए और फुटबॉल में जाए, और रग्बी जैसे पेंचक्सलैट की आपने बात की, आइस स्टॉक की बात की, बहुत सारी गेम्स है जिसमें बच्चा एक्सेल कर सकता है। बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, आपकी चॉइस का एक और गीत हम सुनना चाहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: कौन सा वाला गीत सुनेंगे?
0: अभी हमारे कश्मीरी आर्टिस्ट है फहीम अब्दुल्ला साहब, उनका गाना सयारा है,
1: बहुत ज्यादा हिट रहा और चार्ट बस्टर कह सकते हैं, तो चलिए आपके लिए पेश करते हैं।

0: जी, जिन दोस्तों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनको हम बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर। लाइव शो पयाम सुबह जारी है। आपके साथ है आपकी मेज़बान सकीना और मेरे साथ आज की गेस्ट हैं महविश रशीद वानी, रग्बी प्लेयर हैं। महविश,
1: जी
0: अचीवमेंट की बात करेंगे। जब भी कोई खिलाड़ी किसी गेम से वाबस्ता होता है, टारगेट जरूर होता
1: जरूर
0: है
1: होता है।
0: कि मुझे क्या अचीव करना है। फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, बहुत सारे खिलाड़ियों की बात हुई। अब हम ये नहीं कह सकते कि कोई छोटा खिलाड़ी है कोई बड़ा है। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो,
1: बिल्कुल
0: आंसुओं से एक विदाई उन्होंने दी, लास्ट वर्ल्ड कप था उनका। देखिए, अभी आप छोटी हैं, ये गेम खेल रही है, क्या टारगेट है, क्या हासिल करना चाहती हो? होता है ना कुछ कि मैं ये करूं तो फिर मैं मुझे चैन की
1: चैन की
0: सांस
1: सांस
0: मिलेगी,
1: मिलेगी।
0: तो क्या है?
1: अगर हम बात करेंगे, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का टारगेट ओलंपिक्स ही होता है।
0: जी,
1: तो फिलहाल अगर मैं बात करूंगी तो डायरेक्ट मैं ओलंपिक्स में नहीं
0: नहीं
1: जा
0: जा सकती।
1: सकती।
0: सही
1: आई
0: बात है,
1: हैव टू गेट सिलेक्टेड इन इंडिया टीम।
0: पायदान पायदान
1: पायदान
0: एक एक करके
1: करके
0: जाना
1: जाना है,
0: होता है।
1: बिल्कुल एक एक सीढ़ी चढ़ के जाना होता है, तब जाके मैं ओलंपिक्स में जा सकती हूँ। रही बात, मेरा जो गोल है वो ये है अभी कि मैं इंडिया टीम में सिलेक्ट हो जाऊँ और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ,
0: इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि हमारे नेशनल्स में ही हमारी सिलेक्शन होती रहती है
0: जी,
1: और डिपेंड्स ऑन आवर परफॉर्मेंस, हमारा जो एजिलिटी है उसी पे डिपेंड करके हमारी सिलेक्शन होती है,
0: चलो अल्लाह आपको कामयाब करे, आपकी सिलेक्शन हो जाए, हमारे कश्मीर
1: इंशाल्लाह।
0: का मजीद आप नाम रोशन करे, 22 गोल्ड मेडल से उनकी रैंकिंग में इजाफा हो जाए।
1: बिल्कुल
0: और कॉलेजेस की हम बात करेंगे महविश, आपने किस कॉलेज से तालीम हासिल की? यहाँ वेमेन्स कॉलेज, वुमेन्स
1: वुमेन्स
0: कॉलेज।
1: कॉलेज एमी रोड से।
0: देखिए, लड़कियाँ बहुत सारी हैं, आपको वहाँ पढ़ाई करके क्या लगा? गेम्स में वहाँ एक सपोर्ट सिस्टम पूरा है कि लड़कियाँ बाहर निकल के आएं?
1: बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है जितना वुमेन्स कॉलेज में सपोर्ट सिस्टम है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स,
0: स्पोर्ट्स, वही मैं कह रही
1: वो
0: हूँ,
1: किसी कॉलेज में मैंने नहीं देखा है। बिकॉज मेरी बहुत सारी दोस्तें कुछ और कॉलेजेस में
0: डिफरेंट
1: पढ़ती
0: कॉलेजेस में
1: है
0: पढ़ रही हैं।
1: या कहीं कुछ और कर रही है, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि हमारे स्पोर्ट्स टीचर ने हमें आज ये कहा। हमारे स्पोर्ट्स टीचर वहाँ पे थे, मेहता सर थे,
0: जी
1: ही यूज़ टू डू एवरी थिंग। मतलब उनकी एडिया घिस जाती थी बट वो कुछ ना कुछ हमारे लिए कर ही लेते थे। जैसे कि बास्केटबॉल की बात हमने की थी, तो वो मैं कॉलेज में ही खेलती थी। उनका हमेशा रहता था कि मेरी टीम आगे जाए, या मेरा रग्बी अलग था, मतलब वो कॉलेज के साथ रिलेट ही नहीं करते थे। वो स्टिल मेरे ग्राउंड पे आके मेरी परफॉर्मेंस देखते थे। तो वुमेन्स कॉलेज की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे बहुत सपोर्टिव है।

0: सारी चीज़ें, हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत सपोर्टिव थी, इवन हमारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे कि इनका अगर अभी क्लास छूट रहा है तो ये मगर कुछ और कर रहे हैं, फिर बैक एंड से हमें वो अलग से समझा देते थे। तो बहुत सपोर्टिव है वुमेंस कॉलेज का जो भी है।
1: तो लड़कियों के लिए वाकई में ये खुशायन बात है कि हर तरफ से एक एनकरेजमेंट मिल रहा है,
0: बिल्कुल
1: सपोर्ट मिल रहा है। यूजुअली हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं, या स्कूल में ऐसा है, कॉलेज में ऐसा है, टीचर्स नहीं मानते, लेकिन अब माहौल ऐसा बन चुका है कि हर जगह से एनकरेजमेंट मिल रही है।
0: बिल्कुल
1: और सुनने वालों को मैं बता दूं कि महविश एक ऐसी बबली गर्ल है, एक टॉल है, हैंडसम है, खूबसूरत है, ये इंडिपेंडेंट भी है।
0: बिल्कुल
1: छोटी है, कैसे इंडिपेंडेंट है, कमा लेती हैं, वो भी हमारे साथ शेयर करेंगी।
0: बिल्कुल
1: लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे इस गीत के साथ।

0: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर, शो जारी है पयाम सुबह। हमारी गेस्ट हैं महविश रशीद वानी, रग्बी प्लेयर। हमने गीत से पहले बात की थी, महविश इंडिपेंडेंट भी है। अब चूंकि छोटी है तो जानना चाहेंगे, इस गेम के अलावा आप काम भी करती हैं, इस बारे में दोस्तों को बताइए।
1: बिल्कुल, मेरा जो स्पोर्ट्स है उसके साथ कंटिन्यू रह के मैंने एक बार ऐसे ही खेल खेल में रेज्यूमे बना दिया और मैं एक इंटरव्यू के लिए चली गई। इंटरनेशनल कंपनी है वो, तो आई गॉट सेलेक्टेड इवन दो आई वाज हैविंग जीरो एक्सपीरियंस और वहाँ पे लड़कियाँ थी विद एक्सपीरियंस, तो आई गॉट सेलेक्टेड देयर। तो माशाल्लाह से आई एम अर्निंग गुड देयर, सो मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स, वैसी बात है।
0: जब आपने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, डिपेंडेंट नहीं हूँ, कृषि पर फन बहुत अच्छा इसका डर।
1: बिल्कुल,
0: यूजुअली जो लड़कियां होती है ना वो थोड़ा पैसों के मामले में बहुत मोहतात रहती है।
1: बिल्कुल, हाजत जरूरी न्यूनते, हाजत सबको पड़ती है, तो हाजत का जरूरी।
0: किस पे ज्यादा खर्च करना पसंद करती हो?
1: आई लव टू स्पेंड ऑन माई फैमिली।
0: अच्छा,
1: हाँ, ऐसे नहीं है कि मेरी मामा मेरे से कैश ले लेती है या पैसे ले लेती है, शी नेवर टेक्स कैश और मनी एनीथिंग फ्रॉम मी। वो हर बारी कुछ भी बोलती है मुझे नहीं चाहिए, बट आई ऑलवेज डू समथिंग स्टफ, कुछ खरीद लेती हूँ भाई के लिए, बहन के लिए, मेरी बहन की अभी बेटी है उसके लिए मैं खर्चा कर लेती हूँ। सो एक हिसाब से आई डोंट डू सेविंग्स, ऐसा सीन है, आई स्पेंड ऑल ऑन ऑल माय मनी ऑन माय फैमिली।
0: देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अभी बहुत छोटी

है, अब जहनी तौर पे माशाल्लाह मैच्योर भी हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, खेल खेलना चाहती है, एक अचीवमेंट आपके आपका टारगेट है कि वो मैं अचीव करूं, हम दुआ करते हैं कि वो आप अचीव करें, इस खेल में एक्सेल करें, जिंदगी में एक्सेल आगे करें, आगे बढ़े, पापा मम्मी का नाम रोशन करें और उनके साथ साथ स्टेट का मुल्क का नाम रोशन करें। फिलहाल आपसे कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ लाई, वाकई मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहले कहा जब कोई लड़की शो में आती, कोई खातून शो में आती है, मुझे कशर पटवन में शान वगनान कि कूर तिछा ब्रोह पकान इम्तिछा के अचीव कुरमुत बाकिन कोरिन खतर यम आसन अख आइडियल या मनो कि यम छ ब्रोह पकने चक मिसाल कि हम भी आगे जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गीत के सहारे अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं और गीत के उस पार अगली आवाज होगी लाहौत फरहान की।

समीन आप समाप्त कर रहे थे लाइव इंटरेक्टिव शो पयाम सूप। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।

0: سامنے محترم، تو اس وزان چکر درو یوز کلام وہاب خار سداکار سہیل عزیز تہند ہم نوا یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد آپ آکاش وانی دلی سے انگریزی اور ہندی میں خبریں سماعت کریں گے۔
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यो का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार पूरी योजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वाइडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान

राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण का आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास के

समीन आपने फिल्म अग्निपथ से ये प्यारा सा नगमा समाप्त किया। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे अजय अतुल की मौसीकी में, और ये आवाज़ थी सोनू निगम की।

कल हो ना हो। जी हाँ दोस्तों, आपने यह फिल्म का नाम जिसका नगमा आपने अभी अभी सुना, आवाज़ थी सोनू निगम की। आइए अब अंकित तिवारी की मौसीकी से सजा नगमा समाप्त करते हैं। संदीप नाथ ने यह नगमा लिखा है, फिल्म का नाम है आशिकी 2। और हाँ दोस्तों, ये आवाज़ है श्रेया घोषाल की।

समीन, आप देवेंद्र, डॉक्टर देवेंद्र काफिर का कलाम समाप्त कर रहे हैं अरमान मलिक की मौसीकी में। अरिजीत सिंह और अनीस कौर की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है कपूर एंड सन्स।

0: सुमेन फिल्मीनक में आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। ठीक 12:30 हो रहे हैं, ये वक्त है खबरों का। ये समाप्त करते हैं पहले उर्दू, उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 खबरों का बुलेटिन लेकर मैं इशफाक अमीन। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए ऐसे चैलेंजों से बैन अलाक्वामी कवानीन के तहत निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया है। जकार्ता में दो तरफा बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर अजम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने आलमी सतह पर दहशतगर्द करार दी गई तंजीमों और अफराद के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया। वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के 3 रोजा दौरे पर मेलबर्न पहुंच रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर अजम ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथोनी अल्बानीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा महज एक यात्रा नहीं बल्कि एक रूहानी रियाज भी है। रोजनामा दैनिक जागरण के आज के कौमी शुमारे में शाया अपने एक मजमून में उन्होंने कहा कि यह यात्रा हिंदुस्तान के रूहानी शऊर, सकाफती विरसे और इंसानी अकदार की जिंदा अलामत है। एलजी ने यह मजमून सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले एक वफद ने साबिक वजीर और पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीन की कयादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफद ने जिला से मुतलिक अवामी अहमियत के हामिल कई मसाइल जिनमें तोसा मैदान के दोबारा खोलने, दूध पथरी में सयाहों के रात के क्याम और हमहामा में पीने के पानी का मसला एलजी की नोट्स में लाया। इधर द कश्मीर कन्क्लेव के बानी एडवोकेट जहांजेब अलाकबंद और कश्मीर एआई एंड क्रिएटर समिट के बानी मियां यासी ने भी लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। दरियासना माहिर समाजियात और मुहक्किक डॉक्टर सोहेल रसूल मीर ने एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने एलजी को जम्मू कश्मीर के सकाफती विरसे को महफूज रखने और फरोग देने के लिए किए जा रहे इकदाम से आगाह किया। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 9,837 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल एक और काफिला वादी के लिए रवाना हुआ। काफिले में 6,684 मर्द और 2,730 खवातीन के अलावा कई बच्चे और साधु भी शामिल हैं। इनमें से कई यात्री पहलगाम जबकि दीगर कुछ सोनमर्ग के रास्ते यात्रा करके श्री अमरनाथ जी गुफा पर हाजिरी देंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला कन्हैया कुमार नामी एक 20 साल यात्री 9 माह का सफर तय करने के बाद वादी पहुंच गया है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद बडरू ने खबर दी है कि मजकूरा नौजवान ने गुजशत साल अक्टूबर के महीने में रूरल स्केट्स पर अपनी यात्रा शुरू की और 14 रियासतों से गुजरकर कल रात काजीगुंड पहुंच गया। कन्हैया कुमार श्री अमरनाथ जी गुफा की तरफ रवाना हुआ है। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि हुकूमत अवामी अहमियत के हामिल मनसूबों की बरवक्त तकमील, बेहतर शहरी सहूलियात की फरहमी और लोगों के मियारी हयात में तब्दीली लाने की वादाबंद है। वो कल राजौरी में नौशहरा के PWD डाक बंगला में 2,49,00,000 रुपये की लागत से तामीर किए गए कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तिताह करने के मौके पर एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जदीद सहूलत इलाके के इंतजामी ढांचे को मजबूत बनाएगी। इससे कबल नायब वजीर आला ने नौशहरा हल्के में सड़कों, पुलों और दीगर बुनियादी ढांचों के मंसूबों पर जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। पार्लिमानी उमूर की मरकजी वजारत के अहतमाम से नई दिल्ली में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान साल 2024-25 के नेशनल

यह आवाज है आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की। समय दिन का एक बजे चाहता है। चंदी लम्बो बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें समाप्त करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्य क्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वी के बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में

अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: since 1954. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atalanta to enter the quarterfinals of the tournament. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: हमारी आवाज़ अब तक पहुंच रही है आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय ठीक 1:10 हो रहे हैं। आइए समाप्त करते हैं एनसीईआरटी का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
4: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
3: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
4: वहाँ क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
3: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
4: वाह, ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
3: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
4: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
4: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
3: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
4: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
3: जी।
4: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
3: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
4: श्रोताओ, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
3: जी।
4: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
3: जी।
4: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
3: जी। अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
4: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
3: जी।
4: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
3: जी।
4: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
3: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
4: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
3: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
4: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
3: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
4: क्यों?
3: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत

0: ही मिल पाता।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
0: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी।
0: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओं आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो। अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं।
1: इनका

0: रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
1: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
0: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
1: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं। और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है।

0: के शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीट जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है, इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
4: सच?
2: धन्यवाद।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
1: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते। और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।

0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: समय अब समाप्त कर रहे थे एनसीईआरटी का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
5: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी आकर 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
6: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहाँ प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल एडवाइजरी और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
5: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
6: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमयी बनाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।

दम लगा के हईशा। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म का नाम और वरुण ग्रोवर का लिखा नगमा आप अनु मलिक की मौसीकी में समात कर रहे हैं और यह आवाज़ है मोनाली ठाकुर की।

आइए ज़मीन अब गुलजार के अशार समात करते हैं। यार रहमान की मौसीकी में उदित नारायण महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है दिल से।

0: जासमीन, आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। 1:50 हुआ चाहते हैं, चंद ही लम्हों बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी में खबरें समाप्त करेंगे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ्फुज में भारत की शिरकत से दोनों मुल्कों की मुश्तरक सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं। ब्रिक्स खवातीन की दो रोज़ा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है, ताकि खवातीन को बाख्तियार बनाने और पायदार तरक्की के बारे में ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सके। ईरान ने अमरीका के सिलसिलेवार हवाई हमले के बाद बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल की आलमी कीमतों में 2% से ज्यादा का इजाफा हो गया। और फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के हमराह आज योग्यकर्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म का क्लासिकी योग्यकर्ता रक्स के साथ रवायती अंदाज में खैरमकदम किया गया, जिसमें इंडोनेशिया के गुनागुन सकाफती विरसे की झलक पेश की गई। दोनों रहनुमाओं ने 9वीं सदी के मंदिर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भारत इंडोनेशिया इश्तराक के जरिए तहफ्फुज की जारी कोशिशों का जायजा लेने से पहले मंदिर की नक्काशी का भी जायजा लिया। एक मुश्तरका बयान में सदर प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि परम्बानंद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान सदियों पुरानी तहजीबी रिश्तों की एक अलामत है। उन्होंने मंदिर कम्प्लेक्स के तहफ्फुज और बहाली के लिए मदद पर भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सकाफत दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए एक पुल के तौर पर काम कर रही है। योग्यकर्ता में परम्बानंद मंदिर में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने दौरे को रूहानियत से भरपूर और यादगार करार दिया। उन्होंने तकरीबन 1200 साल तक इस शानदार विरसे का तहफ्फुज़ करने पर इंडोनेशिया के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मंदिर के तहफ्फुज़ में भारत की शराकतदारी से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत का इजहार होता है।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वो मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात पर भगवान शिव के साथ जुड़ने के मुतादीद मौके मिलने को अपनी अच्छी किस्मत समझते हैं। इंडोनेशिया में योग्यकर्ता के मकाम पर परम्बानंद मंदिर में एक इज्तमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो हटकेश्वर महादेव के वतन वाडनगर में पैदा हुए थे और ये कि 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उनके लिए खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो इसकी तामीर व तरक्की से बराह रास्त जुड़े हुए हैं।
2: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने आला तालीम के शोबे में ताउन को उसत देने की गरज से एक अहम कदम उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट AIIM बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला समुद्र पार कैंपस कायम करेगा। ये कैंपस मशरकी जावा में सिंगोसारी खसूसी इकतसादी जोन में कायम किया जाएगा। इस कैंपस से पूरे आसियान खित्ते के तलबा और पेशावर अफराद के मुस्तफीद होने का इम्कान है। IIM बेंगलुरु के डायरेक्टर इंचार्ज यू दिनेश कुमार ने कहा कि इस पहल कदमी से तालीम के शोबे में इश्तराक और ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा।

वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर आज मेलबर्न पहुंचने वाले हैं, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बानीज के साथ तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शरीक होंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे, जो भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात का एक मजबूत सुतून है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत नई दिल्ली में आसियान भारत की एशिया की तिजारत से मुतालिक ज्वाइंट कमेटी AITIGA की 13वीं मीटिंग की मेजबानी कर रहा है, ताकि आसियान भारत तिजारती समझौते का मजीद जायजा लिया जा सके। ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग और इससे मुतालिका मीटिंगें इस माह की 6 तारीख से 10 तारीख तक मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें कुछ अरकान वहां मौजूद हैं, जबकि बाज अरकान वर्चुअल तरीके से मीटिंगों में शिरकत कर रहे हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि ज्वाइंट कमेटी की बदौलत जेली कमेटियों को उनके काम से मुतल्लिक शोबों के बारे में कलीदी नवीयत की रहनुमाई फराहम हुई है। ब्रिक्स मुल्कों के खवातीन की वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी और सेक्रेटरी अनिल मलिक और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने खास इजलास में शिरकत की। यह इजलास कोची के ग्रैंड हयात होटल में दिन के 10:30 बजे शुरू हुआ। इससे पहले खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत सावित्री ठाकुर और सेक्रेटरी अनिल मलिक ने मुकम्मल इजलास में शिरकत की। खास इजलास के दौरान मुश्तरका बयान को मंजूरी दी जाएगी। इजलास के मकाम के नज़दीक देही तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तग़ज़िया और तालीम जैसे मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की क़यादत वाली तरक्की में भारत की हुसूलियाबियों को उजागर करने के लिए नुमाइश का अहतमाम किया गया है। ईरान ने अपने सूबे होर्मुज़गान और बंदरगाही शहर महाशहर पर अमरीकी हमलों के बाद अमरीका की फौजी तनसीबात पर जवाबी हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया और फिजाइया ने अमरीका के 85 फौजी ठिकानों पर मिजाइल और ड्रोन से मुश्तरका कार्रवाई की। इस दौरान बहरीन की वजारत दाखिला ने अपने मुल्क के बाशिंदों से कहा है कि सायरन बजने के बाद पनाहगाहों में चले जाएं। इससे पहले अमरीका ने आबनए हुरमुज से गुजरने वाले तिजारती जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए थे। उधर खाम तेल की आलमी कीमतों में आज 2% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, क्योंकि अमरीका और ईरान के दरमियान ताज़ा कशीदगी की वजह से जंगबंदी को खतरा लाहक हो गया है। इस जंगबंदी की वजह से तवानाई की आलमी मंडियों को थोड़ी राहत मिली थी। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने वेनेजुएला में 24 जून को आए दोहरे शदीद जलजले के बाद ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वहां भारत की जानिब से भेजी गई इमदाद की तौसीक करने के लिए वेनेजुएला हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से रियासत में शदीद बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के बारे में टेलीफोन पर बात की, जिसके दौरान जनाब शाह ने सूरत हाल से निमटने में वजीर आला को मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। जनाब शाह ने गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल से भी रियासत में शदीद बारिश और पानी जमा होने से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में बात की। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती सरकार को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वैंकूवर में पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 3-4 से हराकर 1954 के बाद से पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक मैच में अटलांटा में अर्जेंटीना मिस्र को 2-3 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ़ में भारत की शिरकत से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं। ब्रिक्स खवातीन की 2 रोज़ा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है, ताकि खवातीन को बाख्तियार बनाने और पायदार तरक्की के बारे में ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सके। ईरान ने अमरीका के सिलसिलेवार हवाई हमले के बाद बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया।

समीन, आपने मुकेश और लता मंगेशकर को सुना फिल्म मधुमती में। दोस्तों, शैलेंद्र के अशार आपने सलील चौधरी की मौसिकी में समाहत किए।

तुम सा नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, यह है फिल्म का नाम जिसका नगमा आपने अभी अभी सुना। आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। दोस्तों आपको बता दें कि आप समाप्त कर रहे थे पुराने सदाबहार फिल्मी नगमे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। हमारे अगले ऐलान का कीजिए बस जरा सा इंतजार। जो आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन मीडियम मीटर बजे छक्कर सदाकार सुहेल अजीज हम नवा।

जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों, फिल्मी नगमे लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि हमें हमारे तमाम सुनने वाले सही सलामत होंगे, बखैर वाफियत होंगे और अपना प्रोग्राम सुन रहे होंगे। आइए दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार के इस प्यारे से नगमे के साथ।

फौजी भाइयों, आक्रमण फिल्म से आपने ये प्यारा सा नगमा समाप्त किया। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थीं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस नगमे की धुन बनाई है और आनंद बख्शी ने इस नगमे को कलमबंद किया है। दोस्तों, अखलाक की कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, मगर ये एक ऐसा हुनर है जिससे हर इंसान को खरीदा जा सकता है। अपने अखलाक हमें हमेशा बेहतर करने चाहिए ताकि हम दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाएं।

0: फर्ज भाइयों, आपने जगजीत सिंह को सुना, इंदीवर के अशार आपने समाप्त किए। इस फिल्म का नाम था प्रेम गीत। दोस्तों, प्रोग्राम में नगमे और भी हैं, आपको और भी नगमे सुनवाएंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: जय बाबा बरसानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
3: ये सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
2: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग न हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की पवित्रता बनाए भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
3: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूडिंग पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
0: जी फौजी दोस्तों, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है।

तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं। जी हाँ दोस्तों, ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की, ये अशार थे निदा फाजली के, इस नगमे की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम, जी हाँ दोस्तों, फिल्म का नाम है हर जाई।

जिन दोस्तों ने अपने रेडियो सेट सभी अभी ऑन किए हैं उन्हें हम बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर का प्राइमरी स्टेशन मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों इसके अलावा हम आपसे जुड़े हैं DTH पर और हम आपसे मुखातिब हैं आप ही के मोबाइल फोन्स पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव ऐप के जरिए।

फौज भाइयों, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के गाए हुए इस नगमे के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का जो वक्त है मुकम्मल हो रहा है। आपसे लेंगे विदा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होंगे। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान लाहौता फरहान को इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 3:50 होने वाले हैं। आइए समाप्त करते हैं उर्दू खबरों का बुलेटिन।

भारत और इंडोनेशिया के माबैन रिश्तों को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के सदर के साथ योगयाकार्ता में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मकाम प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया, जहां उनका रिवायती तौर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वहां शिवा मंदिर में प्रार्थना की। इससे पहले भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए ऐसे चैलेंजों से बैन अल-अक़वामी कवानीन के तहत निमटने के लिए मुश्तरक कोशिशों पर जोर दिया है। जकार्ता में दोतरफा बातचीत के बाद एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्रभावो सुबियांतो ने आलमी सतह पर दहशतगर्द करार दी गई तंजीमों और अफराद के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के तहफ्फुज और सहूलियात का खास ख्याल रखना इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वो कल शाम यात्रा का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत कर रहे थे। मनोज सिन्हा ने अफसरान को हिदायत दी कि यात्रा पर रवाना होने से पहले हर यात्री की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वो मकामी मेहमान नवाजी और जम्मू कश्मीर की रिवायती फनून व दस्तकारी की खूबियों का तजुर्बा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोक भवन में यात्रा से मुतल्लिक कायम कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा महज एक यात्रा नहीं बल्कि एक रूहानी रियाज भी है। रोजाना दैनिक जागरण के आज के कौमी शुमारे में शाया अपने एक मजमून में उन्होंने कहा कि यह यात्रा हिंदुस्तान के रूहानी शऊर, सकाफती वर्से और इंसानी अकदार की जिंदा अलामत है। एलजी ने यह मजमून सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी है और अब तक 130,000 से जायद यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। आज दोपहर 2 बजे तक 18,764 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। बेशतर यात्री गुफा में हाजिरी देने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए हैं। यात्री वादी की खूबसूरती के साथ साथ यहां की मेहमान नवाजी से भी काफी मुतमईन हैं। यात्रा के ऐसन इनकाद के लिए मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों ने हर तरह के इंतजाम किए हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि यात्रा के श्रद्धालुओं को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दरियासना आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 9,837 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल एक और काफिला वादी पहुंच गया। काफिले में 6,684 मर्द और 2,730 खवातीन के अलावा कई बच्चे और साधु भी शामिल हैं। इनमें से कई यात्री पहलगाम जबकि दीगर कुछ सोनमर्ग के रास्ते यात्रा करके श्री अमरनाथ जी गुफा पर हाजिरी देंगे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला कन्या कुमार नामी एक 20 साला यात्री 9 माह का सफर तय करने के बाद वादी पहुंच गया है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पटरू ने खबर दी है कि मजकूरा नौजवान ने गुज़श्ता साल अक्टूबर के महीने में रोलर स्केट्स पर अपनी यात्रा शुरू की और 14 रियासतों से गुजरकर कल रात काजीगुंड पहुंच गया। कन्हैया कुमार श्री अमरनाथ जी गुफा की तरफ रवाना हुआ है। अदालती उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले एक वफद ने साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासिन की कयादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफद ने जिले से मुतलिक अवामी अहमियत के कई मामलात जिनमें तोसा मैदान के दोबारा खोलने, दुधपथरी में सयाहों के रात के क्याम और हुमहामा में पीने के पानी का मसला एलजी की नोटिस में लाया। इधर द कश्मीर कन्क्लेव के बानी एडवोकेट जहां जेब इलाका बंद और कश्मीर एआई एंड क्रिएटर समिट के बानी मियां यासीन ने भी लोक भवन श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की।
دریں اسنا ماہر سماجیات اور محقق ڈاکٹر سہیل رسول میر نے ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی. ملاقات کے دوران انہوں نے ایل جی کو جموں کشمیر کے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے

0: के लिए किए जा रहे इकदाम से आगाह किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि हुकूमत अवामी अहमियत के हामिल मनसूबों की बरवक्त तकमील, बेहतर शहरी सहूलियात की फराहमी और लोगों के मयारी हयात में तब्दीली लाने की वादाबंद है। वो राजौरी में नौशेरा के पीडब्ल्यूडी डाक बंगला में 2,49,00,000 रुपये की लागत से तामीर किए गए कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तिताह करने के मौके पर एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह जदीद सहूलत इलाके के इंतजामी ढांचे को मजबूत बनाएगी। इससे कबल नायब वजीर आला ने नौशेरा हल्के में सड़कों, पुलों और दीगर बुनियादी ढांचों के मनसूबों पर जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी जराइम से मुतलिक विंग ने साल 2021 में दर्ज किए गए एक मामले के ताल्लुक से उस वक्त के पटवारी लियाकत अली खान, जो कि इस वक्त नायब तहसीलदार के ओहदे पर तैनात है, के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा की अदालत में फर्द जुर्म आयद किया है। लियाकत अली खान पर कुपवाड़ा जिले के हल्के हाईहामा में रेवन्यू रिकॉर्ड्स में फेरबदल करने का इल्ज़ाम है। पासपोर्ट खदमात की फराहमी के लिए बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की जानिब से 11 जुलाई शनिचरवार को एक खसूसी मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के तहत 11 जुलाई को पासपोर्ट सेवा केंद्र श्रीनगर, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र अनंतनाग और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र बारामूला में ये खदमात इस मुहिम के तहत जारी रहेंगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर बीएस रावत ने कहा है कि ख्वाहिशमंद अफराद महकमे की वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान मरकजी सरकार की तरफ से अर्बन चैलेंज फंड के तहत दरदस्त लिए जाने वाले प्रोजेक्टों की निशानदेही और शॉर्टलिस्टिंग के अमल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो आला मैयार और माली एतबार से फॉल प्रोजेक्ट मनसूबे मुरतब करें ताकि इन प्रोजेक्टों की तकमील में कोई दिक्कत पेश न आए। दी तरक्की महकमे के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने महकमे के अफसरों की एक मीटिंग तलब करके इस सेक्टर में मरकजी फ्लैगशिप स्कीमों की अमल आवरी और महकमे की मजमू कारगुजारी का जायजा लिया। सेक्रेटरी मौसूफ ने स्कीमों की अमल आवरी के लिए दस्तियाब रकूमात का मुनसिफाना इस्तेमाल करने और मुस्तकीन तक फलाही स्कीमों के फवायद पहुंचाने की हिदायत दी। पार्लिमानी उमूर की मरकजी वजारत के अहतमाम से नई दिल्ली में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान साल 2024-25 के नेशनल यूथ पार्लियामेंट मुकाबले में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाली यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को एजाजात से नवाजा गया। इस मुकाबले में कश्मीर यूनिवर्सिटी की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। यूनिवर्सिटी की टीम को कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने यह एजाज अता किया। और अब क्रिकेट। मर्दों के क्रिकेट मैच में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हराया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 202 रन का हदफ रखा, ताहम भारत की इनिंग 11 ओवर्स और 4 गेंदों में 76 रन के स्कोर पर सिमट गई। वाजह रहे कि 5 मैचों की इस सीरीज में इंग्लैंड ने 2-0 की सबकत हासिल की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: हमारी आवाज़ अब तक पहुंच रही है आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। मीडियम वेव 268.8 मीटर, FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर, और इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR पर भी। जमीन सपर के ठीक 4 बज रहे हैं। समाप्त कीजिए आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

समय अभी आप पहाड़ी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। 4:20 हुए हैं। आइए पहाड़ी में खबरें सुनते हैं।

0: हैं किताब, इसको कहना है कसाण साहब, यो अपनी तो मैं तसनीफ बनाई नहीं न कुछ, लेकिन जेड़ा बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह का रिकॉर्ड के बीच
1: जी
0: बेशुमार कागज़ था, उसको वाकई इस तरह था कि महाराजा प्रताप सिंह ने कोशिश की थी बाबा जी साहब और उन्होंने मिलन की, तो फिर भी एक हजरत बल के दरमियान किश्ती के बीच मुलाकात हुई। महाराज ने कहे ओके तुम जागीर ले, उन्होंने फरमाया ना जागीर जिस पे खसन होगी उस पे के करेंगे। हजरत मालियो माफ करा कि क्यों अल्लाह वास्ते रोटी दी तो तू उसमें दखल क्यों दे है? ये कलाम हुई सब कुछ हो, तो आखिर उसने कुर्ता कोई दो जोड़ के त्रै पेश किया। उन्होंने फरमाया रख लियो, इन्हें रख लियो तो वांगत जाके अली शाह दर्जी थो वो बुलायो, तो उसते वे कुर्ता कतरा के उसका गुथा बनाया। वो कोई कपड़ा ऐसा है जिसके बीच कीड़ो नहीं लगता किसी किस्म का, आज भी हैं उनके बीच थी ये शेरों का कागज, ये इस किस्म का रिकॉर्ड वगैरह जी तुम भी जिसको आयो वो, तो वो उन्होंने कुर्तों में पार पार के तो मस्जिद की ऊपर की छत के पे लटकाया हुआ था। जिस वे मैंने इसकी जरूरत पड़ी मैं वे तलाश किया तो मैंने काफी रिकॉर्ड मिले जिस पे ये नीर समुंदर हिसाब लें बाबा साहब की सियारफी हैं, अजम बहुत सारा शेर अजम जितना छपे हैं इससे ज्यादा हैं, तो बाबा जी साहब उनकी सियारफी फिर उनकी मलफूजात शरीफ और उनकी किताब इसरार कबीरी, वह इसरार कबीरी है जी वह कल्चर एकेडमी वालों ने छापी है, तुमने देखी है उससे पहले भी देखी बैकी, तो यो रिकॉर्ड इस तरह मिना हाथ आया और आज भी है। हालांकि मारा मकान ना अग को हादसा हुआ तो ये को बेच निकल गया सारा कुछ, तो बाबा साहब रहा कपड़ा बिस्तर वगैरह था एक उन जगह आगे बेच बंद महफूज, तो वो सारा कुछ सड़े हो, उसके बीच एक बंदूक थी आज भी है वह
1: जी,
0: तो वह बंदूक इस तरह हो गई जिस तरह ये हो इसको यो माइक को अगाते हैं इस तरह मुठ्ठी नालों
1: सुकुड़ गई।
0: हाँ बिल्कुल इस तरह हुई हुई थी, हमने वह सट छुड़ी तो ये तो रेनावाड़ी का लोहार गया उसने वह टूट के आनी, तो उसने क्यों इसने बना के दी और अगर कोई इसना ना सियाने या कह के ये वाज पहली बंदूक है मैंने इनाम के मिले, हमने उसने बड़ा सबज मैदान दसाया, उसने क्यों ना मैंने 40 रुपया मैं इसका लेना है तो मैंने एक बकरी दी
1: जी,
0: मैं कह नहीं गां देंगे वो बना के ले आयो, ले आयो तो करीमे का कान खुदा बख्शे उसने दसी वो शिकारी तो बाबा साहब रंगो, उसने क्यों इसने तो कुछ भी नहीं हुआ या ठीक है बल्कि या कि चढ़ी थी तो थोड़ा जो इसके पे फर्क तो बाल पर फर्क तो आगे पिछा को आज वो भी नहीं, वह ठीक है आज भी मेरे को है, तुम कितना देखियो
1: मियाँ साहब अदबी कारनामा को जिक्र हो बाबा अब्दुल्ला साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह यानी बाबा जी साहब आना
0: जी।
1: एक एक एक रुबाई में एक शेर मना वैसे याद है सदके हसन सदका हसन हुसैन दा जी मेरे सरती मेरे सिर ती गम उतार पीरा, इसको के शान नजूल है
0: यू शेर जनाब, इसको शान नजूल जो है कि हूँ बीमार थो
1: जी,
0: इकबाल जी की वालदा साहब जी थी वे
1: इकबाल अजीम
0: जी साहब उन्होंने
1: इकबाल अजीम और
0: हाँ इनकी वालदा उनको हाजरा नाम था
1: जी,
0: तो मेरी पुफी थी वे बाबा जी साहब उनके औलाद पे सबसे छोटी थी, तो उनकी चोली बेच मेरा कहे कि मेरो सा निकल गए, ये जिस वे दसियाल यासीन साहब का वालद साहब ना वे मारा बड़ा पुफा था तो उन्होंने कहा ये ख़त्म हो गए, तो ये पुफी और लेके बाबा जी साहब को गया अमर भी नाल गया
1: जी,
0: उन्होंने फरमाया के गल है ख्याल ये ख़त्म हो गए या गल है ये रोन लगी जे कुछ, उन्होंने फरमाया खबरदार कोई रोए।

रोज पुरान के हसिया कई कई रोज तुर रोज पुरान के हसिया कई कई रोज तुर कई कई रोज तुर वसला का कई दौर लंघाया वसला का कई

दोस्तों, मेरे अभी आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 मीटर के नवे FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन, हमारे अगले ऐलान का जरा सा इंतज़ार कीजिए।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। समय 5:50 हो रहे हैं। आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, यू आकाशवाणी श्रीनगर है। 5:50 हुए। उत्तम गोजरी में खबर सुनो। पहला अहम खबर अंगी सुर्खी, वज़ीर आज़म को दौरा इंडोनेशिया मुकम्मल। भारत ते इंडोनेशिया ने दहशतगर्दी का चैलेंज तूनमिटन वास्ते मुश्तरका कोशिशों पर दिया जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा का श्रद्धालुओं वास्ते हर तरह की सहूलियात दस्तियाब कराने को दोहराया हुआ है अज़म। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा ऐसन तरीका पर जारी, 136,000 तो ज्यादा यात्रियों ने दी गुफा में हाजिरी। हुकूमत तरक्याती मनसूबा ते बुनियादी ढांचा का प्रोजेक्टों की बरवकत तकमील वास्ते वादा पर नायब वज़ीरे आला। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया को अपना सरकारी दौरा मुकम्मल किया है। वे त्रै मुल्कों का अपना दौरा का दूजा मरहला के तहत आस्ट्रेलिया का शहर मेलबोर्न रवाना होया है। वजारत खारजा का तर्जमान रणधीर जसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हैरसगाली का जज्बा के तहत इंडोनेशिया का सदर प्रबाओ सुबिंतो ने वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डा पर अलविदा किया। तर्जमान ने कहा कि वज़ीरे आज़म का दौरा इंडोनेशिया नाल कई कलीदी शोबों में इश्तराक न फरोग देगी, भारत ते इंडोनेशिया के माबेन रिश्ते नवी बुलंदियों तोड़ी पहुंचाने में मदद लभी है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया का सदर के नाल योगा कार्ट्रा में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मुकाम प्रबानन मंदिर को दौरा किया, जित उनको रिवायती तौर के नाल इस्तकबाल किया गया। वज़ीरे आज़म ने उत्तर शिवा मंदिर में प्रार्थना के दौरान किया।
2: योग्य कार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: भारत ते इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता हुआ ऐसा चैलेंज तू बैन अवी कवानीन के तहत निपटने वास्ते मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिता है। जकार्ता में दो तरफा गलबात तू बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाल खिताब करता हुआ वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया का सदर प्रबाओ सुबिंतो ने आलमी सतह पर दहशतगर्दी करार दी गई तंजीमों ते अफराद के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ जी यात्रा पर आया श्रद्धालुओं का तहफ्फुज़ ते सहूलियात को खास ख्याल रखने इंतजामिया की अवली तरजीहात में शामिल है। वे कल शाम यात्रा को जायजा लेने वास्ते आला सतह की एक

0: महकमंगा सैक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने महकमंगा अफसरों की एक मीटिंग तलब कर गए। इस सेक्टर में मरकजी फ्लैगशिप स्कीमों की अमल आवरी को महकमों की मजमू कारगुजारी को भी जायजो लियो। सैक्रेटरी मौसुफ ने स्कीमों की अमल आवरी वास्ते दस्तियाब रकूमत को मनसुफाना इस्तेमाल करन ते मुस्तकीम तोड़ी फलाई स्कीमों का फायदा पहुंचाने की हदायत दी। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की इक्तसादी जराइम तो मुतलक विंग ने साल 2021 में दर्ज किया गया एक मामला का ताल्लुक के नाल उस वक्त का पटवारी लियाकत अली खान जिड़ा कि इस वक्त नायब तहसीलदार का उहदा पर तैनात के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कुपवारा की अदालत में फर्द जुर्म आयद कियो है। लियाकत अली खान पर कुपवारा जिला का हल्का हैहामा में रेवन्यू रिकार्ड्स में फेरबदल करने को इल्जाम है। पार्लिमानी अमूर का मरकजी वजारत का अहतमाम के नाल नवी दिल्ली में मुनकद एक तकरीब के दौरान साल 2024-25 का नेशनल यूथ पार्लियामेंट मुकाबला में इम्तियाजी पुछना हासिल करने वाली यूनिवर्सिटियों ते कॉलेजों ना इजाजत के नाल नवाजे गयो है। इस मुकाबला में कश्मीर यूनिवर्सिटी की टीम ने पहली पुछना हासिल की। यूनिवर्सिटी की टीम ना कानून ते इंसाफ का मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने यो एजाज अता कियो। पासपोर्ट खिदमात की फराहमी वास्ते बदती हुई मांग के पेश नज़र पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की तरफों 11 जुलाई बार ना एक खसूसी मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के तहत 11 जुलाई ना पासपोर्ट सेवा केंद्र श्रीनगर, पासपोर्ट सेवा केंद्र अनंतनाग ते पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र बारामूला में ये खिदमात इस मुहिम के तहत जारी रहेंगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर BS रावत ने कहा कि हवाईशमंद अपराध महकमा की वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर अपॉइंटमेंट बुक करा सकी। आखिर पर खास खास खबर एक बार फिर सुन लियो। वजीर आजम को दौरा इंडोनेशिया मुकम्मल। भारत इंडोनेशिया ने दहशतगर्दी का चैलेंज ते निपटन वास्ते मुश्तरका कोशिशों पर दिता है जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शरिया मुनर्जी यात्रा का श्रद्धालुओं वास्ते हर तरह की सहूलियात दस्तियाब कराने की दोहराया है आजम। सालाना शरिया मुनर्जी यात्रा एहसन तरीका पर जारी। 136,000 तो ज्यादा यात्रियों ने दी है पवित्र गुफा में हाजिरी। हुकूमत तरक्याती मनसूबा बुनियादी ढांचा का प्रोजेक्टों की बरवकत तकमील वास्ते वादाबंद नायब वजीर आला। इसके नाल ही खबरों को बुलेटिन मुक्यो। आकाशवाणी तो 6:25 पर कश्मीरी जबान में अगलो बुलेटिन सुन ना भूलियो। आमना दियो इजाजत। खुदा हाफिज।
1: सुनाइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज हिंदी खबरों के लिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
3: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की

0: समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये थे आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 93.8 FM 71.5 MHz पर। समय मोहतरम 6:05 सपद वन बोजन गामी बोई पनुन अजक प्रोग्राम।

من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفت

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

0: आए हुए हम दो बस में।
1: इंदौर से आया हूँ, मेरा नाम है जगमोहन यादव, मैं 2000 से आ रहा हूँ, ये मेरी 25वीं यात्रा है। धीरे धीरे देखते देखते जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अच्छा करा है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं सबको थैंक यू देता हूँ।
2: रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बाल्टा से लेके ऊपर केव तक बहुत अच्छे से, मतलब सब मैनेजमेंट प्रॉपरली काम कर रही है।
3: बिना तकलीफ के यहाँ पे यात्रा सुरी है, कोई भी यात्री को कोई तकलीफ नहीं आई, अच्छी तरह से पहुंची है।
4: यात्रा रुत पे मुनद करने बापत मुख्तलिफ महकमो तो एजेंसियन बेहतरीन इंतजाम करमित तो ये कथ यकीनी बनाने यवान जी यात्रा किन श्रद्धालुन गचन न मुश्किल वेतरिन पेन। यम खबर छू तुम आकाशवाणी श्रीनगर पे बोजान, खबर हूँ तुम आकाशवाणी हज मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR तो DTHS पे बूजित। अद दौरान वो जम के भगवती नगर बेस कैंप पे आज 9,817 श्रद्धालु पे दर्त ब्याफिल वादी कशीर कफिलस मे 6,724 मर्द तो 2,730 जनान अलाव वारिया शुर तो साधु शामिल यमन मंज करन वारिया यात्री पहलगाम वाते येल जन बाकी सोनमर्ग वाते यात्रा करित श्री अमरनाथ जी गुफा पे हाजिरी दिन। जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्ला वोन सरकार जम्मू कश्मीर मज तलीमी शोबच बुनियाद पायदार बनाने बापत डटित तम आज SKICC श्रीनगर बुनियाद से बुलंदी तक नावच एजुकेशन कनकलेव 2017 मज शिरकत करान कनकलेवस दौरान सकूल तलीमी महकम तो आला तलीम मज अमलावने यवान बेहतरी हिंद कदम तो अहम पालसी कदम तहत वतलावने आए ज यम तकन लायक काम निभा आम तम बापत आए तलब इलम हौसला अफजाई कर तो नौकरी प्रावन वाले लेक्चरन आए आर्डर तगरान। अमरीकी फौजन ईरानस पे हमल करमित यम हमल आए आबनाए हुरमुजस मज त्रेन तजारती जहाजन पे हमल कर कैंचो घंटों पत कर अमरीकूक वन जम हमल आए कमर्शल जहाजन पे हमल कर खिलाफ बदल हेन बापत कर बेकसूर शहरी सवार यल जन अत बरकस ईरानुक वन अमरीका तरफ यम हमल तय कर आमत महद सद सद खिलाफ वर्जी ईरानन पन्न सोबन हरमूजन तो बंदरगही शहर महाशहरस पे अमरीका दस कर आमत हमलो पत अमरीका कन फौजी ठिकानन पे जवाबी हमल करमित ईरानी मीडिया मुताबिक कर ईरानन अमरीका कन 500 फौजी ठिकानन पे मिजाइल तो ड्रोनों सत मुश्तरक कार्रवाई आ दौरान बहरीन दाखिल वजारत मुल्कस मज रोजन वाले वोनमुत जम रूजन सायरन बोजन पत घरन अंदर अमि ब्रह अमरीकान आबनाए हुरमुज किन पकन वाले कारबार जहाजन पे ईरान तरफ कर आमत हमलन हंदिस जवाबस मज ईरानिक शीत खोत ज्यादा ठिकान निशान बनवित। समाजी इंसाफ तो एम्पावरमेंट मरकजी वजारत वोनमुत नशा मुक्त भारत अभियान 23 करोड़ नफरन तम वोतमुत अमे अलाव सदा लश तलीमी इदार तम अभियान किस दायरस मज अन्नामित वजारत हिंद वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमारन वोनमुत नशा मुक्त भारत अभियान कौमी सुथरुक आख सु कदम यमुक मकसद नौजवान सेहतमंद बनवित तिमन मज नज़्म ज़ब्त पद करुन तिमो वोन ज नशा मुक्त भारत अभियानन नारकोटिक्स ब्यूरो रियासती सरकार पुलिस NGO तो हस्पताल तम तुतहद करमित तो यम सारी इदार मुल्क नश निश पाक कर बापत बेवाई काम कर यपर जम्मू कश्मीर मज नशा मुक्त अभियानस हवाल कसूरवार खिलाफ पुलिस तो बाकी मुतलक महकम कार्रवाई जारी। खास खास खबरन पे त्रावो बे नजर भारत तो इंडोनेशियान दहशतगर्दी हिंद सख्त मजम्मत करम तो अत सकाबल कर खतर अथवास कर बैन अवी कोशन हज जरूरत वतलवम वजीर अजम नरेंद्र मोदी कोर योगाया कारतास मज यूनेस्को अलमी वरासत जाय प्रम्बानन मंदिर दौरे تو سپد بھارت آسٹریلیا کا

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आकाशवाणी श्रीनगर, अपनी घड़ियां मिलाइए, शहरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
2: शेरबीन के सामईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौसुआत हैं, कल से जम्मू कश्मीर के बाज इलाकों में तेज बारिश का इम्कान, बड़ा इलाकों में बादल फटने और तेज आंधी चलने की भी पेशगोई। वजीर दाखला ने वजीर आलम अब्दुल्ला के साथ टेलीफोन पर की बात, हालिया दिनों बादल फटने के बायस हुए नुकसान के बारे में हासिल की जानकारी, जरूरी मदद का दिलाया यकीन। रियासती दर्जे की बहाली में मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल, मरकज फौरी तौर फैसला करे उमर अब्दुल्ला। रामबन जिले में PMAY की फेरिस्तों में बेजाब्तगियों की शिकायत, इंतजामिया ने तहकीकात का किया ऐलान। और भी मौजूदात है आज के शहरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट दिल से बना।
4: आज आई मेरी मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
5: तो क्या शक्ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
4: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
5: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार में त्रावने, विटामिन ए सानी इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी अड़जे मजबूत करान, दूध तो तेल छो बराबर मकदार में।
4: मगर यह है सठा द्रोग?
5: हाँ ना सुई कमत मज मुशक सुई सुई बेहतर पोषण दिवान।
6: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनाई सेहत मंद तो प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानो बाजरस में दस्तिया फोर्टिफाइड वसाइलन जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर टाइप।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: जय बाबा बर्फानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी आकर

0: अगस्त 26 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है। बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अनोखा अनुभव है।
1: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल सिम यहाँ प्रभावी नहीं होते, इसीलिए यात्री अधिकृत काउंटर से पहले से एक्टिवेटेड सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सफर के दौरान सिर्फ निर्धारित रूट का ही उपयोग करें और रास्ते में दिए गए सभी सिग्नल, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी शॉर्टकट या डेंजर जोन की तरफ बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है।
0: पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहें और बीच बीच में विश्राम भी करते रहें। अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या अधिक थकान महसूस हो तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप या सुरक्षा बल से सहायता लें।
1: आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और मंगलमय बनाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: शर्मिन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.1 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी को पौड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीजीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामिन, महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 9 जुलाई से बारिशों और गरज चमक के साथ तेज आंधी की पेशगोई करते हुए आइंदा 4 रोज के दौरान कई मकामात पर मूसलाधार बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। अवाम, संयम और मुसाफिरों को एहतियात बरतने और मौसमी हिदायत पर अमल करने की तलकीन की गई है। महकमा मौसमियात के श्रीनगर मरकज ने जम्मू कश्मीर में 9 जुलाई से बारिश और गरज चमक के साथ एक नए सिलसिले की पेशगोई की है, जबकि आइंदा 4 रोज के दौरान बाज मकामात पर शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमे की जानिब से जारी ताजा मौसमी पेशगोई के मुताबिक 9 और 10 जुलाई को जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और गरज चमक का इम्कान है, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। इसी तरह 11 और 12 जुलाई को भी मुतअद्दिद इलाकों में 2-1 बार बारिश और गरज चमक की पेशगोई की गई, जबकि अलग थलग मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शदीद बारिश के बायस हसास इलाकों में अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तूदे गिरने और पहाड़ी इलाकों में पत्थर गिरने के वाकयात पेश आ सकते हैं। नशीबी इलाकों में भी बारिश के दौरान पानी जमा होने का खदशा जाहिर किया गया है। इधर जम्मू खत्ते में मॉनसून का असर ज्यादा देखा जा रहा है और खत्ते के कई इलाकों में तेज बारिश और बादल फटने के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। जम्मू जिले में शिद्दत की गर्मी के बायस लोग परेशान हैं और यहाँ उमस के बायस लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब।
3: जम्मू में मॉनसून की दस्तक के साथ ही शहर में शिद्दत की गर्मी से नजात तो मिली है, उमस और दर्ज हरारत के तेज होने की वजह से लोगों को सख्त तकलीफ का सामना भी है। घर से बाहर काम कर रहे लोगों को उमस से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि कल रात मंगलवार को करीबन 11 बजे मूसलाधार बारिश शुरू हुई, उससे दर्ज हरारत जहां गिरावट दर्ज हुई वहीं लोगों को उमस से राहत मिली। तेज बारिश से कई निचले इलाकों और खासतौर पर चौराहों पर पानी भर आया। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटों तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। इस दौरान तवी रिवर फ्रंट और भगवती नगर बेस कैंप में भी जहां श्री अमरनाथ यात्रियों को गर्मी और उमस से राहत महसूस हुई, वहीं बारिश की वजह से खेमू और जगह जगह पर पानी भर आने से श्री अमरनाथ जी के जायरीन को सख्त तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। मॉनसून शुरू होते ही तेज मौसलाधार बारिश ने सबसे बड़े सवाल यहां जम्मू में नालों की सफाई सुथराई पर उठने लगे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने छोटे बड़े 100 से ज्यादा नालों की सफाई के लिए करीबन 2 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया है। बावजूद इसके राजीव नगर, पीरखो, अम्फला, रूपनगर, गांधीनगर, त्रिकुटा नगर और नानक नगर समेत कई इलाकों में नाले घरेलू कचरे और प्लास्टिक से भरे पड़े हैं। लोगों को बारिश में घरों के अंदर पानी भरने का डर भी सता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई नालों की बरसों से सफाई नहीं हुई, कुछ एक जगह पर सफाई शुरू भी हुई लेकिन अधूरी छोड़ दी गई और नालों पर नाजायज कब्जों की वजह से अंदर तक पहुंच पाना मुश्किल और नामुमकिन बन गया है। वहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि 15 अप्रैल से सफाई मिशन और नालों के किनारे फेंसिंग का काम लगातार जारी है और नालों से कचरा निकाला जा रहा है और काम तेजी से कराया भी जा रहा है। इसके बावजूद जमीनी तस्वीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दावों की पोल खोल रहा है। इसी दौरान कई इलाकों में लोगों ने घरों के आगे 3 से 4 फुट तक के थड़े बनाए हैं। याद रहे कि जम्मू के कई इलाकों में हर साल बारिश का पानी घरों के अंदर घुस जाता है, इसलिए लोगों ने ये परेशानी से बचने के लिए पहले ही इंतजाम कर दिया है।
2: یہ تھے جموں سے جاوید مہرا. اس دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج جموں کشمیر کے وزیر اعلی انو عبداللہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے حالیہ شدید بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا.

0: उन अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार पर जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा मजीद ताखीर के बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि अब इस मामले को मजीद मौखर करने की कोई गुंजाइश नहीं है और पूरे खत्ते की सिविल सोसाइटी इस मुतालबे पर यकसमा है। श्रीनगर में नामनिगारों से गुफ्तगु करते हुए वजीर आला ने बताया कि मजहबी रहनुमाओं, ताजरों, रिटायर्ड सरकारी अफसरान, माहिर तालीम, ट्रांसपोर्ट शोबे के नुमाइंदों और दीगर तबकात समेत तकरीबन 170 अफराद पर मुश्तमिल एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें रियासती दर्जे की फौरी बहाली के हक में मुत्तफिका करारदाद मंजूर की गई। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर रियासती दर्जे की बहाली के हक में मुजावजा एहतजाजी मुजाहरे को भी सिविल सोसाइटी की भरपूर हिमायत हासिल है। वजीर आला के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी जमातों का वो इस वक्त असम्बली में मौजूद हों या माजी में नुमाइंदगी रखती रही हों को एहतजाज में शिरकत की दावत दी गई है। उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुल्क की दीगर सियासी जमातों और इंडिया इत्तेहाद के कायदीन को भी इस हवाले से खतूत इरसाल करेंगे। सरकारी तकरीरों से मुतल्लिक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डॉक्टरों, असाजा और लेक्चरर्स की असामी को पुर करने में अब पहले के मुकाबले में ज्यादा वक्त लग रहा है क्योंकि मरकजी एजेंसियों की जांच पड़ताल का अमल तवील हो गया है। उन्होंने कहा कि तकरीरी के अहकाम जारी किए जा चुके हैं और जल्द ही इन पर अमल दरामद होगा। एक सवाल के जवाब में जिसमें एक उस्ताद के सहारे चलने वाले 1544 स्कूलों की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, वजीर आला ने कहा कि ये पुरानी यूडाइस रिपोर्ट है और मौजूदा सूरतहाल की अक्कासी नहीं करती। आबी महदा सिंध की मुअत्तली से मुतल्लिक सवाल पर वजीर आला ने कहा कि उनकी जमात पहले भी इस मुहदे की मुखालिफ रही है, तहम उन्होंने इस पर मजीद तबसरा करने से इनकार किया। अमरनाथ यात्रा के हवाले से उन्होंने कहा कि योमिया यात्रियों की तादाद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करना श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए लाजमी है। गार में बर्फानी शिवलिंग के जल्द पिघलने से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि कुदरती मामला है और इसका फैसला इंसान के इख्तियार में नहीं। शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट सोहरा में अमले की कमी से मुतल्लिक पूछे गए सवाल पर वजीर आला ने कहा कि इस बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बेहतर जवाब दे सकते हैं क्योंकि इस इदारे की इंतजामी फाइलें उनके दायरे इख्तियार में ही हैं। शेरबीन अफसरी नगर से सुन रहे हैं। सामिन, मुल्क भर में माली तौर कमजोर और बेघर अफराद को अपना घर तामीर कराने में माली मुआवनत करने के मकसद से पीएम आवास योजना गुज़श्ता कई बरस से रूबामल है। जम्मू कश्मीर में भी इस स्कीम से हजारों अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। अलबत्ता स्कीम की अमल आवरी के बारे में जगह जगह से शिकायत मौसूल हो रही है क्योंकि जाब्तों की खिलाफवर्जी, कहीं उकरबा परवरी, कहीं सियासी मुदाखलत तो कहीं अहलकारों की तरफ से मुस्तफीद हो रहे अफराद से रिश्वत तलब करने की शिकायतें सामने आ रही हैं। रामबन जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्कीम की शफाफ अमलावरी के बारे में इन दिनों शिकायत काफी गश्त कर रही है और यही वजह है कि हुकाम को अब तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील देना पड़ी है। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट।
1: जिला रामबन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मुफ्त मकानात हासिल करने के मुस्तहिक अफराद के इंतखाबात में मुबैना बेजाब्तगियों, कवायद की खिलाफ वर्जी और बद अनवानी के इल्जाम ने एक बड़ी अवामी तनाजे की शक्ल इख्तियार कर ली है और पिछले कई रोज के दौरान जिला रामबन के बानहाल और खड़ी के ब्लाकों में न सिर्फ महकमा दही तरक्यात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हुए बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी और पीडीपी जैसी सियासी जमातों के अलावा पंचायती नुमाइंदे और आम लाइन फेहरिस्त से बाहर किए गए कुंभे इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और जिला इंतजामिया को भी बानहाल ब्लॉक में हुई मुबैना बेजाब्तगी के मामले की बाजाब्ता तहकीकात का ऐलान करना पड़ा है। महकमा देही तरक्यात के कुछ मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर इस स्कीम की शफाफियत पर भी संगीन खदशात पैदा कर दिए हैं। बानहाल और खरी से ताल्लुक रखने वाले मुफ्त मकान के मुस्तहिक अफराद और मुकामी नुमाइंदों का कहना है कि दर्जनों मुस्तहिक कुंभों को तमाम कागजी लवाजमात के बावजूद सर्वे और ड्राफ्ट वेटिंग लिस्ट से खारिज कर दिया गया है, जबकि बाद ऐसे अफराद के नाम शामिल किए गए हैं जो मुबैना तौर पर इस स्कीम के अहल नहीं थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बेशतर देहात में मुनक्किद की जाने वाली ग्राम सभाएं आम लोगों की शमूलियत के बगैर मुनक्किद की जाती हैं और मन मर्जी से पंचायतों के प्लान मरतब किए जाते हैं। मुतासर लोगों का कहना है कि पीएमएवाई ग्रामीण के तहत मुस्तहिक कुंभों की मालूमात ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड ही नहीं की गई है, जिसके नतीजे में सैकड़ों गरीब कुंभे स्कीम के दायरे से बाहर रह गए हैं। کئی افراد نے محکمہ دہی ترقیات کے متعلقہ ملازمین پر رشوت طلب کرنے اور جانبداری برتنے جیسے سنگین الزامات بھی عائد

0: ये हैं और मुफ्त मकान के मुंतजिर गरीब कुंबे मुलाजमीन की मुबैना बंदर बांट की वजह से बेचैनी और ना उम्मीदी का शिकार हो गए हैं। ब्लाक खड़ी में भी PMAY ग्रामीण में हुई मुबैना बेजाबतगी को लेकर शदीद रद्द अमल सामने आया है और गुज़श्ता रोज लोगों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज करते हुए महकमा दही तरक्यात के खिलाफ नारे बुलंद किए। एहजाजी मुजाहिरीन का इल्जाम है कि पंचायत सेक्रेटरियों और GRS एहलकारों ने मुस्तहिक घरों का सर्वे तो किया है लेकिन उनकी तफसीलात ऑनलाइन दर्ज नहीं की गई हैं और खड़ी अपर ए जैसी बड़ी पंचायत में सिर्फ 136 अफराद को सर्वे में शामिल किया गया है जो मुकामी आबादी के तनासुब से इंतहाई कम तादाद है। बानहाल और खड़ी के ब्लॉकों में अवामी दबाव और बढ़ती हुई शिकायत के बाद ACD रामबन शेराज अहमद चौहान ने गुज़श्ता दिनों बानहाल ब्लॉक में PMAY ग्रामीण की सर्वे और मुस्तहकीन की फेरिस्तों की जाँच के लिए 3 रुकनी कमेटी तशकील दी है और इस कमेटी में BDO बानहाल, BDO खड़ी और असिस्टेंट इंजीनियर REW बानहाल को शामिल किया गया है और कमेटी को 5 रोज के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करने की हिदायत दी गई है। इस दौरान ब्लॉक बानहाल में आवाज प्लस के तहत तैयार करदा फिरिस्तों की अक्सर नो तहकीक का अमल भी शुरू किया गया है और अक्सर नो तहकीक और तस्दीक के इस अमल को चंद रोज में मुकम्मल होने की उम्मीद है। इस सिलसिले में बात करने पर ACD रामन शेराज अहमद चौहान ने शहरबिन को बताया कि बानहाल ब्लॉक में शिकायत आने के बाद इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी जगह पर PMAY ग्रामीण में बेजाबतगी हुई है तो और भी जगहों पर ऐसा होने के इम्कान हैं और इन तमाम मामलों की तहकीकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल बानहाल ब्लॉक में बड़े पैमाने की शिकायत मौसूल हुई है और वहां तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के मुलविस पानी की सूरत में कार्रवाई के लिए कानून मौजूद है और जाब्ते के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
1: ये थे बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट दिल से बना।
3: जय बाबा बसवानी के पवित्र जयकारों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर प्रशासन हार्दिक स्वागत करता है।
4: सफर सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई में श्रद्धा, संयम और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव है।
3: यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। यात्रा पर निकलते समय अपना RFID कार्ड अवश्य साथ रखें क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन अनुमति संभव नहीं है। सफर के दौरान भीड़ से अलग ना हो और अधिकृत रूट का ही उपयोग करें। मौसम को देखते हुए गर्म और आरामदायक कपड़े पहनें। पर्यावरण की बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए कचरा इधर उधर ना फेंकें, अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।
4: जम्मू कश्मीर सरकार आपकी हर कदम पर सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
5: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले की इतला देते हैं। ख्वाहिशमंद तुलबा जो CUET UG 2026 में शामिल हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने तालीमी साल 2026-27 से 4 साल इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। दाखिले और मजीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर राबिता कायम करें।
1: शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामिन, बारामुल्ला जिला तरक्याती कौंसिल की साबिक चेयरपर्सन सफीना बेग ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्कद एक तकरीब के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वजीर आला उमर अब्दुल और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में सफीना बेग को पार्टी में शामिल किया गया। इस मौके पर वजीर बराए दी तरक्की जावेद अहमद डार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद सागर और चौधरी मोहम्मद रमजान भी मौजूद रहे। पार्टी क्यादत ने सफीना बेग का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनका सियासी तजुर्बा और अवामी रबता नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजीद मुस्तकम बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। बिलखसूस बारामुला जिले में तंजीमी ढांचे को तकवीत मिलेगी। वाजरे की सफीना बेग साबिक नायब वजीरे आला और PDP के बानी रहनुमाओं में शामिल मुजफ्फर हुसैन बेग के अलिया हैं। वो माजी में बारामुला जिला तरक्याती कौंसिल की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। समीन इलाका देवर लोलाव के बाशिंदों की शिकायत है कि इलाके को तामीर और तरक्की में नजरअंदाज किया जा रहा है। مقام سے دردپورہ کی 2 کلومیٹر لمبی سڑک انتہائی تنگ ہے اور بیشتر مقامات پر اس کی چوڑائی صرف 8 فٹ ہے اور آج کے

0: इस दौर में इस सड़क को वसत देने की अशद जरूरत है, मगर इस समय खामोशी इख्तियार की जा रही है, जबकि तंग सड़क से गुजरना आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। इसी तरह बटमोला से मीर मोहल्ला तक जाने वाली सड़क नीम पुख्ता हालत में है और आज तक इसकी मरम्मतों मैक्रमाइजेशन नहीं की गई। मकामी लोगों के मुताबिक मामला MLA लोलाब और जिला इंतजामिया की नोट्स में बार बार लाया गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मकामी लोगों ने फिर एक बार अपील की है कि इन सड़कों की तरफ फौरी तौर तवज्जो दी जाए। समय पसमानदा इलाका कोतवाड़ा के कई वफूद ने आज रुकने पार्लियामान सजाद अहमद किचलू के साथ मुलाकात की और उनके साथ कई अहम मसाइल उठाए, जिनमें स्कूलों में तदरीसी अमले की कमी, तिब्बी सहूलियात का फुकदान और दीगर मामला शामिल हैं। सजाद किचलू ने वक्त को यकीन दिलाया कि वो ये मामला मुतल्लिका वज़रा के साथ साथ वज़ीर आला के साथ उठाएंगे। अब एक और मौसूम। सभी अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है और आज अब तक का सबसे बड़ा यात्री जत्था जम्मू के भगवती नगर से कश्मीर की तरफ रवाना हुआ और ये जत्था अपने अपने मकाम पर पहुंच चुका है। इसमें मजमू तौर पर 9837 यात्री शामिल थे, जिन्हें 361 गाड़ियों के काफिले के जरिए श्रीनगर पहुंचाया गया। काबिल जिक्र है कि 57 रोजा श्री अमरनाथ यात्रा का आगाज 3 जुलाई को हुआ था और ये 28 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। काम के मुताबिक यात्रियों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और इंतजामिया यात्रा को अहसन तरीके पर अंजाम दिलाने में तमाम जरूरी इकदाम कर रही है। एक रिपोर्ट रही मेजबान से।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज छठे रोज दोनों रास्तों यानी बालतल और नूनवन पहलगाम से बड़ी खुश असलूबी से जारी है। खुशगवार मौसम के बीच आज सुबह 10 बजे तक 14,938 यात्रियों को गुफा जाने की इजाजत दी गई, जिनमें 11,967 मर्द, 2,409 खवातीन, 259 लड़के और लड़कियां, 66 साधु, 33 साधियां, 9 ख्वाजा सिरा और 185 हिफाजती अहलकार थे। इस दौरान ये रिपोर्ट फाइल करने तक आज 8,515 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके बहिफाजत बालतल बेस कैंप पहुंचे। बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले श्रद्धालु में 7,240 मर्द, 1,030 खवातीन, 120 लड़के और लड़कियां, 49 साधु, 3 साधियां और 93 हिफाजती अहलकार शामिल थे। यात्रियों को जहां सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच दर्शन करने के लिए गुफा पहुंचाया जाता है और बहिफाजत वापस अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना किया जाता है, वहीं जिला और सूबाई इंतजामिया ने यात्रियों के लिए यात्रा रूट के हर पड़ाव पर खत का इंतजाम किए हैं, जिसमें खाने पीने की सहूलियत, बैतुल खुला नहाने के लिए गर्म पानी, पीने का साफ पानी, बिजली और रिहाइश के लिए बेहतरीन सहूलियात मैसर रखी गई है। इधर सोनमर्ग से बालतल के आगे गुफा तक आज त्यौहार जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, जहां हर तबके के लोग यात्रियों को यात्रा करवाने में काम आते हैं, जिससे भाईचारे, उख़वत, मेहमान नवाजी और इंसानियत की एक नई मिसाल कायम होती है। गरी असना नूनवन बेस कैंप से हमारे साथी एस तारिक के मुताबिक पहलगाम रूट से भी अमरनाथ यात्रा जोश व जज्बे के साथ जारी है और नूनवन बेस कैंप से तकरीबन 10,000 यात्री जो नूनवन बेस कैंप और आसपास के होटलों में रात भर कायम पजीर थे, सुबह 4 बजे चंदनवाड़ी की तरफ रवाना हुए, जहां उन्होंने RFID कार्ड हासिल किए और वो पंचतेरी और शीशनाग की तरफ निकल पड़े। यहां रात भर कायम करने के बाद उन्हें कल सवेरे दर्शन के लिए गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी जाएगी। इस तरह सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक आज तक 6 दिनों के दौरान तकरीबन 1.5 लाख यात्रियों ने गुफा जाकर पूजा पाठ में शिरकत करके मुल्क की अमन सलामती के लिए दुआएं मांगी। इधर ट्रांजिट का मनगाम के यात्रा नोडल अफसर जो ACR गांधरबल भी है, डॉक्टर शेख सलाहुद्दीन ने यात्रा के दौरान ड्यूटी अंजाम देने में लहतुलहत से काम लेने वाले 4 असातिजा को मुअत्तल करने के अहकाम सादिर किए और मुलाजमीन से कहा गया कि वो अपने फराइज तनदी और लगन के साथ अंजाम दें।
0: आपने रहीम रिजवान की रिपोर्ट सुनी। सामिन, राजौरी के सब डिवीजन कॉन्ट्रैक्ट का कम्युनिटी सेंटर कंडी की हालत अबतर बताई जाती है और इससे महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवाल उठ चुका है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि गुज़श्ता 1 साल से अस्पताल में नस्ब अल्ट्रासाउंड मशीन रेडियोलॉजिस्ट न होने की वजह से बेकार पड़ी है और इसके बायस मरीज, बिलखसूस हमला खवातीन को सख्त परेशानी का सामना रहता है। मकामी लोगों के मुताबिक एक तरफ दी इलाकों में बेहतर तबी सहूलियात फराहम करने के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे तबी मराकज पर बुनियादी सहूलियात की कमी है। सभी जिला किश्तवाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी दरों और सिलसिलों के दरमियान आबाद है और इन दूर और दुश्वार दराज इलाकों में आज के जदीद दौर में भी सहूलियात का फुकदान है। यहां पुख्ता सड़कों के साथ साथ मुख्तलिफ देहात को जोड़ने के लिए पुख्ता पुलों की कमी है और लोग काम चलाओ पुल अपनी मदद आप जज्बे के तहत

0: सहरसा कठुआ के तरफ, उस सिलसिले में गृह मंत्री साहब ने फोन किया था हालात के बारे में पूछने के लिए, और मैंने अपनी सारी जानकारी उनको दी। आगे अगर कहीं पे हमें मरकज की मदद की जरूरत होगी, मदद करने के लिए तैयार है।
1: वाजह रहे कि मूसलाधार बारिशों के नतीजे में जम्मू के बाज हिस्सों में मामूल की जिंदगी मुतासर हुई थी और अवामी सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका हुकाम मसरूफ अमल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा महज एक यात्रा नहीं बल्कि एक रूहानी रियाज भी है। कौमी रोजनामा दैनिक जागरण के आज के शुमारे में शाया अपने एक मजमून में उन्होंने कहा है कि ये यात्रा हिंदुस्तान के रूहानी शऊर, सकाफती विरसे और इंसानी अकदार की जिंदा अलामत है। एलजी ने यह मजमून सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अमरनाथ जी यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के तहफ्फुज और सहूलियात का खास ख्याल रखना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वो यात्रा का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत कर रहे थे। मनोज सिन्हा ने अफसरों को हिदायत दी कि यात्रा पर रवाना होने से पहले हर यात्री की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वो मकामी मेहमान नवाजी और जम्मू कश्मीर के रिवायती फनून व दस्तकारी की खूबियों का तजुर्बा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोक भवन में यात्रा से मुतल्लिक कायम कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। इस दौरान सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और अब तक 1,30,000 से जायद यात्रियों ने गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। आज दोपहर 2 बजे तक 18,764 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। बेशतर यात्री गुफा में हाजिरी देने के बाद वापस अपने घरों को लौट गए हैं। यात्री वादी की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की मेहमान नवाजी से भी काफी मुतमईन हैं।
2: मेरा नाम मोनू कुमार शर्मा है, मैं यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आया हूँ। बाबा का आशीर्वाद बना रहे तो हमारा देश भी सही रहे, सुरक्षित रहे।
3: मुरादाबाद से आया हुआ हूँ, अब टूरिस्ट गाइड को पूरी बस को लेकर आया हुआ हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे अपनी कम से 90 जने आए हुए हैं, हम 2 बस में।
4: इंदौर से आया हूँ, मेरा नाम है जगमोहन यादव, मैं 2000 से आ रहा हूँ, ये मेरी 25वीं यात्रा है। धीरे धीरे देखते देखते जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अच्छा करा है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं सबको थैंक यू देता हूँ।
5: रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बाल्टा से लेके ऊपर केव तक बहुत अच्छे से, मतलब सब मैनेजमेंट प्रॉपरली काम कर रही है।
6: बिना तकलीफ के यहाँ पे यात्रा सुरी है, कोई भी यात्री को कोई तकलीफ नहीं आई, अच्छी तरह से पहुंची है।
1: यात्रा के आसान इनेकाद के लिए मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों ने हर तरह के इंतजाम किए हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दरियासना जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 9,837 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल एक और काफिला वादी पहुंच गया। काफिले में 6,684 मर्द और 2,730 खवातीन के अलावा कई बच्चे और साधु भी शामिल हैं। इनमें से कई यात्री पहलगाम जबकि कुछ दीगर सोनमर्ग के रास्ते यात्रा करके श्री अमरनाथ जी गुफा में हाजिरी देंगे। समाजी इंसाफ व एम्पावरमेंट की मरकजी वजारत ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान 23 करोड़ अफराद तक पहुंच गया है। इसके अलावा 17 लाख तालीमी इदारों को भी इस अभियान के दायरे में लाया गया है। मुतल्लिका वजारत के वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान कौमी सतह की एक पहल है जिसका मकसद नौजवानों को सेहतमंद बनाना और उनमें नज्म जब्त पैदा करना है। उन्होंने कहा कि NMBA ने नारकोटिक्स ब्यूरो, रियासती हुकूमतों, पुलिस, NGOs और अस्पतालों को मुत्तहिद कर दिया और ये सारे इदारे मुल्क को मुनशियात से पाक करने के लिए नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में भी नशा मुक्त अभियान के ताल्लुक से कसूरवारों के खिलाफ पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों की कार्रवाइयां जारी हैं। इस ताल्लुक से पेश है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये पैगाम।
7: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी।
1: वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में तालीमी शोबे की बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वो आज SKICC श्रीनगर में बुनियाद से बुलंदी तक नामी एजुकेशन कन्क्लेव 2026 में शिरकत कर रहे थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा,
0: हमारी लगातार कोशिश है कि जहाँ पे गैप्स हैं, गैप्स को फिल किया जाए, खासकर जमीनी सतह पे, कटिंग एज लेवल, बीच बीच में ये पोस्ट जो है फिलअप के लिए रेफर किया है। आजकल

0: प्रदेश बीजेपी सदर और राज्यसभा के मेंबर सत शर्मा ने कहा है कि बीजेपी पनाहगुजीनों के इज्जत विकार और हकूक के लिए हमेशा खड़ी रहती है। वो जम्मू में उनसे मिलने आए देवा बटाला से ताल्लुक रखने वाले पनाहगुजीनों के एक वफद से बात कर रहे थे, जिन्होंने जमीन के हकूक और मुआवजे का मुतालबा उनके सामने रखा। इसी दौरान सत शर्मा ने बीजेपी की तंजीमी उमूर का जायजा लेते हुए कहा कि यकजहती हासिल करने के बाद अब कौम परस्ती का जज्बा जम्मू कश्मीर के हर घर तक पहुंचना चाहिए। दरियासना प्रदेश बीजेपी के तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने आज पार्टी ऑफिस श्रीनगर में मुनक्कदा एक प्रोग्राम के दौरान बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले मरहूम बशीर अहमद शेख, वसीम बारी और उमर सुल्तान को खराज अकीदत अदा किया। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलोए आफ्ताब सुबह 5:27 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:45 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समीना पेश खदमत है तबसरा।
2: समीना आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं शबीर उज़्ज़मा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। उनका दौरा 6 जुलाई से शुरू हुआ और पहले मरहले यानी आज तक वो इंडोनेशिया के सरकारी दौरे पर रहे, जहां से वो आज ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। 8 जुलाई से 10 जुलाई तक वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। आज वो प्रभानंद मंदिर कॉम्प्लेक्स गए, जहां उन्होंने इस बहुत ही वसी मंदिर की तस्वीर अपने एक्स हैंडल से आवाम से साझा की। उनके साथ इंडोनेशिया के सदर प्रभोवो सुबियांतो भी थे। सदर प्रभोवो सुबियांतो की दावत पर ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से आज तक इंडोनेशिया के सरकारी दौरे पर रहे। ये दौरा जनवरी 2025 में हमारे मुल्क की यौमी जमहूरिया की तकरीबात में सदर इंडोनेशिया के बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत पर हुआ और भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत व मरबूत करने में एक अहम कदम है। इंडोनेशिया के दारुल खिलाफा जकार्ता में वजीर आजम का रस्मी इस्तकबाल हुआ और बाद अज़ां सदर प्रभोवो के साथ वसी दुतरफा बातचीत हुई। वजीर मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया और इस तरह वो भारत के पहले वजीर अजम बन गए जिन्हें इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने का शर्फ हासिल हुआ। वजीर अजम को इंडोनेशिया के सबसे ऊंचे सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया। साथ ही वजीर अजम ने वहां मुकीम हिंदुस्तानी बाशिंदों से भी मुलाकात की। इंडोनेशिया के सदर और वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने सियासी ताउन, दिफा, समुद्री सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल इकोनॉमिक, साइंस और टेक्नोलॉजी, खलाई तवानाई, सेहत, ज़राअत, तालीम, सकाफत, सियाहत और इलाकाई उमूर समेत दुतरफा ताल्लुकात के तमाम शोबों का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को और मजबूत बनाने के लिए अपने मुश्तरक अज़्म का इआदा किया और बड़े बैन अल-अक़वामी चोटी के इजलासों के दौरान बाहमी सरबराही सतह के इजलास मुनक़द करने पर इत्तेफाक किया। दोनों फरीकैन ने मौजूदा इदाराजाती मैकेनिज्म को मजबूत बनाने का भी फैसला किया, जैसा कि ज्वाइंट कमीशन इजलास, दफ्तरी खारजा की मशावरत और मुख्तलिफ वजारती मुज़ाकरात वगैरह। ये भी फैसला किया गया कि पार्लियामानी दोस्ती ग्रुप्स के कयाम और कानून साजों के दरमियान तबादलों में इजाफे के जरिए पार्लियामानी ताउन को वसत दी जाएगी। दोनों ममालिक के थिंक टैंक, यूनिवर्सिटियां और पॉलिसी इदारे भी एक दूसरे के साथ ताउन को और गहरा करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने दिफा और समुद्री ताउन को मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। उन्होंने 2025 में मुनक्कद होने वाले वज़राई दिफा के कामयाब मुज़ाकरात का खैर मकदम किया और मुश्तरक फौजी मशकों, दिफाई मकाल में अहलकारों के तबादले, अमन कायम करने, हाइड्रोग्राफी, समुद्री डोमेन के बारे में आगाही, साहिली निगरानी, इंसानी इमदाद, आफात से मुतलिक निपटारा और तिजारत, तलाश और बचाव कार्रवाइयां और दिफाई सनअती ताउन के जरिए रिश्तों को और मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, हवा से फजा में मार करने वाले मिसाइल, जहाज साजी, दिफाई तैयारी, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, देखभाल और मरम्मत की सहूलियात, तहकीक और तरक्की और दिफाई सप्लाई चेन से मुतलिक ताउन में पेशरफ्त को भी सराहा। दोनों ममालिक ने वाजह तौर पर दहशतगर्दी की तमाम तंजीमों की मजम्मत की और दहशतगर्दी की माली मुआवनत और इंतहा पसंद तंजीमों बशमूल अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तरफ से नामजद करदा तंजीमों के खिलाफ फैसला कुन आलमी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का इआदा किया और तशद्दुद, इंतहा पसंदी, ऑनलाइन दहशतगर्दों की तरफ से टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और मुनज़्ज़म जराइम से निपटने में मजबूत ताउन का वादा किया। दोनों ममालिक ने खुफिया मालूमात को साझा करने, साइबर सिक्योरिटी में ताउन, डिजिटल फॉरेंसिक अहम बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज़ और इंसदादी दहशतगर्दी से मुतलिक

0: एकतरफा मफाहमत पर भी तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक ने विकसित भारत 2047 और इंडोनेशिया इमास 2045 के एजेंडे के लिए तकनीकी शोबाजात को भी उजागर किया। दोनों ममालिक ने मैदनी टेक्नोलॉजी, स्टील की सप्लाई चेन और अहम मैदनियात के शोबों में कई मुहिदों पर दस्तखत किए। इंडोनेशिया के कामयाब दौरे के बाद वजीर अजम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आज से 10 जुलाई तक रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से कबल वजीर अजम ने अपने बयान में कहा कि उनका ये दौरा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की जामे स्ट्रेटजिक शराकत दारी को और मजबूत करेगा और वो वजीर अजम अल्बानी के साथ अपनी बातचीत में दिफा और सलामती, तिजारत और सरमायाकारी, तालीम और नकलो हरकत और आवाम के दरमियान ताल्लुकात के शोबों में अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। वजीर अजम के तौर पर मोदी का ऑस्ट्रेलिया का ये तीसरा दौरा है। वो ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। मार्वेल स्टेडियम में जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों की एक बड़ी तादाद से मुलाकात करेंगे। वजीर अजम कारोबारी रहनुमाओं से भी खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर के आवाम और खासकर कारोबारी लोग भी इस दौरे पर करीबी नजर रखे हुए हैं। उनको उम्मीद है कि वजीर अजम के साथ गए हुए डेलीगेशन के अराकीन जम्मू कश्मीर की सियाहत, दस्तकारी के साथ साथ GI टैग वाली अशिया जैसी जाफरान वगैरह में मौजूद अच्छी खासी वसत को उजागर करेंगे। इस तरह से इन ममालिक में जा रही जम्मू कश्मीर की अशिया की आमदात में और इजाफा होगा। यहाँ पर ये बात कहनी बहुत जरूरी है कि हमारे वजीर अजम ने बहुत बार जम्मू कश्मीर में बनी हुई अशिया बतौर तहाइफ आलमी लीडरान को पेश की। उम्मीद है कि ये दौरा अजहद कामयाब होकर मुल्क के लिए और यहाँ पैदा होने वाली अशिया के लिए बाजार की मजीद रसाई हासिल करने में कामयाब होगा। तबसरा खत्म हुआ। शब बखैर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

वादी की आवाज़ आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। समय दहशतगर्दी गुज़श्ता कई दिहाइयों से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज रही है। इस खतरे ने बेशुमार मासूम जाने ली हैं, माशी तरक्की को मुतासिर किया और अमन इस्तेकाम के लिए मुसलसल खतरात पैदा किए। ऐसे हालात में हर मुल्क की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों के जानोमाल की तहफ़ के लिए कानूनी, इंतज़ामी और सफारती सतह पर मौसर इकदाम करें। इसी सिलसिले में भारत की वजारत दाखिला ने गैरकानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून यानी UAPA के तहत मजीद 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। सरकारी मालूमात के मुताबिक इनमें 17 पाकिस्तानी शहरी शामिल है जो इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से सरगर्म बताए गए हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक इस फैसले का बुनियादी मकसद दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्क को कमजोर करना, उनकी माली मावनत रोकना, नकलो हरकत महदूद करना, नई भर्तियों की सलाहियत को मुतासिर करना और दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मजीद मौसर बनाना है। हुकूमत का कहना है कि इस इकदाम के बाद 2019 में UAPA में तरमीम के बाद दहशतगर्द करार दिए गए अफराद की मजमूई तादाद 80 हो गई है। समय UAPA या गैरकानूनी सरगर्मियों की रोकथाम का कानून भारत के इंसदादी दहशतगर्दी के कानूनी ढांचे का एक अहम हिस्सा है। 2019 की तरमीम के बाद हुकूमत को ये इख्तियार मिला कि वो सिर्फ तंजीमों ही नहीं बल्कि मखसूस अफराद को भी दहशतगर्द करार दे सकती है अगर उनके खिलाफ दस्तियाब शवाहिद कानून में मुकर्रा मयार पर पूरा उतरते हों। हुकूमत का मौकिफ है कि इससे दहशतगर्दी के नेटवर्क के मरकजी किरदारों के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई मुमकिन हुई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर कहा है कि हुकूमत दहशतगर्दी के हर नेटवर्क को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। उनके मुताबिक नामजद किए गए अफराद दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी, असले की स्मगलिंग, सरहद पार दरअंदाजी, दहशतगर्द तंजीमों की मावनत, माली वसाइल की फरहमी और नई भर्तियों जैसे मामलों में मुलविस रहे हैं। सरकारी मालूमात के मुताबिक इन अफराद में से मुतद्दिद का ताल्लुक कालादम करार दी गई तंजीमों से बताया गया है। ये अफराद सरहद पार दहशतगर्दी, नौजवानों की इंतहा पसंदाना भर्ती, असले और धमाका खेजी मवाद की तरसील, ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने और दहशतगर्दी के लिए माली वसाइल इकट्ठा करने में किरदार अदा करते रहे हैं। सामिन हालिया बरसों में दहशतगर्दी के तरीके कार में भी नुमाया तब्दीली आई है। रिवायती दरअंदाजी के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन, खुफिया मवासलाती जराए, ऑनलाइन प्रोपागंडा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। इसीलिए इंसदादी दहशतगर्दी की हिकमत अमली भी मुसलसल तब्दील हो रही है, जिसमें तकनीकी निगरानी, मालियाती लेन देन पर नज़र, इंटेलिजेंस के बेहतर तबादले और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान हम आहंगी को अहमियत दी जा रही है। सामने दहशतगर्दी के खिलाफ हालिया इकदाम को समझने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी ज़रूरी है, जिसने हालिया अरसे में कौमी सलामती के हवाले से नुमाया तवज्जा हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर भारत की जानिब से उन दहशतगर्द ढांचों के खिलाफ एक फौजी कार्रवाई थी जिन्हें हुकूमत ने सरहद पार मौजूद दहशतगर्दी के

वादी की आवाज़ आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से, और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। बैनुल अक्वामी मालियाती इदारों, तरक्याती बैंकों और तहकीकी रिपोर्ट्स बशमूल बैनुल अक्वामी मालियाती फंड IMF, एशियाई तरक्याती बैंक ADB और BTI कंट्री रिपोर्ट 2026 की रोशनी में पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजरता हुआ देखा जा रहा है जहाँ इसकी मईशियत, सियासत और रियासती ढांचे तीनों सतहों पर शदीद दबाव मौजूद है। माशी पहलू से आगाज करें तो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बैरूनी अदायगियों और मालियाती तवाजुन का है। बैनुल अक्वामी मालियाती फंड की मुख्तलिफ हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की मईशियत बार बार बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के दबाव का शिकार हो रही है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को बार बार IMF प्रोग्राम्स का सहारा लेना पड़ता है। इस सूरत हाल में कर्जों की अदायगी, दरामदात की फाइनेंसिंग और ज़र मुबादला के जखायर का इस्तेकाम मुसलसल दबाव में रहता है। बैरूनी कर्जा, जिसका तखमीना मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक $100 अरब से जायद बताया जाता है, कौमी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्जों की वापसी में इस्तेमाल होने पर मजबूर कर देता है। इसके नतीजे में तरक्याती अखराजात, तालीम और सेहत जैसे शोबे अक्सर महदूद माली गुंजाइश में काम करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की मईशियत में अगरचि वक्ती तौर पर नमो के अशारे मौजूद है, लेकिन ये नमो गैर मुस्तकिल और बैरूनी झटकों के लिए हसास है। महंगाई, रुपए की कदर में कमी और तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे जैसे मसाइल आम शहरी की जिंदगी पर बराह रास्त असर डालते हैं। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा सनअती पैदावार और घरेलू अखराजात दोनों को मुतासर करता है, जिससे माशी दबाव मजीद बढ़ता है। सियासी सतह पर पाकिस्तान एक पेचीदा और गैर मुस्तकिम मंजरनामे से गुजर रहा है। मुख्तलिफ तजियाकारों के मुताबिक मुल्क में सियासी पोलराइजेशन एक अहम मसला बन चुकी है, जिसमें विफाकी हुकूमत, अपोजिशन जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एतमाद का फुकदान नुमाया है। BTI 2026 कंट्री रिपोर्ट इस बात की निशानदेही करती है कि हुक्मरानी के निज़ाम में इदारा जाती कमजोरियाँ और सियासी अदम इस्तेकाम तरक्याती अमल की रफ्तार को सुस्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान वसाइल की तकसीम और इख्तियारात के मसाइल भी इंतजामी पेचीदगियों को बढ़ाते हैं। बाज़ मुफस्सरीन के मुताबिक स्टेट की इक्तसादी पॉलिसी में मुख्तलिफ ताकतवर इदारों के किरदार ने भी पॉलिसी के तसलसल और शफाफियत पर सवालात पैदा किए हैं। सिक्योरिटी के मैदान में पाकिस्तान को कई दाखिली चैलेंजेस का सामना है, खास तौर पर सरहदी इलाकों और बाज़ सूबों में शिद्दत पसंद ग्रोहों की मौजूदगी और हमलों ने रियासती सलामती के इदारों के लिए पेचीदियाँ पैदा की हैं। तहरीकी तालिबान पाकिस्तान के हमलों की शिद्दत में वक्फे से इजाफा देखा गया है, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी ऑपरेशंस और इंसदादी दहशतगर्दी की हिकमत अमलियों पर दोबारा गौर किया जा रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान जैसे खित्तों में तवील अरसे से जारी सियासी और माशी महरूमियों के मसाइल भी रियासती पॉलिसी के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज है। इन इलाकों में तरक्याती मंसूबों, खासतौर पर चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी CPAC जैसे बड़े मंसूबों के तनाजुर में सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद अहम हो जाती है, जबकि माहरीन के मुताबिक पायदार हल के लिए सियासी शमूलियत, माशी इंसाफ और मकामी सतह पर एतमाद साजी ज्यादा मौसर हो सकती है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी एक नाजुक तवाजुन का शिकार है। एक तरफ मुल्क चीन, खलीजी रियासतों और दीगर शराकत दारों के साथ इक्तसादी ताल्लुकात को अहमियत देता है, जबकि दूसरी तरफ बैनुल अक्वामी मालियाती इदारों के साथ इस्लाहाती शराइत पर अमल दरामद एक मुस्तकिल चैलेंज है। बाज़ औक़ात इलाकाई सतह पर सफारती सरगर्मियों के जरिए पाकिस्तान अपने किरदार को एक पुल की हैसियत से पेश करने की कोशिश करता है, खासतौर पर ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान कशीदगी के तनाजुर हैं। तहम इस सफारती सरगर्मी के बावजूद बुनियादी माशी ढांचा बैरूनी सरमायाकारी और कर्जों पर इन्हिसार करता है। माहौलियाती तब्दीली भी पाकिस्तान के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। हालिया बरसों में सैलाब, गर्मी की शदीद लहरें और ज़रई पैदावार में गैर यकीनी सूरतहाल ने मईशियत पर इजाफी दबाव डाला है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरतहाल को एक साख्ती

दबाव के तौर पर समझना ज़्यादा मुनासिब होगा। IMF, ADB और BTI जैसी रिपोर्ट्स बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि पाकिस्तान के लिए पायदार इस्तेकाम का रास्ता इस्लाहात, इदारा जाती मजबूती और तवील मुद्दती पॉलिसी तसलसल से गुजरता है, मगर इसकी तरफ पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकाम तवज्जो देने से कतराते नजर आते हैं। सामिन, ये तो थी बात पाकिस्तान की, और अब प्रोग्राम के आखिर पर आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा फिल्मी नगमा।

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, तो दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

हम आकाशवाणी श्री नगर से आपसे मुखातिब हैं। मेरी व्यू 268 मीटर के नवा FM 103.5 MHz पर।

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है। मीडियम वेव 268 मीटर के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 8:30 हो रहे हैं। पेश खिदमत है शब खबर की पेशकश, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ लेटर।
1: डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतलिक जामिया रिपोर्ट्स पर मबनी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की पेशकश। डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर।
2: जिलानामा का ताजा शुमारा लेकर आपका मेजबान शेख तजम्मुल हाजिर है। आज के जिलानामा में हम वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के बीरवा सब डिवीजन में सड़क रवाबित के ताल्लुक से बात करेंगे। समीन दौरे जदीद में सड़क रवाबित मुल्कों और अकवाम की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि सड़कें तरक्की की शहरग कहलाई जाती हैं। बड़गाम जिले के बीरवा इलाके में महकमे R&B बड़ी सरगर्मी के साथ सड़क रवाबित को बढ़ावा देने में मसरूफ अमल है और सब डिवीजन में इस वक्त 550 किलोमीटर सड़कों की देखरेख इस महकमे के जिम्मा है। बीरवा सब डिवीजन में सड़क रवाबित को बढ़ावा देने से मुतल्लिक हाल अहवाल जानने के लिए जब हमारे नुमाइंदे शौकत अहमद शाह ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन चाडूरा सज्जाद हुसैन के साथ बात की तो उन्होंने कहा,
3: जहाँ तक ताल्लुक है बीरवा के रोड लेंथ की, वो मैं आपको बता दूं वो 550 किलोमीटर है टोटल। जो हमें लास्ट ईयर अंडर डिफरेंट स्कीम्स जो चलती है हमारी, उनमें CNT है, पोर्ट होल्स है, UT कैपेक्स बजट है, नबार्ड है, FC ग्रांट्स है, जो पिछले साल का टारगेट था हमें मैगनमाइजेशन का, वो हमें था 38.91 किलोमीटर टारगेट था, जिसमें हमने 34.55 किलोमीटर अचीव किया है, 90+% बनती है। इसी तरीके से जो डिफरेंट पुल भी यहाँ, उन पे भी काम चल रहा है अंडर नबार्ड ब्रिज सेक्टर, जिसमें 5 बड़े पुलों पे काम चल रहा है, जिसमें एक लगभग मुकम्मल हुआ है, उसके अप्रोचेस में सिर्फ तारकुल बिछाना बाकी है। इसी तरीके से इस साल के आखिर तक मजीद 3 पुल मुकम्मल होने की तवक्का इंशाल्लाह है हमें।
4: तो कौन कौन सा पुल है ये जो इस साल आपका टारगेट है?
3: एक तो है तकियाबल कानीगुंड, दूसरा है बीरवा मागाम रोड पर मैन ब्रिज बीरवा, तीसरा है बीरवा चिवडारा, और चौथा जो लगभग मुकम्मल हुआ है 95%, वो है लाहौरी चक नोपोरा, वो लगभग कंप्लीट हो गया, उनके अप्रोचेस में सिर्फ तारकुल बिछाना बाकी रह गया है।
4: तो कौन कौन सी स्कीमें हैं, चाहे वो UT सतह की हैं या CSS सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कौन कौन सी स्कीम है जिसके तहत आप काम कर रहे हैं?
3: जी, वो CNT है, पोर्ट होल्स है, UT कैपेक्स बजट है, नबार्ड है, FC ग्रांट्स है, और इसी तरीके से इस साल हमने 40 किलोमीटर का टारगेट रखा है इस साल का, जो हम पूरी कोशिश करेंगे हम ये अचीव करें। बस दुआ करें कि पर्शियन गल्फ में अमन रहें, क्योंकि तारकोल हमें वहां से आता है, अमन अमान हो जाए वहां, ताकि हम हमारा जो टारगेट है इस साल का, इस पे हम अमली जामा पहना सके।
4: सज्जाद साहब, अक्सर लोगों का मानना होता है, लोगों की शिकायत रहती है कि एक साल महकमे ने काम किया, फिर दूसरे साल या तीसरे साल ही सड़क जो है वो गड्ढे बनने शुरू हो जाते, ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ कम्प्रोमाइज मत होता है?
3: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बाजाबता टेस्टिंग होती है। मैं लोगों से इस्तेदा करूं कि जब रोड बनाता है महकमा तो हम वक्फ करते हैं इसको आवाम के लिए। मेरी गुजारिश है आवाम से कि ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है, वो इसका ख्याल रखें ताकि ये ठीक रहे। इसमें कुछ ये भी आ रहे हैं, ब्रिक किल्न्स आ रहे हैं, वो बड़े बड़े डंपर ला रहे हैं, मिट्टी ला रहे हैं साथ, वो उन जगहों पर रोड खराब हो जाते हैं। मेरी लोगों से यही इस्तेदा है कि चूंकि प्रॉपर्टी आप लोगों की है, आपके लिए है, तो इसकी हिफाजत करना भी उनका अवलीन फर्ज है।
4: कुछ रोड्स और भी हैं जो मागा नाजन से कोलहामा रोड है, वहाँ पे भी हमें कई शिकायतें आती हैं कि रोड खस्ता है, या मागा अमरसना है, ओहनगाम है, वहाँ पे भी। कब तक आप लोगों को आश्वासन देंगे कि ये रोड सारी जो है वो

0: क्लियर हो जाएंगे।
1: मैंने आपको पहले ही कहा, इस पिछले साल का टारगेट था हमें 48.91 किलोमीटर, जिसमें हमने 34.55 किया है। इस साल का टारगेट 40 किलोमीटर है और रफ्तार रफ्तार हम कोशिश करेंगे हर एक रोड को ठीक करने की। हमारी स्कीम्स यही है, CNT, पॉट होल, UT कैपेक्स बजट, नबार्ड, FC ग्रांट्स, यही स्कीम्स हैं जिनके तहत हम अपने रोड या पुल या तो तामीर करते हैं या उनको या उनकी मरम्मत करते हैं।
0: अपने एरिया के बारे में कुछ बताइए, चूंकि रूरल एरिया है, कितना कठिन है वहाँ पे सड़कों की तामीर करना?
1: हिली एरिया है, इट इज चैलेंजिंग, बट वी आर डिटरमाइंड, हम डिटरमाइंड है कि हम हर चैलेंज को फेस करेंगे।
0: आपको लगता है कि जहाँ पे भी गांव है, सड़क के किनारों पे बस्ती है, वहाँ पे ज्यादा रोड खराब हो जाते हैं, और आपकी क्या कोशिश रहती है कि हम लोगों को समझाने की कि आप रोड आपका है और आपको इस देखरेख आपको ही करनी है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सड़क जो बनाते हैं वो आवाम के नाम ही वक्फ करते हैं और ये अवलिन फर्ज है आवाम का कि वो भी आप उस सड़क का की हिफाजत करें, पानी न डालें, कूड़ा करकट वो निकालते हैं घर से और फेंकते हैं सड़क पे। सिर्फ सेंस प्रिवेल होना चाहिए हमारे आवाम में।
0: क्या रवा माली साल का जो हमारा बजट है उस हवाले से काम शुरू हुआ है?
1: जी जी, काम शुरू हो गया, सिर्फ मैकेडमाइजेशन में हमें प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से कि पर्शियन गल्फ में इस वक्त वॉर चल रहा है। हम दुआ करेंगे कि अमनो अमान हो।
0: अगर हालात ठीक रहे तो आप अपना टारगेट जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे।
1: इंशाल्लाह पूरा टारगेट हम अपना कवर करेंगे।
2: समीन, कौमों और मुल्कों की तरक्की में अवामी नुमाइंदों का रोल इंतहाई अहम होता है। अवाम के चुने हुए ये नुमाइंदे तरक्याती प्रोजेक्टों की तैयारी से लेकर इनकी अमलावरी तक हर सतह पर अपना किरदार अदा करते हैं। बीरवा इंतखाबी हलके के मेंबर असेंबली डॉक्टर शफी अहमद वानी ने हमारे नुमाइंदे शौकत अहमद शाह के साथ बात करते हुए बीरवा सब डिवीजन में सड़क रवाबित के ताल्लुक से तफसीलात कुछ यूं फराहम की।
3: तरक्की के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जब से कि उमर साहब की हुकूमत बन गई और मैं यहाँ बीरवा का MLA बन गया, PWD सेक्टर में हमने पिछले 1.5-2 सालों में बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले जो बीरवा का डिवीजन था, हमारे पास न AWE था न एक्शन था। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर PWD का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने एक काबिल मेहनती AWE पोस्ट किया और एक्शन भी पोस्ट किया, तो जो डिवीजन था वो एक्टिवाइज हो गया। इंशाल्लाह इस साल हमें ज्यादा मैकेडमाइजेशन और रोड कनेक्टिविटी करनी है। हमने लास्ट ईयर वो एरिया दिए जो इग्नोर हुए थे, जिनका क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है आदिनाथ रसन, बिल्कुल पिछले 6 साल में कुछ नहीं हुआ उसका, हमने मैकेडमाइजेशन किया। एक गांव है वातलपोरा साइड, वहां हमने मैकेडमाइजेशन किया। महगाम टाउन और बीरवा टाउन प्रायोरिटी में हमने मैकेडमाइजेशन किया। मार्बल ब्लॉक में हमने मैकेडमाइजेशन किया और ऊपर के कुछ एरिया जैसे बनहमा वहां हमने मैकेडमाइजेशन किया। तो इस साल इंशाल्लाह अब हालात ठीक हो गए, जो पर्सन ये गल्फ एरिया में खुलेगा तो मैकेडम इस साल मेरे ख्याल में, हम अगर मौसम ठीक रहा और मैं ये टॉर अवेलेबल होगा बीरवा में, हम ऑलमोस्ट 65% रोड्स को अंडर CNT और पॉट होल्स में मैकडम करेंगे। मैं एक चीज आपके जरिए लोगों से ये कहता हूँ कि वो डिपार्टमेंट से कॉपरेट करें, क्योंकि अगर सड़क बनानी है सड़क के लिए हमें जमीन चाहिए। इंजीनियर तो हवा में सड़क नहीं बना सकता है। जहाँ पर भी मेरे लोगों को कुछ चीज उठाना होगा जाना, उनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कॉपरेट करना चाहिए। दूसरा, क्वालिटी तो मैं खुद मेंटेन कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ, लोग भी वॉच, मैंने एक टीम बनाई है और जो इंजीनियर्स मेरे पास है इस वक्त, मैं बड़े वसूख से कहता हूँ आई हैव अ वंडरफुल इंजीनियर, जो मुझसे भी ज्यादा दे वांट अ क्वालिटी वर्क, उस मामले में मुतमईन हूँ। तो मैं एरिया में जाता हूँ जहाँ भी मेरी ड्यूटी है, मैं कोई ये लोगों को मिन्नत नहीं रखता हूँ, लोगों ने मुझे इसीलिए वोट दिया है और अल्लाह ने भी मुझे इस काम पर इसीलिए लगाया कि लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों की वाबस्तगी है और अल्लाह की तरफ मेरे लिए इम्तिहान है। आप भी दुआ कीजिए कि इस इम्तिहान में मैं कामयाब और सुरखरू।
2: समीन, जब किसी भी इलाके में सड़क रवाबित में वसत आ जाती है तो वहाँ के लोगों में भी तरक्की के रुझानात बढ़ जाते हैं। लोग सब्जियाँ, میوے اور دیگر زرعی پیداوار بازاروں تک لے جانے میں آسانی محسوس کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو اپنی پیداوار کی مناسب قیمت بھی مل جاتی ہے اور یوں ان کے گھروں میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ سڑک روابط ہی ہیں جو دور دراز علاقے کے لوگوں کی جانب سے اگائی جانے والی سبزیاں، میوے اور دیگر اشیاء خورد و نوش دور دراز کے بازار

0: में पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। हमारे नुमाइंदे शौकत अहमद शाह ने बीरवा हलके के कुछ आम लोगों से बात की और उन्होंने हुकूमत की जानिब से सड़क रवाबित को वसत देने की खातिर किए जा रहे इकदाम की सराहना करते हुए कहा,
1: जो तामीरकारी है उसमें बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है, बहुत सारी सड़कें नई सड़कें तामीर की गई है और पुरानी सड़कों की भी वायरिंग हुई है, मगर इसमें अभी भी बहुत कमियां हमें लगती है। बहुत सारे जगहों पे काम करने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनके बीच में तालमेल का फुकदान है, जैसे कि ईडीडी और आरएनबी के दरमियान, इसी तरह जल शक्ति डिपार्टमेंट और आरएनबी के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब भी सड़कों की वाइडनिंग होती है या सड़क बनाई जाती है तो उसके बाद ही या वहाँ जल शक्ति डिपार्टमेंट उसमें पाइपें बिछाता है सड़कों में, और उससे जो बुनियादी मकसद है सड़कों की तामीरकारी का वो फोत हो जाता है, वो पूरा नहीं होता है। उसके अलावा जो ये है पीडी डिपार्टमेंट, ये भी वहाँ पे जो तरसीली लाइनें नस्ब करते हैं, पोल वगैरह सड़कों के बीच नस्ब करते हैं, फिर उनका जो वाइडनिंग का बुनियादी मकसद ही खत्म हो जाता है, फिर लोगों को आमद रफ्त में बहुत सारी मुश्किल आते हैं। और अगर कभी फिर वाइडनिंग की जाती है तो उन लाइनों को हटाने के लिए फिर क्लेरिफिकेशन लानी पड़ती है डिपार्टमेंट से, वो नहीं मिलती है, तो बहुत सारी रुकावट उससे भी हो जाती है, तो लोगों को जो है इसमें आमद रफ्त में बहुत सारी मुश्किल पेश आती है। पहले तो मैगडम बिछाया जाता है और कुछ अरसे बाद ये आते हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट और उस रोड को खोदते हैं, रोड के बीचों बीच पाइपें बिछाते हैं, फिर उसको ठीक नहीं किया जाता है। प्रॉब्लम है इसमें जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्टर का, वो उस पीरियड के दौरान जहां पे भी इसमें पैच होते हैं उनको रिपेयर नहीं करता है, तो लोगों को फिर जो है उबूर मरूर में बहुत ज्यादा दुश्वारियां आती है। तो इन चीजों पे हम चाहेंगे कि अगर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होती या डिपार्टमेंट टाइमली ये चीजें पहले कंप्लीट करते फिर रोड पे मॉडर्नाइजेशन या वाइडनिंग की जाती वो बेहतर रहता, ताकि ये लोगों का जो है पैसा है टैक्स का पैसा जो सड़कों पे खर्च किया जाता है तो ये पैसा भी बच जाता और सही तरह से ये इस्तेमाल हो सके।
2: मेरा नाम रियाज अहमद है और मेरा ताल्लुक बीरो बड़गाम से है। जहाँ तक सड़कों के हवाले से बात है तो हम ये कहना चाहते हैं कि गुज़श्ता कई सालों से अच्छा काम हुआ है सड़कों की तामीर के हवाले से, लेकिन अभी भी काम की बहुत गुंजाइश है। दूर दराज इलाकों में अगर देखा जाए सड़कें खस्ता नजर आ रहे हैं, जिन पर महकमे को खास तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि इलाके की तरक्की सड़क रातों से ही जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि क्वालिटी मटेरियल पे तवज्जो दी जाए।
0: इसके साथ ही जिलनामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरानी आला अशफाक अहमद शाह, तरतीब व तहजीब कौशिकी कश्यप और रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नूरुलैन इशरत, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश ओरिजिनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
3: समय अभी आप शब खबर की पेशकश समाप्त कर रहे थे। जिलनामा आकाशवाणी श्रीनगर है।

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन 8:45 हो रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप हिंदी खबरें समाप्त करेंगे। रले का बस जरा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांग संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने ए आर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर का

0: कॉम्प्लेक्स। अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
2: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
4: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की

0: बुझा दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
2: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत

0: और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.1 मीटर के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन हमारी नशरियात आप DTHR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। जब के 9 बज चुके हैं। आइए चंद उर्दू गजलें समाप्त करते हैं।

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.1 मीटर के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समीन शब के 10 बज चुके हैं। एक वक्फे के बाद समाप्त करें साइंस सीरियल।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: मम्मी मम्मी मैं देते ब्रेकफास्ट जल्दी मैं कोई वारिया सीयर
1: दीदी चाने खतर छुन ब्रेकफास्ट से छकन पढ़ाई में दिलचस्पी निवान तोरी फिक्र
0: आकाश प्लीज कर छप तुझक हमेशा मोबाइल से आवर आसान तुझक न पान परान कहीं ये छे पापस तिपाई
1: से हका कहते बने मगर ब्रेकफास्ट मेल नहीं किए
0: मम्मी जल्दी करते हैं मैं कोई वारी अच्छी यार
2: वानी बेटा आकाश जी पोज वनान आथ लगे पहर खंड
3: गुबरा मबा अमर अकी गट पतख ब्रेकफास्ट ते शेना पता सारी स्कूल छ हफ्तस बंद करना आमित
0: पापा क्या जे स्कूल क्या जे करिक बंद
3: ते केस गट वठिश ते चकना बुछान दर्जा हरारत कोता छ बड़ा दोईमी तरफ छ शामस अचानक गसा उबर खसित रुदु श्राइन शिवाला यमकिन जन सोरी निजाम दरहम बरहम चुगो
0: मगर पापा तमसित क्या गचे इवन दोन क्या वाट छ पत्न चंद्रवार ओसना रूत पेवान
3: अहन सब पेवाने ओस मगर रात शाम पेट तुशना रूत पेवान सारनी सड़कन छु सहला बामत गाड़ी छन सड़कन पेट पकित हेकन अवई छ स्कूल बंद करना आमत त सहलाब जद लोक छ इमन स्कूलन मस ठहराव नी इवन नेशनल डिजास्टर फोर्स छु लुकन महफूज जायन ताम वातनावनिश काम करा
0: आ पापा मैं वुच मगर बस स्कूल काम सित आवर आउ मख रुदम न ख्याल
1: मगर पापा यने छु वुनि ताम गोमती गर्मी छ वारिया तो रुदुक मौसम ति छुना ये छन बिहिन लायक
3: आकाश गोबरा ये सोर इशु ग्लोबल वार्मिंग तो माहौलियती तब्दीली किन सबदा
0: आ पापा सन टीचर ते अस आईसी ई वनान
3: ओके पत करो बेई कात गड बोजो खबर आकाश गुबरा तल से रेडियो त्राव
4: इचो ऑल इंडिया रेडियो वाइन बुजु तुई खबर वजीर आजमन चो हुनर मंदी हिंदे आके नवी स्कीम हुंद ऐलान करमुत दुरुस मुल्कस मन च गर्मी बडान त वारिया नफर छ شدید गर्मी सित हलाक सपजमित मुल्क चन केसर रियासतन मन चो बार रोद पेन सित सलबी सूरत हाल पेश आमत माहिरीन माहौलियात वनान जे आब हवुच तब्दीली सत वारिया मुल्क मुतासिर गमित
1: ओ गो वारिया मुल्क छ अमकिस असरस तलामित
0: अमिक वजूहात क्या छ
2: वानी त आकाश बुझो ब वनोत आब त हवा छ ज अहम जुज यमन पेट सोन माहौल दरित छ सनती इंकलाब पत आई आब हवस नमाया तब्दीली त दर्ज हरारत रूद बढ़ान सतह समंदर तिच बड़ा तो वारिया जुब जस च नाबूद गसने किस दहानस पे
0: आ मम्मी सन टीचर ते अस वनान जे जम्मू कश्मीर केदारनाथ तमिलनाडु त केरला हस मस तिच छ माहौलियाती तब्दीली के नागहनी आफत आंच
2: वानी बेटा ऐसी इंसान च अन खतर जिम्मेदार जंगल खत्म करने तो कुदरती वसीलन हुंद गलत इस्तेमाल से चु सोरी सप्ता
1: मम्मी मैं चु बुझमुत जी पोलर आइस ते चु तेजी सान कुमलान
2: आकाश बेटा तु चु पोज मनान पत्मिस हतस वर्य

समीर विनेश वितुई साइंस सीरियल भोजन क्लाइमेट चेंज द ग्लोबल वार्मिंग आज भोजू तो ही वही मुकस्त मोजू उस माहौलियाती आलूदगी तो अमिक मुजर असरात तहरीर दिलीप कुमार झा कौशर तर्जमाकार सुहेल अहमद भट्ट तो कम करन वेल फनकार मुहम्मद अफजल भट्ट शबीर हक्काक रियाज अनवर शाहिना नजीर सुहेल सुनोबर त फरवा भट्ट मावनत मुहम्मद इमरान सूफी त प्रोड्यूसर छे गुलाम रसूल आखून इचा आकाशवाणी।

0: چون بدن گلو وچو
1: خوش دلوک
0: پلو چٹی
1: خوش دلوک

نَفْلَوْمُ نِيرْنُونَ بَدْ سَبَاشُ زَاكَتْ

0: रात चाहिए अंदर,
1: रात
0: चाहिए
1: अंदर,
0: गाश्त चाहिए अंदर,
1: गाश्त चाहिए अंदर,

0: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से
1: मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर पयामे सुब
2: सुनो सजना
1: पयामे सुब
3: समीर वरी वो मजू कला में रशीद नाज की पेशकरण आशा कौन।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: समीन कोशिर मौसकी चुते आकाशवाणी श्रीनगर पेट भोजन वली आखरस पेट भोजन कलाम सागर नजीर पेश करन एजाज रहा।

0: नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने ए आर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और पर इसका जो प्रभाव जो है वो भारतीय स्टॉक मार्केट में भी हुई है, रुपए में हुई है, क्योंकि रुपए में जो थोड़ी बहुत अप्रिशिएट कर रहा था पिछले कई दिनों में, वो आज लगा कि काफ़ी डिप्रिशिएट कर गया, क्योंकि भारत की जो अगर तेल का दाम अगर फिर से बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारी जो जो डॉलर की डिमांड होगी वो सप्लाई से थोड़ा बढ़ जाएगी। तो उसी सब चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये वेस्ट एशिया का जो जो वातावरण जो है उसके ऊपर स्टॉक मार्केट की जो गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा निर्भरशील है। उसी लिए जो जो डोमेस्टिक मार्केट की जो स्ट्रेंथ और जो वीकनेस जो है वो आज की तारीख में इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट निर्भरशील हो चुकी है। तब भी अगर आप ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप अगर झुक के देखें, अगर अंदर जाकर देखें, तो आपको ये लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा जो जो समस्याएं जो आ रही हैं वो जो तेल के दामों के ऊपर ज़्यादा सेंसिटिव हैं, निर्भरशील हैं, उनकी ज़्यादा, जैसे कि इंडिगो
1: जी।
0: जैसे आपने कहा इंडिगो की शेयर मार्केट के काफ़ी नीचे आ गया क्योंकि वो तेल इस्तेमाल करती है, ETF का दाम अचानक बढ़ जाएंगी तो उसकी सारी जो प्रॉफिटेबिलिटी में ख़त्म आएगी। उसी तरह जो मिड कैप स्टॉक्स जो हैं जो पिछले एक हफ्ते में बहुत अच्छी रिकवरी उनकी हुई है, आज उनकी पिटाई हुई है। स्मॉल कैप में उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लार्ज कैप में हुई है, पर लार्ज कैप में जो उनको जो संभालने की स्थिति, संभालने की जो एक एबिलिटी है वो मिड कैप में उतना नहीं है,
1: उतना नहीं है।
0: तो इसीलिए मिड कैप की जो जो रिकवरी हुई थी वो काफ़ी न्यूट्रलाइज आज के स्टॉक मार्केट में ये हमें दिखने को मिल रहा है। और मुझे जो लगता है कि अगले सप्ताहों में या अगले महीनों में हम सिर्फ इसी चीज़ को देखते रहें, जो भारतीय कंपनियां जो हैं उनकी स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक निर्भरशील रहेगी किस तरह से जो वैश्विक वातावरण की गति किस तरफ जा रही है।
2: So this, I like the use of the word elan that you have made. It's like a declaration only.
0: Yeah.
2: So this statement by President Trump, which has come in, do you think it's also going to further impact the inflow and outflow of foreign funds into our market?
0: That will have a there will be some impact, but what the bigger impact will be, to what extent the Fed responds to this, deepening of the tensions. Hypothetically, the inflation rate in the US is slightly elevated. Now, if it is elevated, it's likely that in the next policy review, the new Fed chairman might decide to increase the rates. Now, if they do that, then it is bad news for us. So money will flow out.
2: Right.
0: Already, we are seeing that India's ranking in gross FDI has gone up

0: but so has India's investment abroad. So what is happening is that while India continues to get a lot of gross FDI, but when it comes to the net FDI, which matters for our external sector and the impact on the rupee, our net FDI is not doing very well. So Indians are now investing abroad to also maybe to shield and provide a little safeguard to their overall investments in a global market. So I don't think that we should worry very much on our investments, because on what's really happened in the InvestAsia, we should worry more how the Fed reacts to it, maybe in the next month or two.
1: Right. So this volatility is going to, of course, remain not only in Indian markets but across the world. Now, if you're saying that the outflow of Indian funds into foreign markets has also increased, and hence the gap is not so much for the retail investor, because, you know, investment also in foreign funds, there are boundaries to that, there are limits. So basically HNIs would be investing because they have the resources and probably the view also and information to invest across. But for the retail investor in India, it's highly volatile, whether it's in India or out. And they are sitting on some very good shares, which despite waiting, and you know, it's like patience is a restless bird, the valuations are going to take some time, and the rate at which they're falling, people wonder whether the valuations will ever, or the prices will ever reach their purchase price. Well, what should they do?
0: You know, this is the time of any stock market investor's journey when he cannot look at things on a day-to-day basis or on a weekly basis or even on a monthly basis. If you are a trader, if you are a punter, you're making your living out of trading, then it's a different matter. But if you are an investor for building your asset base for your old age or something like that, then I would say the time is not yet ripe to keep investing or disinvesting from the market. It's a very, very important time where retail investors must realize that the best safety lies in staying invested and not trying to panic or pull out your money, because this is the time when you might get shortchanged by the sharp fluctuations in the market.
1: Right.
2: श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया के बाजार की तरफ. एशियाई शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5.3% से अधिक, जापान का निकेई 2% से अधिक और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.5% गिरा. वहीं हांगकांग का हैंगसैंग 3%, ताइवान का ताइएक्स लगभग 0.5% से अधिक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% बढ़ा. भट्टाचार्य जी, हमने पिछले ही महीने देखा कि कॉस्पी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था और अभी हम देख रहे हैं कि कॉस्पी में एकदम मेजर करेक्शन, 20-22% तक उसमें गिरावट देखने को मिली है. ये वैश्विक स्तर पर ये किस तरफ का इशारा है, ये क्या हमें दर्शाता है?
0: जो मैंने पहले जो कहा था
2: जी,
0: कि जो मार्केट्स तेल के आयात के ऊपर अधिक निर्भरशील हैं, उनके लिए ये दौर काफी पेनफुल रहेगा. और यही आज का मार्केट, जो कॉस्पी का जो मूवमेंट करीबन 5.5% का गिरावट दर्शाता है. कोरिया कहिए, जापान कहिए, इवन चाइना जो वेस्ट एशिया के तेल के ऊपर काफी निर्भरशील है
2: जी,
0: उनके लिए जो वेस्ट एशिया में जो हुआ, जो ट्रंप साहब का जैसे ऐलान जो हुआ, उससे मैं समझता हूँ कि इन देशों के लिए और भारत के लिए भी एक एक एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है. हालांकि हमारे देश में हमने जो तेल को जो हमने मैनेजमेंट करने की जो हमारी पॉलिसी है, हम ज़्यादा क्विक रिएक्शन न देकर हमने ओवरऑल मैनेजमेंट का एक सिलसिला रखा है. और ईरान के साथ भी बात कर हमारी काफ़ी जहाज़ें वहाँ से आ गई हैं.

0: to services and industry. But the good news is that loans to agriculture and allied activities, which is the dairy sector, they are doing well. So which means perhaps the rural economy is getting the benefit of a good pace of activity in the NBFC loan giving sector. So it's not good news, but there are rays of hope. For example, if the dairy sector can really convert these loans into more productive jobs, productive gains, if the consumption boom remains controlled and sustains investment in the other parts of the economy, there could be a possibility that we may come out of this phase. But this is a phase where we need to closely watch it and before we go to the next stage.
1: Right. श्रोताओं, अन्य खबरों में, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों में हुई वर्षा के कारण कई राज्यों में कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 हो गई है। महोदय, हम काफी वक्त से खबरें देख रहे थे, सुर्खियों में देख रहे थे कि अलनीनो का खतरा जो है हमारे कृषि प्रधान देश पर एक मंडरा रहा था, लेकिन अब शायद स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है।
0: जो ओवरऑल डेफिसिट जो है
1: जी,
0: वो कम हुई है, पर एलनिनो का जो प्रकोप या प्रभाव जो हमें जो डर है, होता है, वो सिर्फ ओवरऑल डेफिसिट के ऊपर नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के ऊपर होता है। और अगर मान लीजिए एलनिनो का प्रकोप सितंबर, अगस्त सितंबर के बाद आता है, मैं समझता हूँ कि उतनी चिंताजनक बात नहीं होगी जितनी चिंताजनक बात होगी अगर उसका प्रकोप अब होता है।
1: हाँ।
0: जब हमारी रेन की बहुत जरूरी
1: है। जरूरत है अभी।
0: सो ओवरऑल जो 43% का जो शॉर्टफॉल था वो कम हुआ है, 10% की घटी है, पर अभी भी गैप है। और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे देश में वो कैसा होता है, पर एलनिनो से हमें संभल के और मेजर्ड अप्रोच लेना चाहिए। और सरकार जो स्टेटमेंट जो आ रही है तो वो लग रहा है कि पूरी तरह से सचेतन है और लोगों को चेतावनी दी जा रही है जिससे कि वो ठीक तरह से इसका प्रयोग करें।
2: जी। In some more news, Prime Minister Narendra Modi's state visit to Australia begins today, driving deep economic and strategic realignments with a firm focus on vibrant diaspora bridging both nations. We have a report.
3: The momentum of the economic engine of the India-Australia relationships are set to be further boosted with tomorrow's high-stakes engagement. A central highlight of the Melbourne itinerary will be the high-profile India-Australia CEOs Forum, where Prime Minister Modi will meet corporate and business leaders from both hemispheres to catalyze fresh investment pipelines. Furthermore, tomorrow's highly anticipated bilateral talks with Australian Prime Minister Anthony Albanese are expected to give a massive boost to the economic ties of both nations. Akash Pani News, Suhas Ram from Melbourne.
2: So it could be a visit that holds significance for both India and Australia in these times, anchoring each other?
0: Oh yeah, absolutely. I mean, please remember that Australia is India's fifth largest trading partner. We also have a discussion going on with the Australian government for a comprehensive economic cooperation agreement. We have a lot of investment coming to India, and India also invests a lot in Australia. So therefore, it's a relationship with potential gains for both the countries. The early doubts have been ironed out and resolved. And if the Comprehensive Economic Cooperation Agreement once again gets resolved and we get into a deal, my sense is both the economies will benefit. And strategically also, since Australia is located geographically in an area which is...

0: the Indo-Pacific zone, it's a very, very important message that the globe, the world will receive if India and Australia come together with deeper economic relationship.
1: Absolutely. In crude oil prices, global crude oil prices rose more than 4% today amid renewed fears of supply disruption. Brent crude was trading over 4.6% up at $77.61 per barrel. West Texas intermediate crude was trading over 4.5% up at $73.64 per barrel when reports last came in. So this elan, this announcement that came, touched a raw nerve for crude oil because it's really just...
0: Well, you know, it is still, to my mind, the Brent crude oil is still in a zone that should cause us concern, but not should not be seen as an alarm bell.
1: Okay.
0: It's important to keep a watch on it, build more reserves in the country, and reduce our dependence on imports. But as of now, $73 is not something that is one should be alarmed, but it is cause for concern.
1: Right. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.3% down at 1,43,930 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.8% down at 2,24,680 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona 1.3% ghatkar 1,43,536 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki sitambar anubandh wali chandi 2.8% ludhakkar 2,24,293 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. महोदय, क्या सोने और चांदी की जो कीमतें हैं, स्पेशली जो सोने की कीमतें हैं, उनमें हमें अभी और
0: देखिए सरकार ने 2-3 जो निर्णय लिए थे पिछले एक महीने में
2: जी.
0: जो कस्टम ड्यूटी का जो इंक्रीज कर दिया गया था उससे सोने के दामों में तो जरूर एक प्रभाव तो हुआ है. उसी के लिए मैं और सेकेंडली जो ग्लोबल मार्केट जो सिचुएशन जो है उस तारीख आज की तारीख में सोना या चांदी की जो लुभावनापन जो था वो थोड़ा कम आया है और इसीलिए ये दाम कम
2: आए हैं. भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे सवालों के तमाम सवालों के जवाब देने के.
0: नमस्कार, धन्यवाद.
1: एब्सोल्युटली एकेबी, थैंक यू सो मच. एंड नाउ a quick look at the headlines. Once again, benchmark domestic indices shed over 2%. Sensex falls nearly 1,700 points. Nifty settles below 23,900. Asian stock market indices end on mixed note. And global crude oil prices surge. That's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आपको पता है जोहरा जबी का मतलब क्या होता है? नहीं, जोहरा का अर्थ होता है वीनस प्लेनेट, यानी शुक्र ग्रह, आसमान का सबसे खूबसूरत चमकता हुआ सितारा। प्राचीन रोमन सभ्यता में वीनस को सुंदरता और खूबसूरती का प्रतीक माना गया है। जबी का अर्थ होता है माथा, तो अब से आप भी अपनी प्रियतमा को जोहरा जबी बुला सकते हैं। फिल्म होली आयरी से ये गीत मुकेश की आवाज में।

ये तमन्नाएं आरजुएं हमारी जिंदगी को रवानी देती हैं। इसलिए जिंदगी में तमन्नाओं का होना बहुत जरूरी है। ये और बात है कि अक्सर ये तमन्नाएं पूरी नहीं होती, लेकिन जिंदगी के हर मरहले में ये किसी न किसी तरह मौजूद जरूर रहती हैं। और जब कभी ये तमन्नाएं पूरी होती हैं ना, तो दिल गुनगुना उठता है। क्या ये गीत फिल्म हाथी मेरे साथी से।

0: इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन मीत यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। भारत और म्यांमार ने सीमा सुरक्षा और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में संपन्न हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और अन्य संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा की। बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह सचिव गोविंद मोहन ने किया, जबकि म्यांमार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के उप मंत्री मेजर जनरल मिंथू ने किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में निलिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्यूक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia yesterday on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities Claire O'Neill upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australian counterpart Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries.

जमीन आसमान फिल्म से आपने ये गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। इस मौसम में मौसम के सिवा और क्या बात हो सकती है। और सच भी तो है, जब बादल आसमान पर अपनी चादर बिछा दे, ठंडी हवाएं खिड़कियों को सहला जाएं और बारिश की बूंदें अपनी मधुर ताल छेड़ दें, तब हर बातचीत का विषय भी यही मौसम बन जाता है। खिड़की के पास बैठकर दूर तक फैली हरियाली को निहारना और साथ में पुराने सुरीले गीत, बस यही तो है सुकून का दूसरा नाम।

लवर्स फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। मौसम की अपनी एक अलग ही जुबान होती है, कभी ये रिमझिम फुहारों में मुस्कुराता है, कभी ठंडी हवाओं में कोई भूली बिसरी याद जगा देता है, तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट के बीच दिल की खामोशी में सुनाई देने लगती है।

तेरी कसम फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से आपने गाना सुना अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। ऐसे लवली लवली मौसम में दिल भी कुछ हल्का हल्का हो जाता है, होठ अनायास गुनगुनाने लगते हैं, चाय की हर चुस्की सुकून का एहसास देती है और पुराने सदाबहार गीत यादों की खिड़कियां खोल देते हैं। हर धुन जैसे बारिश की बूंद बनकर मन की धरती को भिगो जाती है।

बाबू फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कुछ मौसम सिर्फ बदलते नहीं, एहसास भी बदल देते हैं। हवा का हर झोंका जैसे कोई प्यारा सा पैगाम लेकर आता है। बादलों की हर आहट दिल की धड़कनों में एक नई लय जगा देती है और रिमझिम बरसती बूंदें मानो जिंदगी की भागदौड़ को कुछ पल के लिए थाम लेना चाहती हैं।

सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना आपने सुना। आशा भोसले और दिलराज कौर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कुछ मौसम मंजिल से ज्यादा सफर को खूबसूरत बना देते हैं। ठंडी हवाएं चेहरे को छूकर गुजरती हैं, बादल आसमान पर अपनी कहानी लिखते हैं और हर मोड़ पर लगता है जैसे कोई नया नज़ारा हमारा इंतजार कर रहा हो। ऐसे मौसम में कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं, रास्ते अनजाने जरूर होते हैं लेकिन डर बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हर मोड़ एक नई मुस्कान, एक नया एहसास और एक नई याद अपने साथ लेकर आता है।

बरसात की एक रात फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 56 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 4 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और संघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद को भी की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नई दिल्ली में कृषि नेतृत्व सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि ऋण और उर्वरक सब्सिडी जैसी योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तंबाकू कंपनियों को किसानों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुरंत खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अमरावती में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि तंबाकू का मूल्य 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही कंपनियों को अपने खरीद संबंधी वादे पूरे करने के निर्देश दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की सूची से हटाने के फैसले की जानकारी अमेरिकी कांग्रेस को दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये अमेरिका और सीरिया के रिश्तों में एक नया और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सीरिया की नई सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजों की चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भारत की 9 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia yesterday on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill, upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australia counterpart, Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. India and Russia yesterday reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SCO. The Ministry of External Affairs said that the 14th meeting of their India-Russia Joint Working Group on Counter-Terrorism was held in New Delhi. Secretary West, Ministry of External Affairs,

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है गीत सुहानी, मैं हूं राखी आपके साथ।

बरसात फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। बरसात एक ऐसा मौसम जिसने बॉलीवुड के गीतकारों और संगीतकारों को हमेशा से प्रेरित किया है। इस भीगी रुत पर हिंदी सिनेमा में अनगिनत गीत रचे गए। कभी रिमझिम पुहारों में प्यार की खुशबू घुली, तो कभी बरसती बूंदों ने बिछड़ने का दर्द बयान किया। कहीं सावन ने दिलों को मिलाया, तो कहीं बारिश ने यादों को और भी गहरा कर दिया। सच्ची तो है, बॉलीवुड में बरसात पर लिखे गए गीतों की दुनिया जितनी विशाल है, उतनी ही दिलकश भी।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से आपने गाना सुना किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। बरसात, ये सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एहसासों का सबसे खूबसूरत नाम है। जब आसमान से गिरती बूंदें धरती को छूती हैं तो जैसे हर ओर एक नई धुन, एक नई खुशबू और एक नया जादू बिखर जाता है। शायद यही वजह है कि बॉलीवुड ने भी इस मौसम को हमेशा खुले दिल से अपनाया है। वैसे यही कारण है कि जब भी बारिश की पहली बूंद गिरती है तभी अचानक से कोई ना कोई फिल्मी नगमा होठों पर आ जाता है। कभी मन दिल यादों की गलियों में निकल पड़ता है तो कभी कोई मधुर धुन इस मौसम को और भी हसीन बना देती है।

काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना, गीता दत्त और शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात और साथ लाई भीगी भीगी यादें, महकती हवाएं और दिल को छू लेने वाले एहसास। बारिश का मौसम जब भी दस्तक देता है तो प्रकृति का हर रंग जैसे और भी निखर उठता है। ऐसे ही मनभावन मौसम को सुरों में पिरोता ये खूबसूरत नगमा जो अभी आपने सुना, वाकई रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात।

और संगीत बिखेर दिया हो। ऐसे ही सुरमय और मनमोहक मौसम का एहसास कराता है ये प्यारा गीत जो अभी आपने सुना। इसकी धुन और बोल बरसात की हर बूंद को एक मधुर एहसास में बदल देते हैं।

परख फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। बारिश की भीनी भीनी खुशबू, पत्तों पर ठहरी ओस, मिट्टी की सौंधी महक और मन को छू लेने वाली ठंडी हवाएं, जैसे प्रकृति ने चारों

श्री 420 फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:33 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

उसने कहा था फिल्म से आपने ये गाना सुना, तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। बारिश बारिश और ये प्यारे प्यारे तराने कानों में रस खोलते, दिल में उमंग जगाते, ये प्यारे प्यारे तराने।

चोरी चोरी फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। बरसात का जिक्र हो और हिंदी फिल्म संगीत की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। कभी भीगी सड़कों पर प्रेम ने दस्तक दी थी तो कभी सावन की फुहारों ने बिछड़ने की टीस को सुरों में ढाल दिया था। 50 और 60 के दशक में रचे गए बरसाती नगमे आज भी उतने ही ताजा लगते हैं, मानो हर बारिश के साथ फिर से जन्म ले लेते हों।

बरसात की रात फिल्म से आपने ये गाना सुना। इसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने, इसको लिखा साहिर ने और संगीत दिया रोशन ने। कुछ बारिशें सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि जिंदगी भर के लिए याद बन जाती हैं। कभी भीगी हुई राहें, कभी ठंडी हवाएं, तो कभी किसी अपने का साथ। बरसात अनगिनत लम्हों को हमेशा के लिए दिल में बसा देती है।

कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना रफी और आशा की आवाज में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। जब दिल में मोहब्बत की पहली दस्तक सुनाई देती है तो हर बादल दीवाना लगता है, हर फिजा गुनगुनाने लगती है और हर मौसम में एक नई ताजगी उतर आती है।

नौजवान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 42 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में सुनिए समाचार। ठीक आप 2 बजे सुनेंगे समाचार और 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन

0: ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों की उनकी उपज को उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। पाकिस्तान के कराची तट से 12 घंटे पहले लापता हुए बोइंग कार्गो विमान का मलबा गहरे समुद्र में पाकिस्तानी बचाव दल को मिल गया है। विमान में सवार 5 चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 विमान का मलबा ओरमारा बंदरगाह से 53 समुद्री मील दक्षिण में बरामद किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइट रडार 24 के अनुसार विमान कराची के दक्षिण पश्चिम में समुद्र में कई बार ऊंचाई में अचानक बदलाव के बाद तेजी से नीचे उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अलशारा को पत्र लिखकर बताया है कि उन्होंने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की अमरीकी सूची से हटाने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि इससे सीरिया के पुनर्निर्माण का रास्ता खुलेगा और अमरीकी कंपनियां वहां निवेश के लिए तैयार हैं। इस फैसले को लागू होने से पहले अमरीकी कांग्रेस 45 दिनों तक इसकी समीक्षा करेगी। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजों चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia yesterday on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill, upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with these with his Australia counterpart, Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. India and Russia yesterday reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SEO. The Ministry of External Affairs said that the 14th meeting of the India-Russia Joint Working Group on Counter-Terrorism was held in New Delhi. Secretary, West, Ministry of External Affairs, Sibi George, and Deputy Foreign Minister of Russia, Dmitry Lubinsky, co-chaired the meeting. Both sides condemned terrorism in all its forms and manifestation, including cross-border terrorism, and called for concerted action against terrorists, terrorist groups, and their proxies and affiliates. Defence Research and Development Organisation, or DRDO, yesterday conducted a successful flight test of Pinaka Long Range Guided Rocket, or LRGR, at the Integrated Test Range, Chandipur in Orissa. The Defence Ministry said the rocket was tested for a user-defined minimum range of 60 kilometres. Defence Minister Rajnath Singh congratulated DRDO, the Indian Army and the industry on the successful flight test. India and Myanmar have discussed bilateral security cooperation.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 56 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूँ राखी आपके साथ। रात सुरमई हो तो हर एहसास जैसे और भी गहरा हो जाता है। चांदनी की हल्की हल्की रोशनी, ठंडी हवा के झोंके और दूर कहीं बजते पुराने गीत, ये सब मिलकर मन को एक अलग ही सुकून दे जाते हैं।

कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर नए लगते हैं। ये भी एक ऐसा ही सदाबहार नगमा है, जिसमें प्रेम की मासूमियत, साथ निभाने का विश्वास और जीवन के सफर की मधुर लय सुनाई देती है। गाइड फिल्म का गाना अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। इसे लिखा कवि नीरज ने और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। प्रेम की तड़प, समर्पण और इंतजार की गहरी भावना झलकती है इस गीत में। ये एहसास दिलाता है कि जब कोई अपने प्रिय के बिना अधूरा महसूस करता है तो उसका मन उसी के स्नेह और साथ की प्यास से भरा रहता है।

सजना सजना।

अभिनेत्री फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: वक्त हुआ है 2:28 और ठीक 26 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: कैसे कहें हम प्यार ने हमको

0: मत हमसे खुद से हम।
1: शर्मीली फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इसे लिखा कवि नीरज ने और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। प्रेम कभी मुस्कान देता है, कभी इंतजार, कभी सपनों को रंग देता है तो कभी यादों की हल्की सी कसक छोड़ जाता है। ये एहसास इंसान को बदल भी देता है और सवार भी देता है। शायद इसलिए कहा गया है कि प्यार अपने रास्ते खुद चुनता है।

तेरे मेरे सपने फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशियां अक्सर बिना दस्तक दिए चली आती हैं। जब प्रेम अपने साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नई किलकारियां लेकर आता है, तो सचमुच लगता है जैसे जीवन की बगिया महक उठी है।

अभिमान फिल्म का गाना आपने सुना, रफी और लता की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 2:43 और ठीक 49 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरमई रात की खामोशी में जब कोई धुन गुनगुनाती है हर भूली बिसरी याद मुस्कुराते हुए लौट आती है।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। हर बीतता पल उम्मीद को थोड़ा और गहरा कर देता है और हर आहट पर दिल यही सोचता है कि शायद अब वो आ जाए। रहना बीती जाए, शाम ना आए, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि उस बेचैनी और विरह का स्वर है जो प्रेम में इंतजार करने वाला हर दिल कभी न कभी महसूस करता है।

सफर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कर 55 मिनट और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनेल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन प्रवचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ना है।

सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। पाकिस्तान के कराची तट से 12 घंटे पहले लापता हुए बोइंग कार्गो विमान का मलबा गहरे समुद्र में पाकिस्तानी बचाव दल को मिल गया है। विमान में सवार 5 चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 विमान का मलबा ओरमारा बंदरगाह से 53 समुद्री मील दक्षिण में बरामद किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा के अनुसार विमान कराची के दक्षिण पश्चिम में समुद्र में कई बार ऊंचाई में अचानक बदलाव के बाद तेजी से नीचे उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अलशारा को पत्र लिखकर बताया है कि उन्होंने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की अमेरिकी सूची से हटाने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि इससे सीरिया की पुनर्निर्माण का रास्ता खुलेगा और अमेरिकी कंपनियां वहां निवेश के लिए तैयार है। इस फैसले को लागू होने से पहले अमेरिकी कांग्रेस 45 दिनों तक इसकी समीक्षा करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अगर सुने दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 13 सेकंड। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों, रात के इस तन्हाई में हम और आप मिलकर चलेंगे एक बेहद खूबसूरत सफर पर प्यार मोहब्बत के। उन गुजरे दौर के उन दिनों को हम याद करेंगे, सुनहरे दौर के उन नगमों को लेकर हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। ये वो दौर है जहां पर इमोशन भी है, मोहब्बत भी है, तकरार भी है और कुछ अनोखी कहानियां भी हैं। तो गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और सदाबहार बेहद खूबसूरत गीतों के साथ हम हाजिर हैं और आज के इस सफर का आगाज करेंगे मौसम की नज़ाकत को देखते हुए ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। और वो नगमा है 1959 में आई फिल्म दिल देके देखो से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत है उषा खन्ना का।

मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म दिल देखे धोखों से। यह नगमा था 1959 की फिल्म से और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था उषा खन्ना जी ने और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। दोस्तों कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कई बार एक ऐसे मौके आते हैं जब इंसान अपनी तमाम मुश्किलात तमाम परेशानियों को दूर कर प्यार मोहब्बत की दुनिया में कदम बढ़ाता है और वह कदम कई बार इतने आगे चले जाते हैं कि फिर वापस मुड़ना मुश्किल होता है। हालांकि दूसरी तरफ से अगर वैसी बात ना हो तो फिर ये परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है इस खूबसूरत गीत के संगीत के सफ़र में, जिसका नाम है हमराही। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं हूँ आपके साथ फिरोज़। और अगला नगमा एक ऐसा ही है मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ों में एक बार फिर से इन दोनों महान गायकों की जुगलबंदी इस गीत को और भी ख़ास बना देती है। तो आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा नगमा फिल्म मेरे सनम से। और ये फिल्म आई थी 1965 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में विश्वजीत, आशा पारेख, मुमताज और प्राण वगैरह थे। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है हम सबके प्यारे, हम सबके चहेते ओपी नैयर साहब ने।

अच्छा जी, और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में ये नगमा था फिल्म मेरे सनम से, और ये फिल्म आई थी 1965 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल से जी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम और आप मिलकर चल रहे हैं एक बेहद खूबसूरत सुनहरे दौर के नगमों के इस सफ़र पर, और मैं हूँ आपका हमराही फिरोज़। तो आइए इस सफ़र को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं एक और बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी साहब, लेकिन इस बार उनके साथ हैं लता जी। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है रोशन साहब ने, और ये नगमा है 1963 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म ताजमहल से। एम सादिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बेहद खूबसूरत अभिनय किया था इन तमाम कलाकारों ने। प्रदीप कुमार मुमताज, जहांगीर के रूप में रहमान, जीवन वीना नूरजहां,

जबीन और अन्य कलाकारों ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है और रोशन साहब का संगीत है। जो वादा किया है निभाना तो पड़ेगा। आपने भी प्यार और मोहब्बत में इस तरह के वादे ज़रूर किए होंगे।

एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:33 और 20 सेकेंड और यह महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत में

को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब एक बार फिर से। दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है या कभी ऐसा हुआ है कि आप जहां भी जाएं किसी की याद, किसी की शरारत या किसी का ख्याल आपका पीछा ही ना छोड़े? बस इसी खूबसूरत एहसास को बड़े ही दिलकश अंदाज में पेश करता है हमारा अगला यह नगमा, और यह नगमा है बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो 1963 में आई थी, चोरी चोरी। फिल्म चोरी चोरी का ये मशहूर नगमा है जहां मैं जाती हूं, उसके बोल लिखे हैं मशहूर गीतकार शैलेंद्र साहब ने, और जिनके अल्फाज सीधे दिल में उतर जाते हैं, और जब इन अल्फाज को अपनी जादुई आवाजों से सजाए लता जी और मन्ना डे साहब, तो हर सुर एक नई मुस्कुराहट बिखेर देता है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इसको संगीत से सजाया है हम सबके प्यारे शंकर जयकिशन साहब ने।

लता जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में ये नगमा था फिल्म चोरी चोरी से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी का असली रंग हो जाता है जब हर आवाज़ एक दूसरे का साथ दे और हर दिल एक ही धड़कन पर धड़कता हुआ महसूस हो। हमारा अगला भी गीत कुछ ऐसा ही एहसास लेकर आता है, मेल मिलाप, अपनापन और एकता का पैगाम। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, 1960 में आई इस फिल्म का ये यादगार गीत है। इस नगमे की सबसे बड़ी खासियत है इसकी शानदार गायकी, इसमें अपनी आवाजों का जादू बिखेरा है लता जी, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे और महेंद्र कपूर साहब ने। जब इतने सुर एक साथ गूंजते हैं तो गीत सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत एहसास बन जाता है। तो आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं इसी बेहद खूबसूरत नगमे को, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से, और यह फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म के निर्देशक थे राधु कर्माकर और राज कपूर साहब, पद्मनी, प्राण, चंचल, ललिता पवार, राज मेहरा, रामायण तिवारी, नाना पालेसकर वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा था शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए उसी नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये रंगवा था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। आवाजें थी लता जी, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे साहब, महेंद्र कपूर वगैरह। और ये फिल्म आई थी 1960 में। और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस दिलकश महफिल में। और आज मैं हूं आपका हमराही फिरोज। दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत की दुनिया में कुछ इजहार शब्दों से नहीं बल्कि नजरों से होते हैं और कुछ सुरों से होते हैं। जब दिल अपने जज्बात बयान करता है तो हर धुन एक नई दास्तान बन जाती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा आज की इस महफिल में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म आई मिलन की बेला से। ये फिल्म आई थी 1964 में और उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है। उसके दिल को छू लेने वाले बोल लिखे हैं शैलेंद्र साहब ने और इसकी मनमोहक धुन तैयार की है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। इस गीत को अपनी जादुई आवाजों से अमर बना दिया है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने। दोनों की बहुत ही मधुर जुगलबंदी इस गीत को सुनने वालों के दिल में हमेशा के लिए बस जगह बना देती है। तो आइए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ओ सनम तेरे हो गए हम, फिल्म आई मिलन की बेला गाया नगमा था रफी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और बेहद खूबसूरत युगल गीतों के साथ हम हाजिर हैं, जो क्लासिक नगमे हैं वो आपकी खिदमत में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत की सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि कभी कभी दिल की बातें अल्फाज से नहीं बल्कि सिर्फ एक मुस्कान, एक नज़र और एक कुछ खामोश इशारों से समझ में आ जाती है। हमारा अगला जो नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी कुछ ऐसा ही प्यार की खूबसूरती को बयान करता है और ये नगमा है फिल्म कश्मीर की कली से। ये फिल्म आई थी 1964 में और इस गीत को लिखा है SH बिहारी ने और अपनी यादगार धुनों से सजाया है OP नैयर साहब ने। इस गीत में अपनी मधुर और दिलनशी आवाजों का जादू भी कह रहा है आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो इन दोनों की बेहद खूबसूरत आवाज़ें आपके खिदमत में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आपके लिए।

फिल्म कश्मीर की कली के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत हमराही से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा ठीक 4:10 पर, लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 5 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा के इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है, कभी खुशियों की धूप मिलती है तो कभी मुश्किलों की छांव, लेकिन हर अनुभव हर तजर्बा हमारे सफर को और भी खूबसूरत बना देता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी को सिर्फ समझना नहीं बल्कि जीना भी जरूरी है और जिंदगी को जीने के लिए सब कुछ सकारात्मक होना बहुत ही अहम है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसी नगमे से आज के इस सफर का आगाज करेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और यह नगमा है फिल्म जागते रहो से। फिल्म जागते रहो का ये यादगार नगमा जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है सलील चौधरी ने। आवाजें मुकेश साहब की और ये ऐसी आवाज है जो दिल को सुकून देने वाली है और हमेशा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाली ये आवाज है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि हिंदी सिनेमा में ये गीत बहुत ही मशहूर हुआ था। ये गीत हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में हर लम्हा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए छोटी छोटी खुशियों की कदर कीजिए, अपनों के साथ बिताए वक्त को सजोएं और हर नए दिन का इस्तकबाल मुस्कुरा कर कीजिए, यही तो जिंदगी की असली खूबसूरती है।

0: सच है क्या सब सच।
1: जी हाँ, जिंदगी ख्वाब है और ख्वाब में झूठ क्या सच क्या। जिंदगी बेहद खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है और इस जिंदगी को हमेशा हंसकर गुजारना हम सब की जिम्मेदारी है। और जब कोई ख़ास आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो फिर ये ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। कहते हैं कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश करते रहते हैं, जबकि सुकून तो कई बार छोटे छोटे लम्हों में छिपा होता है। किसी अपने का साथ, भरोसे का एहसास और दिल से निकली एक मुस्कान, यही पल जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। इसी प्यार जज्बे को अपने सुरों में समेटे हुए हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा फिल्म वक्त से। आवाजें हैं आशा जी और महेंद्र कपूर साहब की।

हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वक्त फिल्म का ये नगमा आशा जी और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये महफिल है आपके अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी भी कितनी दिलचस्प है ना, कभी सीधी राह पर चलाती है तो कभी किसी मोड़ पर नई सीख नई उम्मीद दे जाती है। नए लोग और नई उम्मीदों से मुलाकात करने पर हमें कुछ अलग ही अनुभव होता है, इसलिए हर मोड़ को मुस्कुराकर अपनाइए, क्योंकि कौन सा लम्हा आपके जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाए कोई नहीं जानता। इन्हीं एहसासात को बेहद खूबसूरती से बयान करता है फिल्म मेरे हमसफर का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा, और ये फिल्म आई थी 1970 में। इस नगमे को अपने बहुत ही मधुर आवाजों से सजाया है मुकेश और लता जी ने, इसके बेहद खूबसूरत बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने। तो आज के इस खूबसूरत सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगर

की राह थोड़ी मुश्किल है तो मायूस बिल्कुल ना हो। हर सफर में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां से नई मंजिलें दिखाई देती हैं। बस हौसला बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि उम्मीद हमेशा आगे बढ़ने की वजह देती है। और जब ऐसा नगमा हो किसी मोड़ पर, हमें यूं न जाना छोड़कर, मेरे हम सफर। बहुत ही खूबसूरत यह नगमा, जब इसको आप सुनेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, तो आपको उस दर्द का, उस प्यार का, उस मोहब्बत का एहसास होने लगेगा।

किसी राह में किसी मोड़ पर यूं ही चलने देना छोड़कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। लता जी की आवाज़ में और साथी थे मुकेश साहब, बेहद खूबसूरत ये नगमा फिल्म मेरे हम सफर से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस दिलकश महफिल में। जिंदगी एक ऐसा सफर है जहां हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, कुछ यादें हमेशा के लिए साथ रह जाती हैं और कुछ पल सिर्फ हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आते हैं। इसलिए गुजरे हुए लम्हों पर अफसोस करने से ज्यादा आज को खूबसूरत बनाना जरूरी है। इसी गहरे एहसास को अपने अल्फाज और सुरों में डालता है फिल्म आपकी कसम का ये बेहद खूबसूरत नगमा। ये फिल्म आई थी 1974 में। इस अमर नगमे को अपनी दिलकश आवाज से सजाया है किशोर कुमार साहब ने और इसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन साहब ने। दोस्तों, हमें हमेशा यह लगता है कि कोई तो हो हमारी जिंदगी में जो हमें आगे लेकर के जाए, यही उम्मीद होती है। जिंदगी में हर मुलाकात की कद्र कीजिए, हर रिश्ते को मोहब्बत से निभाइए और हर दिन का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि वक्त आगे बढ़ता रहता है लेकिन अच्छे रिश्ते और प्यारी यादें उम्र भर दिल को रोशन करती रहती हैं। तो आइए ऐसे ही नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस महफिल में। किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में ये नगमा।